0: लैंग्वेज में क्यों?
1: फन एशिया नेटवर्क के साथ रीच कीजिए DFW के मल्टीपल देसीज को एक ही पावरफुल नेटवर्क पर। आज ही कॉल करें 4694243188 और ईमेल sales@funasia.net। फन एशिया नेटवर्क, वन नेटवर्क, मेनी लैंग्वेजेस एंड मैक्सिमम रीच।
2: This is Ali Zafar and you're listening to me on Fun Asia Radio.

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी, स्टे ट्यून टू फन एशिया। फन एशिया
2: भाई, पिक्चर भी बाकी है, रेडियो शो भी बाकी है और ट्यूसडे का थोड़े बहुत घंटे भी बाकी है। ट्यूसडे इज नॉट ओवर येट। और पता है उसका मतलब क्या है? इट मीन्स दैट आई एम हियर, यस, योर वन एंड ओनली बेस्टी इपी द हिपी, ओनली ऑन फनेशिया रेडियो 104.9 एफएम एंड यू आर लिसनिंग टू माय शो। साथ में गाएं एन इवनिंग इन डैलस। यस फ्रेंड्स, भाई आज तो आते हुए आई वॉज लिसनिंग टू यू नो यू आई मीन माइकल, जो मूवी आई थी द बायोपिक दैट रिलीज, इट्स सच अ गुड मूवी। हैव यू सीन इट? इट्स ऑलरेडी आउट ऑन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स, बट इफ यू हैवन्ट सीन इट यू शुड चेक इट आउट। बट इट इज द स्टोरी ऑफ माइकल जैक्सन, द वन एंड ओनली इनक्रेडिबल माइकल जैक्सन, and it's his biopic, his start, his journey. And today that's why I was in a mood ki bhai I want to listen to old Michael Jackson. And in fact Michael Jackson really, I want to listen to his old band when before Michael Jackson became Michael Jackson, he had a family band, five brothers. Actually they have a really big family. A few of them were not even a part of the band, lekin panch bhaiyon ka band tha and it was called the Jackson Five. And then they later became Jacksons. और उसमें there are some videos of baby Michael Jackson. Baby माने कि मतलब 6-7 साल का, and he was still sounding like a boss even at that age. तो you know उसको देखते हुए मुझे ये लगा यार मैंने क्या किया 6-7 की उम्र में, I was just starting out my journey. However, Michael Jackson was already at the top of his game at that age. Imagine. But yeah, definitely check out the movie. So that's why I thought चलो today let's start off with a little bit hatke se, you know, instead of, you know, playing the typical Hindi songs. Aaj mera mood thoda Jackson 5 sunne ka hai. I love this tune. I hope you like it too.

एंड वी आर बैक फ्रेंड्स. यस यस यस. अगर आप अपने सपनों का घर बनाने की सोच रहे हैं एंड यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन अ प्रॉपर्टी बिकॉज आई हर्ड अपेरेंटली इट इज अ बायर्स मार्केट आउट देयर. सो इफ यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन समथिंग लाइक दैट एंड यू और या फिर यू जस्ट वॉन्ट टू जस्ट बिल्ड योर ड्रीम होम, जस्ट रीच आउट टू ड्रीम होम मॉर्गेज. क्योंकि 1998 से दे हैव हेल्प्ड फैमिलीज अक्रॉस द कंट्री with personalized mortgage solution. चाहे आप खरीद रहे हैं या रीफाइनेंस कर रहे हैं, कॉल 972-245-5626 और विजिट dreamhomemortgage.com. ड्रीम होम मॉर्गेज, मेकिंग ड्रीम होम्स हैपन. यस. तो फ्रेंड्स, अभी मैंने जैसे माइकल जैक्सन के बारे में बोला था, आई एम ए ह्यूज फैन. हाउएवर आई नो फॉर अ लॉट ऑफ माई इंडियन ऑडियंसेज माइकल जैक्सन मे नॉट बी अ हाउस होल्ड नेम एंड देयरफॉर इट इज टोटली ए ओके. एंड अभी मुझे कॉल आई एक लिसनर की, बड़े अच्छे से उन्होंने बोला कि भाई आप थोड़ी इंडियन मिस माइकल जैक्सन का एक गाना बजाएंगे. मैंने कहा अच्छा, हु आर यू रेफरिंग टू? मैं बिल्कुल बजाऊंगी, आई एम टेकिंग रिक्वेस्ट अंटिल 8 o'clock टुडे. तो उन्होंने बोला उषा उथप. तो मैंने सोचा, मैंने कहा गाइज, उषा उथप कैन नॉट बी कंपेयर टू माइकल जैक्सन. नॉट बिकॉज आई डोंट थिंक कि माइकल जैक्सन इज टू गुड और ऐसे, बट आई थिंक उषा उथप इज सो इनक्रेडिबल दैट शी डिजर्व्स हर ओन रिस्पेक्ट एंड हर ओन रिकग्निशन. आई थिंक एट दैट टाइम जब बॉलीवुड म्यूजिक वॉज डोमिनेंट विथ सिंगर्स, फीमेल सिंगर्स स्पेशली विद अ वेरी टिपिकल बॉयस, दे वर, अगर टेक्निकल म्यूजिक लैंग्वेज में बोले, दे वर मोस्टली सोप्रानोज, विच मीन्स दे हैड अ वेरी पतली वॉइस लाइक दैट बिकॉज अपेरेंटली दैट इज वेरी फेमिनिन, राइट? तो इंडियन हीरोइंस जो थी या फिर जो भी जितने भी गाने आते थे, दे ऑल हैड दैट लाइक रियली थिन वॉइस रिप्रेजेंटेशन फॉर वुमेन्स वॉइसेज. लेकिन नॉट ऑल द गर्ल्स हैव दैट वॉइस, राइट? बट समहाउ दैट वॉज ऑलवेज कमिंग आउट. बट इन दैट टाइम, लाइक इन द 70s एंड 80s, उषा उथप made her own style, made her own genre with this big bold voice, and I absolutely love it because I relate to it 100%. And so I think she deserves her own title and you know, like queen of disco or something like that, queen of Indian disco. I would definitely call her because kyunki unke sare gaane, they were like, all of them were like disco hits. तो ये उनका सबसे पॉपुलर गाना जो धुरंधर में भी फीचर किया गया था, दिस इज रंबा हो हो हो.

एंड गाइज वी आर अबाउट टू गो इन टू अ ब्रेक इन जस्ट थोड़ी देर में, लेकिन जाने से पहले भाई टुडे आई हर्ड दिस रियली कूल सेइंग विच इज दैट मनी इज अ स्किल. ओके एंड इट्स नॉट लाइक समथिंग दैट यू आर बॉर्न विद. Nobody teaches you how to use money properly, how to save, how to invest, how to do your taxes and all of that. मतलब अगर आपके family में सिखा दिया तो बहुत बड़ी बात है. मेरी family में तो actually मुझे किसी ने नहीं सिखाया, so I kind of had to learn everything by myself, which I think काफ़ी कुछ सिखा. मतलब मुझे तो लगता है बहुत सारे parents they are afraid of talking to the kids about the money. However, like let's not get into that, but what I was saying is money is like a skill. Anybody can learn it, perfect it, and then everything is smooth after that once you learn it. However, अगर आपको खुद अकेले से resources नहीं मिल रहे हैं to learn about money and figure out your tax and everything, then you guys can reach out to AG Fintax. This part of the show is brought to you by AG Fintax, who are offering traditional tax, trusted tax, accounting, payroll, bookkeeping and business advisory services for individuals and businesses. Call 469-942-9888 or visit agfintax.com. Join AG Fintax's free live webinar. तो जैसे अगर आपको लग रहा है कि AG Fintax के ऑफिस जाना पड़ेगा टू लर्न योर स्किल एंड टू पॉलिश योर स्किल रिगार्डिंग मनी, गाइज दे हैव अ फ्री वेबिनार विच इज हैपनिंग एंड डिस्कवर सेवरल टैक्स सेविंग अपॉर्चुनिटीज, रिटायरमेंट प्लानिंग, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स एंड ईयर एंड टैक्स स्ट्रेटजीज. अक्टूबर आ चुका है तो अभी से इफ़ यू स्टार्ट वर्किंग टूवर्ड्स योर यू नो 2025 टैक्सेस, देन जब मार्च अप्रैल में फाइल करने का टाइम आएगा यू वॉन्ट बी स्ट्रेस्ड आउट. यू कैन, दिस वेबिनार इज गोइंग टू बी डन विद अनिल ग्रांधी and it's on October 11th at 11 AM Central Time. Register today at agfintax.com and secure your spot. I think if you are someone new who are in this country and who does not know how to do their taxes at all, and you have found other solutions like free tax USA and all that really complicated, then you should definitely reach out to AG Fintax. Just attend the webinar, why not? Maybe

0: they give you some extra information that you don't already know. So give it a shot. Maybe it works out.
1: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
2: Har samasya ka hal hai astrologer Ishwar ke paas. 400 saal ki family wisdom ke saath world famous astrologer ab Dallas mein.
1: That magic removal ho, love and relationship issues ho, get trusted solutions with 100% privacy.
2: Thousands ki life badli unki divine guidance se. Now it's your turn. Samasya ka pakka samadhan. Astrologer Ishwar. Call now 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
3: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer? Umar Khwaja.
4: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल. कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com.
5: रेस्टोरेंट चूज करना हो, गूगल रिव्यूज. होटल बुक करना हो, गूगल रिव्यूज. लेकिन बच्चों के डॉक्टर की जब बात आए तो एक ही रिव्यू सबसे इम्पोर्टेंट होता है, माँ का रिव्यू.
6: इसलिए डॉक्टर फरहाद हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ DFW चाइल्ड मॉम अप्रूव्ड पीडियाट्रिशियन फॉर 4 कंसेक्यूटिव इयर्स 2023-2026. मीट डॉक्टर निशात फरहाद एट पैशन हेल्थ पीडियाट्रिक्स, सर्विंग फैमिलीज एट फ्रिस्को एंड ऑब्री, स्टार्टिंग एट द एंड ऑफ ऑगस्ट. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, बिकॉज एवरी हेल्थी स्माइल बिगिंस विद ट्रस्टेड केयर. कॉल 214-666-6259 एंड शेड्यूल योर अपॉइंटमेंट्स टुडे.
7: Hey, are you going to Ravi's Trade Market this year?
8: Of course. Where else can you check out new products, meet vendors, grab exclusive deals, giveaways, and save big for your store?
7: When is it?
8: Thursday, October 29th, Friday, October 30th, and Saturday, October 31st from 9 a.m. to 5 p.m. at Ravi's Import Warehouse on Harry Hines Boulevard in Dallas.
7: Perfect. I'll register ahead on shopravis.com. Ravi's 21st Annual Trade Market. Bigger deals, bigger opportunities, bigger business. Customers must bring their valid tax number and tobacco license.
9: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया. ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस.
10: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी.
9: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है.
10: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी.
9: ये क्या होता
10: है? सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन.
11: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस. फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन. सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कुलचा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस.
12: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन अवेलेबल.
13: Hey, तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
14: लिया.
13: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
14: नहीं आया.
13: मुझे भी नहीं आया. आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है. इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस. वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू. होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्कड हार्ड फॉर. नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास. कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक 972-863-772. That's 972-863-772.
11: Visit www.senadainc.com today.
15: यार फेस्टिवल सीजन आ रहा है और मेरी वाइफ ने शॉपिंग लिस्ट भी दे दी है.
16: कितनी लंबी लिस्ट है?
15: बस 2 pages. इंडियन ड्रेसेस, मिठाई, नमकीन और हाँ एक पूजा मंदिर भी.
16: अरे तो सब कुछ इंडिया से ही मंगवा लो. SFL वर्ल्ड वाइड है ना. इंडिया में आपके डोर स्टेप से सामान पिकअप करके यहाँ सीधा आपके घर डिलीवर करते हैं. पूजा मंदिर हो, झूला हो या फर्नीचर, सामान छोटा हो या बड़ा, ओशन फ्रेट के थ्रू सब शिप हो सकता है.
17: दिस फेस्टिव सीजन इंडिया को अपने और करीब लाएं विद SFL वर्ल्ड वाइड. शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज फ्रॉम इंडिया टू द USA एंड वर्ल्ड वाइड. विजिट SFLWorldwide.com.
18: ये लास्ट दिवाली पहना था, ये नेहा की शादी में. इस पे तो ऑलरेडी इंस्टाग्राम पर डीपी है.
19: हे भगवान, मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है.
20: जब वार्डरोब में हो फैशन का अकाल तो सीधा इंडियन अटायर जाओ बालिके.
18: प्रभु, डिस्काउंट भी मिलेगा?
20: ऑफ कोर्स, फेस्टिव कलेक्शन पर अप टू 25% ऑफ. Tathastu.
6: Discover stunning lehengas, elegant saris, bridal jewelry and festive styles for men and kids. All at Indian Attire on 2995 Preston Road, Frisco. Indian Attire, Frisco. Your divine destination for festive fashion.
21: Hello guys, this is me, Kinjal Dave, and you are listening and watching Fun Asia Radio.

एंड गाइज वी आर बैक. भाई लैला तो नहीं हूँ मैं, इपी हूँ, इपी द हिपी. यस वी आर बैक एंड यू आर लिसनिंग टू फनेशिया रेडियो 104.9 FM एंड दिस इज माई शो एन इवनिंग इन डैलस. भाई आज मेरे पास बहुत एनर्जी है क्योंकि मैंने ना मतलब बेवकूफों की तरह 6 बजे जाके एक कॉफ़ी पी ली बिकॉज आई हैड सम टाइम टू किल एंड आई वाज लाइक अरे चलो कॉफ़ी पीते हैं. आई एम गोइंग टू गेट अ डीकैफ सो यू नो आई विल बी एबल टू स्लीप एट नाइट. लेकिन मैं बोलना भूल गई एंड देन नाउ आई एम लाइक आई हैव दिस कैफीन रश फ्रॉम 6 बजे. होपफुली मेरे को नींद आ जाएगी टाइम से, नहीं तो कल का पूरा दिन खराब होने वाला है. हैव यू एवर डन समथिंग लाइक दैट वेयर यू हैव लाइक कॉफी रियली लेट इन द इवनिंग एंड देन यू आर अप लाइक अ भूत एट 2 o'clock इन द मॉर्निंग एंड यू आर लाइक यार नींद आ जाए प्लीज. भाई मेरे साथ तो बहुत होता है, बहुत तो नहीं, अभी आई हैव बिकम वेरी डिसिप्लिन्ड अबाउट इट. हाउएवर थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर वंडरफुल कॉल्स गाइज एंड आप जो enthusiastically मेरे साथ जो हम relationships and changing relationships and modern day chemistry इन सब के बारे में हम जब बातें करते हैं and I love that you guys pay attention and participate in the discussion. It's so amazing. Yesterday we were talking about how women are getting more and more independent and therefore there is a very very very big singlehood problem especially for the millennials and even टू सम एक्सटेंट द जेन जी पीपल एज वेल. विच मीन्स अगर आप अपने लेट 20s में हैं, अर्ली 30s में हैं, सम पीपल इवन इन द अर्ली 40s, देर आर सो मेनी सिंगल पीपल आउट देर. या फिर मे बी आई मीन आई नो फॉर अ फैक्ट दैट सो मेनी पीपल दे गेट मैरिड, स्टे मैरिड फॉर अ ईयर, 6 महीना, उससे ज़्यादा नहीं टिकती, उनके डिवोर्सेज हो जाते हैं. एंड इट्स अ वेरी वेरी कॉमन प्रॉब्लम नॉट जस्ट हियर इन द US बट ऑल्सो इन इंडिया. पीपल आर नॉट कंटिन्यूइंग देयर रिलेशनशिप्स और रिलेशनशिप भी आजकल के ज़माने में सिचुएशनशिप हो गया है. एट दिस पॉइंट यू नो पीपल आर यूजिंग द वर्ड सिचुएशनशिप इंस्टेड ऑफ अ शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप जस्ट सो यू कैन अवॉइड द होल कॉन्वर्सेशन ऑल टुगेदर. हाउएवर येस्टरडे वी वर टॉकिंग अबाउट वाई देर इज दिस मेजर, if you look at social media, there is a word for it. It's called the male loneliness epidemic, especially in the 30s, 40s, guys. And this is not just a male loneliness epidemic. Honestly, it's a female thing also. I know so many of my female friends who are just like tired of the dating market. And, you know, they've tried everything. Chahe shaadi.com ho, Bharat Matrimony ho, dating apps ho, ya phir, you know, parents ko bolke arranged marriage ho, kuch bhi ho, sab try kar liya, lekin phir bhi somehow they are unsuccessful. So we were talking about what you guys can do as a way to improve themselves, because what is happening is I've noticed that the girls, they are getting better and better in their opportunity, in their chances, and they are really elevating their game in the sense like, women are now making way more money than they have ever made. They are going to these really high positions with good promotions. They probably earn as much as the guys or maybe sometimes even more than the male counterparts. So a lot of the women are feeling ki bhai hame to shaadi karni nahi hai, hum shaadi kyun karenge jab hame financial security nahi chahiye. I mean all that. The only reason a lot of women married besides love in the past was a financial security ya loneliness. Ab they are like bhai loneliness kya hota hai, hum log solo trip pe jayenge. There's a lot of female solo trips also. I've done that and it's quite empowering. So people are not even feeling sad anymore. Like, theek hai, koi baat nahi, single hai, so what? So we were talking about what the guys can do. Lekin usse related, I got a call thodi der pehle and they were like, you know, once you get married early, then life becomes a little monotonous, a little, you know, routine. Bacche ho jate hain and aap sirf apne bachcho pe dhyan dete hain. So, जिन लोगों ने मेरा डिस्कशन सुना पिछले 1-1.5 महीनों में, यू मस्ट हैव हर्ड दैट थिंग दैट मेक्स रिलेशनशिप लास्ट एंड मेक्स इट मोर अलाइव इज फाइंडिंग ए वन कॉमन इंटरेस्ट जो, या फिर एक कॉमन क्या बोलते हैं गोल, या फिर एक कॉमन एक्टिविटी जो आप साथ में करते हैं एंड यू गाइज रियली लुक फॉरवर्ड टू. सो वेदर इट्स अ डेट नाइट, whether it's like a pickleball team, you know, maybe you form a pickleball team with your partner and you do that every single week, ya fir you play music together, I don't know, it could be anything, ya fir you go to Zumba dancing together, ya Bollywood dancing together. Find one activity that you can do in a week that keeps your relationship alive and rejuvenated
सो दैट यू हैव द एनर्जी टू स्पेंड टाइम विद योर किड्स आफ्टर. नहीं तो क्या हो जाता है, हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप आफ्टर सम टाइम बिकम्स लाइक गुड फ्रेंड्स की रिलेशनशिप, विच इज ग्रेट टू, बट टू कीप इट passionate, to keep it more where you guys can love each other, have the same kind of affection that you had on day one. Find some activity like that that gives you happiness and gives you guys happiness as a couple. Okay? That's my advice. Isse related ek gana sunte hai. This is Diljit Dosanjh with Lover.

गाइज बिफोर वी आर अबाउट टू गो इन टू अ ब्रेक, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले, जैसे आपको पता है, इस पूरे महीने, पूरे हफ्ते भी नहीं, पूरे महीने, यू गाइज, हमारे पास एक नहीं दो दो गिव अवे है. आवर फर्स्ट गिव अवे इज बाय एथनिक वेयर बाय ज्योतिका पटेल, क्योंकि नवरात्र सीजन आ चुका है. इट इज द हॉलीडे सीजन, मतलब देसी वाला हॉलीडे, नॉट क्रिसमस वाला. सेलिब्रेट नवरात्रि विद अ फैबुलस न्यू लुक फॉर एवरी सिंगल नाइट. एक्सप्लोर अ स्टनिंग कलेक्शन ऑफ स्टाइलिश कंटेम्प्रेरी चनिया चोलीज अलॉन्ग विद कस्टमाइजेबल वेयरिंग एंड ब्राइडल वेयर फॉर मेन एंड वुमेन एट इंडियन एथनिक वेयर बाय ज्योतिका पटेल इन अर्विंग. उनकी लोकेशन है वैली रैंच अर्विंग में. डेफिनेटली गो चेक आउट हर बुटीक. कॉल 9454442194 और विजिट ज्योतिका पटेल डिजाइन्स .com. जस्ट इन केस आपके इंडिया से कोई रिश्तेदार नहीं आए आपके लिए कपड़े वपड़े लेकर, या फिर आपने ऑनलाइन नहीं ऑर्डर किया, या फिर आपको नहीं पता क्वालिटी कैसी होगी, वेल यू कैन गो सी इट बाय योर सेल्फ. यूज यू नो योर यू डोंट नीड टू यूज योर इमेजिनेशन बिकॉज यू कैन यूज योर आइज. तो गाइज ये हमारा पहला गिव अवे है फ्रॉम ज्योतिका पटेल डिजाइंस. आप जीत सकते हैं ए ब्यूटिफुल पेयर ऑफ इयररिंग्स बाय आंसरिंग द सिंपल क्वेश्चन. तो क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है कि मैं आपके लिए गाना बजाऊंगी, ठीक है? आपको मुझे बताना है इस गाने का सिंगर कौन है. इट्स सो सिंपल, बहुत ही सिंपल है ये वाला गिव अवे. इट इज नॉट इवन हार्ड. जस्ट टेल मी द नेम ऑफ द सिंगर. आई गिव यू लिटिल हिंट. इनका ना एक कॉन्सर्ट होने वाला है डैलस में कुछ, आई थिंक एक दो हफ्ते बाद या इसी महीने. तो डेफिनेटली यू शुड बी एबल टू नो इट इफ यू आर अ फैन ऑफ द सिंगर, विच द सॉन्ग इज वेरी पॉपुलर. सो लेट्स गो.

And guys, we are back. Bhai, congratulations to Pallavi for winning that giveaway. By the way, guys, if you are also planning on investing at some point of time in India, whether it's a house for your parents, ya fir a retirement home for you, or just like a vacation home or something like that, like a second home, तो लेकिन इंडिया में ऑफकोर्स देन विजिट गृह प्रवेश इंडिया प्रॉपर्टी एक्सपो विच इज प्रेजेंटेड बाय माई स्क्वायर फीट द बिगेस्ट इंडिया प्रॉपर्टी एक्सपो इन फ्रिस्को मीट लीडिंग डेवलपर्स फ्रॉम बेंगलुरु हैदराबाद चेन्नई मुंबई पुणे दिल्ली एनसीआर एंड दे हैव ओवर 200 एक्साइटिंग न्यू प्रोजेक्ट्स ऑल अंडर वन रूफ जॉइन देम ऑन अक्टूबर 10th एंड अक्टूबर 11th फ्रॉम 10 AM टू 8 PM एट हायत रीजेंसी इन फ्रिस्को. Free entry and free parking. Your perfect property in India could be waiting for you at Griha Pravesh India Property Expo. Yes.

0: are back, guys. You are still listening to Ippy the Hippie only on Fun Asia Radio 104.9 FM. And without further ado, let's go ahead and play our second giveaway game. Yes, yes, yes. Our second giveaway game, as you all know, is the word Antakshari. And this one is from Chandigarh Bites. Okay? क्या आप जीत सकते हैं मैं बताती हूँ आपको आप जीत सकते हैं पूरे $10 का डिस्काउंट कोड डिस्काउंट कार्ड डिस्काउंट गिफ्ट वाउचर जैसे जो भी आप बोलना चाहें ऑन अ बिल ऑफ $50 एंड मोर या फिर दैट मींस आपको $50 खर्च करने पड़ेंगे पहले उसके बाद उसके ऊपर आपको $10 का डिस्काउंट मिलेगा ठीक है एंड बाय द वे चंडीगढ़ बाइट्स हैज़ ए स्पेशल थाली फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे विद एक्साइटिंग न्यू डिशेज जो रोज रोटेट होती है दे आर लोकेटेड राइट ऑफ ऑफ मैकडर्मट ड्राइव इन एलन विजिट chandigarhbites.com टू चेक आउट द मेन्यू एंड मोर डिटेल्स ठीक है तो लेट्स गो अहेड एंड प्ले दिस गेम अगर आप पिछले एक महीने में ये गेम जीत चुके हैं या कोई भी और गिव अवे जीत चुके हैं भाई गिव समबडी एल्स ऑल्सो अ चांस टू विन हाँ ऐसे नहीं कि आप खुद ही सारे गिव अवे ले जाएं बाकी को भी तो चांस मिलना चाहिए इट वी शुड बी वांट टू बी फेयर ओवर हियर एट फन एशिया रेडियो तो आई एम गोना प्ले यू अ सॉन्ग ऑफकोर्स द सॉन्ग इज ऑल्सो अ डेडिकेशन फॉर जिमरान हु एक्चुअली रिक्वेस्टेड दिस सॉन्ग थोड़ी देर पहले तो ये गाना मैं बजा रही हूँ एंड गाइज गेम बहुत सिंपल है आपको इसके मुखड़े में से कोई भी एक वर्ड उठाना है और वो गाना गाना है मेरे लिए ऐसे नहीं बोलने से नहीं चलेगा गाना गाना पड़ेगा ओके हियर वी गो पूरा गाना सुन लो पहले कोरस तक जाने दो रुकी रुकी कह भी ना पाए रह भी ना पाए क्यों बेवजह है माय नंबर इज 972-235-5555 एंड वी हैव आवर फर्स्ट कॉलर लेट्स सी हाय कैन यू हियर मी
1: हाय
0: हाय
1: या तो सो द सॉन्ग इज
0: वेट वेट
1: लव जोकी
0: एक सेकंड पहले अपना नाम बताओ यार
1: मेरा नाम प्रिया है
0: प्रिया ओके गो फॉर द सॉन्ग अब गाओ ओके गो फॉर इट

0: मुझे इससे ज्यादा नहीं आता है।
1: कोई बात नहीं, वो बहुत है। वो एक्चुअली मैंने भी वही गाना सोचा था, जैसे ये गाना बजा ना, मैंने कहा यार दो लफ्ज तो पहले ही आ गए, तो बड़ा आसान है ये वाला वर्ड
0: बहुत
1: अंताक्षर
0: बहुत
1: है। इट वॉज लाइक राइट देयर। बट कंग्रेचुलेशन रिया, चलो आपके लिए जोरों शोरों से तालियां बजाते हैं वन सेकेंड में।
0: अच्छा, वन सेकेंड,
1: हाँ
0: मैंने ये वन गिव अवे पहले जीत लिया था, सो यू कैन गिव अनदर चांस टू समवन। थैंक
1: अरे
0: यू।
1: चलो, आई एम गोना टेक द नेक्स्ट कॉलर इन दैट केस। हाय, कैन यू हियर मी? हेलो,
0: Yes, I can hear. Can you hear me?
1: या ओके, तो पहले अपना नाम बताइए एंड देन सिंग अ सॉन्ग व्हिच माइट बी डिफरेंट फ्रॉम द वन दैट द फर्स्ट कॉलर ऑलरेडी आंसर्ड।
0: My name is Sagar, and I would like to sing a song.
1: गो फॉर इट, गो फॉर इट।
0: हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में खुश
1: सागर, आई एम
0: नसीब है
1: गोइंग टू
0: वो।
1: स्टॉप यू राइट देयर। वो तो गाना यही सेम गाना गा रहे हो आप, मुझे इसका वर्ड अंताक्षर ही है, तो मतलब आपको इसमें से कोई एक वर्ड उठा के दूसरा गाना गाना है। तो आई टेल यू व्हाट, सिंस यू कॉल्ड अप, तो हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में, वो उसमें से कोई भी एक वर्ड उठा के एक और गाना गा दो। आई विल गिव यू 30 सेकेंड्स, चलो, क्योंकि तुम्हारी कॉल मिल गई थी। लेट्स ट्राई, रेडी?
0: प्यार जिंदगी है, प्यार बंदगी है, या इलाला ये या अल्लाह, प्यार जिंदगी है। क्या
1: अरे क्या बात
0: बोला
1: है, ऑनेस्टली फॉर अ शॉर्ट नोटिस दैट वॉज प्रेटी गुड। मतलब आपने तो 30 सेकेंड्स किया, आपने तो 5 सेकेंड में दूसरा गाना गा दिया। शानदार प्रदर्शन, ये जोरों शोरों से आपके लिए तालियां। तो गाइज, सागर आप लाइन में बने रहिए, आई टेल यू हाउ टू रिडीम योर प्राइज। तब तक के लिए ऑडियंस, आप ये गाना
0: ओके।
1: सुनिए।

ही नहीं जज कर पाते हो. एंड अ लॉट ऑफ द टाइम्स इट जस्ट ऑनेस्टली लैंड्स अप बिकमिंग लाइक अ टेक्स्ट कॉन्वर्सेशन, वन टेक्स्ट कॉन्वर्सेशन आफ्टर द अदर. एंड एफ वाई आई, आई डोंट नो, आई मीन द पीपल हु आर लिसनिंग टू दिस ऑन द रेडियो राइट नाउ, आई एम श्योर देयर इज वन ऑफ यू हु एक्चुअली डज दिस, एटलीस्ट वन पर्सन. कुछ सालों पहले ना, व्हेन आई वाज आल्सो लुकिंग एट डेटिंग एंड फाइंडिंग द पर्सन एंड एवरीथिंग, तो ये कुछ सालों पहले की बात है. आई वाज ऑन वन ऑफ दीज डेटिंग एप्स एंड यू नो आई वाज जस्ट सेइंग कि अच्छा ओके, लेट मी जस्ट गो ऑन सम डेट्स, मीट सम पीपल, लेट्स सी इफ थिंग्स कैन वर्क आउट. एंड गेस व्हाट, आई केम अक्रॉस वन प्रोफाइल, उसमें ना ऋतिक रोशन की फोटो थी और उसमें नाम भी लिखा हुआ था ऋतिक. फिर मैंने सोचा, मैंने कहा तुम मुझे बेवकूफ समझ के रखे हो क्या? मतलब आई मीन इट्स नाइस टू इम्प्रेस लाइक अ गोरी, लाइक अ नॉन इंडियन पर्सन विथ एक ऋतिक रोशन की फोटो और नीचे नाम लिखा हुआ है ऋतिक एंड सेज एंड यू नो कुछ कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर करके ऐसे नीचे नीचे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है. देर आर लॉट ऑफ गाइज हु मेक फेक प्रोफाइल्स लाइक दैट एंड गर्ल्स ऑल्सो डू दैट बाय द वे. आई एम नॉट सेइंग दैट ओनली गाइज डू इट, बट यू हैव टू बी केयरफुल व्हेन यू आर ऑनलाइन डेटिंग एंड रियली बी केयरफुल फ्रॉम दीज काइंड ऑफ स्कैम्स. हाउएवर, दैट्स नॉट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट टुडे. सो इसीलिए इट्स ऑलवेज बेटर to meet in person, like, you know, approach somebody that you've seen at your gym or your class or something. Lekin, how to better your chances that you actually get that yes when you do ask them out, okay? We were talking about how appearance and first impression can make a very, very, very big difference. Aap jab ek interview ke liye jaate ho, you dress up well, you do your hair well, you prepare. So why not put the same kind of effort when you do go out on a date, even if it's a first casual date, right? So guys, work on that hairline. Theek hai, baal nahi hai, koi baat nahi, baal ud rahe hain, koi baat nahi, usko groom karke acche se aap The Rock jaise bhi ban sakte ho, Dwayne Johnson jaise ya Vin Diesel jaise, you know, they have nice shaved heads and they look very handsome. Ya phir wearing decent clothes that fit your body. Ye nahi ki 10 saal purani t-shirt jab when you were skinny but now you are chubbier, so now that t-shirt doesn't even fit you, that, you know, or for whatever reason, you know, things like, you know, just getting a good haircut. Just trimming your hair does not cut it. Take a reference photo to your barber and get a good haircut. Then beard. We're talking more about these things that you can do to improve your appearance and level up and improve your, there's a new term in the Gen Z language, which I'm borrowing, by the way. I actually like it. It's called the face card. Face card, which means you can improve your looks, and trust me, the world is going to start treating you differently. And it is a fact. I am telling you, it is a fact. Okay? We'll talk more about this right after the song.

0: Zero.
1: Discover Tassels by Renu in Frisco. Designer ethnic wear at great prices.
2: From elegant saris, lehengas to Indo-Western fusion sets and men's ethnic wear. Find festive and wedding styles.
1: For exclusive deals and collections, join Renu's weekly Facebook Live or follow them on Insta.
2: Visit tasselsbyrenu.com or call 563-508-5673. That's 563-508-5673. Tassels by Renu. Dress beautifully, celebrate stylishly.
3: फिल्मों का मजा एक्शन ड्रामा और रोमांस में है और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में
4: कभी चटपटा सा ट्विस्ट कभी तीखा सा किक कभी मीठा सा सुकून
3: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन द फ्लेवर लाउंज
4: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स द फ्लेवर लाउंज हर बाई सुपर हिट
5: बेटा 95% आए
6: हाँ मम्मी
5: गुड अब चलिए पापा आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए
7: मेरा
5: हाँ प्रॉफिट मार्जिन कैश फ्लो टैक्स प्लानिंग बिजनेस गोल्स सारे अकाउंट्स अपडेटेड
7: वो
8: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी कैश फ्लो टैक्स प्लानिंग बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज विजिट agfintax.com कॉल 972-618-8555 एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
9: तारा वो तारा हर तारा
10: अरे अरे अरे डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है तारा कमर्शियल एनर्जी 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर होटल्स गैस स्टेशंस वेयरहाउसेस मेडिकल फैसिलिटीज रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस तारा कमर्शियल एनर्जी पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर टू डेकेड्स कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे तारा कमर्शियल एनर्जी जो आपके बिजनेस को रोशन रखे
11: Buying a home comes with a lot of firsts. Your first walkthrough, your first offer, your first, they accepted. But there's one first you definitely don't want. Your first title problem. Before the keys are yours, make sure everything behind them is clear. With First United Texas Title, get the confidence of a smooth title and closing process. So the only surprise at your new home is what the neighbors bring over. First United Texas Title. Close with confidence. Own with peace of mind. Call 972-897-1530 or visit www.firstunitedtexastitle.com.
12: फैमिली को चाहिए नॉर्थ इंडियन फ्रेंड्स को साउथ इंडियन अब जाए तो जाए कहाँ
13: सिंपल बसेरा ग्रैंड वन डेस्टिनेशन डबल द फ्लेवर
12: मतलब क्रिस्पी गोल्डन डोसा
13: यस रिच नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स फ्लेवरफुल लोडेड बिरयानी और एक डिलिशियस बुफे जहाँ चॉइसेस ही चॉइसेस हैं
12: वाओ ग्रेट फूड फुल वैरायटी एंड एवरीवन्स हैप्पी फैमिली डिनर हो या फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन मेक एवरी मील ग्रैंड एट बसेरा ग्रैंड कम हंग्री लीव हैप्पी टुगेदर
14: Hi, this is Rani Mukherjee. You're listening to Fun Asia Radio.

0: फ्लोर्स क्लीन
1: चेक,
0: विंडोज क्लीन
1: चेक,
0: किचन क्लीन
1: चेक,
0: एयर डक्ट्स क्लीन।
1: वेट, एयर डक्ट्स भी क्लीन करना होता है?
2: बिल्कुल, जो दिखता है वो तो हम क्लीन कर लेते हैं, लेकिन जो नहीं दिखता उसका क्या? That's where Duct Time comes in. Professional duct cleaning with negative pressure technology. No rotor brush, plus dryer vent or chimney cleaning. Ghar ho, restaurants, hotels, offices, ya phir any business. Duct Time cleans beyond what you can see. Call Jeetu Patel at 972-877-2500.

We are back. Yes, हम लोग बात कर रहे थे अबाउट वॉट यू गाइज कैन डू टू लेवल अप एंड यू नो वाई दिस इज इम्पॉर्टेंट. आई टेल यू वाई. ओके, फ्रॉम सम वन हु वॉज नाउ थिंक अबाउट दिस. इवन दो आई हैव वर्कड इन द एंटरटेनमेंट एंड द आर्ट्स इंडस्ट्री सिंस 2009, आई वॉज ऑल्सो दैट पर्सन हु यूज टू से गाइज मेरा टैलेंट ही बहुत कुछ है. एंड इवन दो आई थॉट आई लुक्ड प्रिटी गुड एंड यू नो लाइक आई थॉट आई ड्रेस्ड रियली वेल एंड जो भी है, आई मीन मुझे अपने सेंसिबिलिटी के हिसाब से आई थॉट आई लुक्ड प्रिटी डिसेंट. हाउ एवर आफ्टर आई केम टू द यूएस, आई मीन इट वॉज डिफरेंट यू गाइज. लाइक आई रियलाइज दैट गाइज आई मे हैव बिन लाइक अ सेवन इन इंडिया, बट इन अमेरिका आई वॉज लाइक अ फोर और अ फाइव. एंड एक्चुअली वेन आई एक्चुअली स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेल्फ एंड आई एक्चुअली स्टार्टेड टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ माई स्किन, यू नो डूइंग माई प्रॉपर स्किन केयर, यू नो गोइंग टू द जिम रेगुलरली, लूजिंग वेट, वेयरिंग बेटर क्लोथ्स, जस्ट क्लोथ्स दैट फिट माई बॉडी बेटर एवरी सिंगल डे, लाइक द वे पीपल ट्रीटेड मी चेंज्ड इंस्टेंटली. लाइक आई एम नॉट इवन किडिंग. फॉर इंस्टेंस, समथिंग एज वेरी स्मॉल एज यू नो वेन आई स्टार्टेड वेयरिंग मच मोर प्रेजेंटेबल क्लोथ्स इंस्टेड ऑफ जस्ट अ टी शर्ट एंड जीन्स एंड सम काइंड ऑफ अ स्वेटर और अ जम्पर ऑन टॉप, लाइक वेन आई वॉज एक्चुअली प्रॉपरली ड्रेसिंग अप, यू नो इवन ऑन एन एवरी डे बेसिस, एवरी डे बेसिस, नॉट जस्ट फॉर अ स्पेशल ओकेजन, जस्ट टू गो टू द मार्केट, इवन जस्ट जस्ट पुटिंग माई सेल्फ टुगेदर. एंड यू डोंट हैव टू वेयर अ बॉल गाउन और एनी थिंग. यू नो वॉट हैपन्ड इमीडिएटली, आई नोटिस्ड इवन एट द मोस्ट रैंडमस्ट प्लेसेस पीपल वर होल्डिंग द डोर फॉर मी. आई वो दे वर स्माइलिंग एट मी मोर ऑफन, दे वर मोर पोलाइट, दे अ लॉट ऑफ पीपल, आई गॉट अ लॉट ऑफ येस मैम, येस, स्पेशली दिस इज टेक्सस, सो सेइंग मैम एंड ऑल दैट इज एनी वे इज वेरी पोलाइट. हाउ एवर पहले नहीं आता था, वेन आई एक्चुअली स्टार्टेड पुटिंग द एफर्ट इन टू लुकिंग गुड एवरी सिंगल डे, पीपल एक्चुअली स्टार्टेड चेंजिंग द वे दे बिहेव टूवर्ड्स मी. लाइक रैंडम प्लेसेज आई वुड गो टू, लाइक अ क्यूटी, ओके, टू गेट गैस और समथिंग लाइक दैट, पीपल वुड एक्चुअली स्टैंड एंड होल्ड द डोर फॉर मी एंड वेट फॉर मी टू एक्चुअली मेक द वॉक. एंड आई एम टेलिंग यू, सच अ स्मॉल थिंग लाइक दैट, जस्ट वेयरिंग बेटर क्लोथ्स, जस्ट अ लिटल बिट ऑफ मेकअप ऑन माई फेस, एंड दिस आई एम टॉकिंग फ्रॉम अ गर्ल्स परस्पेक्टिव. इमेजिन फ्रॉम अ गाइज परस्पेक्टिव, इफ यू जस्ट पुट योर सेल्फ टुगेदर, हाउ मच यू कैन इम्प्रूव योर चांसेस ऑफ गेटिंग दैट परफेक्ट डेट. जस्ट थिंक अबाउट इट, सम रियली स्मॉल लिटल अपग्रेड्स, एंड आई डेंट इवन डू मच. इतना वो भी नहीं था कि मेरे पास इतने ज्यादा पैसे थे दैट आई वुड गो बाय डिजाइनर क्लोथ्स और एनीथिंग. नो गाइज, आई शॉप एट यू नो वन ऑफ द चीपर ब्रांड्स, बॉट एवरीथिंग ऑन क्लियरेंस, एंड आई एम टेलिंग यू, इवन अ स्मॉल थिंग इज दैट रियली मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस. पुट इन द एफर्ट टू लुक गुड एवरी सिंगल डे एंड द वर्ल्ड इज गोइंग टू स्टार्ट ट्रीटिंग यू बेटर. ओके, नॉट जस्ट इन द डेटिंग मार्केट, इन एवरी डे लाइफ.

0: गाइज, मैंने भी ऐसे ही किसी को देखा है। पता है कैसे देखा है? मैंने देखा है, ये अर्विंग में एक बहुत ही बड़ा ग्रोसरी स्टोर है जो हम सबको पता है, स्टार्ट्स विद डब्ल्यू, इट्स वॉलमार्ट ऑफ कोर्स। एंड आई वेंट देयर टू शॉप वन डे, जस्ट आई डोंट लिव इन अर्विंग, आई लिव इन डैलस, लेकिन अर्विंग वॉज काइंड ऑफ इन माई वे, आई वॉज गोइंग समवेयर, तो मैंने कहा चलो लेट्स पिक अप अ फ्यू थिंग्स, दिस इज ऑन माई वे। तो आई वॉकड इन एंड आई सॉ दिस फैमिली इन लाइक दीज वुमेन, वाइल आई कम्प्लीटली सपोर्ट द आइडिया ऑफ बींग कम्फर्टेबल इन योर स्किन, हाउ एवर गाइज, वेयरिंग अ नाइटी जो आप घर पे पहनते हो, घर पे पहन के सोते हो, और उसके ऊपर दुपट्टा डाल के वो पैरागॉन की नीली वाली और सफ़ेद वाली हवाई चप्पल पहन के, यार बाहर मत निकलो। हम लोग इंडियंस का नाम वैसे ही बर्बाद है, लोग वैसे ही बोलते हैं कि इंडियंस डोंट नो हाउ टू बिहेव प्रॉपरली, दे हैव नो सेल्फ रिस्पेक्ट वगैरह वगैरह, मतलब ऐसे करके बोलते हैं, लाइक दे हैव नो रिस्पेक्ट फॉर अमेरिकन कल्चर, ये वो। गाइज रिमेंबर, जैसा देश वैसा भेस। आई मीन आई कंप्लीटली सपोर्ट बींग कम्फर्टेबल, बट गाइज नाइटी इज नॉट एन आउटफिट दैट यू वेयर आउटसाइड योर हाउस। आई मीन आई नो नाइटी विद अ दुपट्टा इज अ वेरी वेरी ट्रेडिशनल लुक फॉर अ लॉट ऑफ आंटीज, बट गाइज नो, इट नो। If your mom or if your relative or your friend is dressing like that, please check on them and tell them ki guys, don't do that, okay? Nobody wears that. Pajamas are supposed to be worn while going to bed. Okay, that's number one. And thank you so much for all the supportive calls that you guys are giving to me when I'm talking about all these controversial things. I know there are some people who agree with it and some people who don't. But I just got a call from someone and she says, नाइटी क्या भाई, मैंने तो लड़कों को भी देखा है लुंगी पहन के बाहर चले गए। Guys, we respect the lungi and the pajama and you know all of that. But that's for housewares. That is not to go out. You are in America, and just because America is a little casual, it's a little chill, still does not mean that you dress up like you are a slob. Where, when you dress up well, when you put yourself together, it shows. Again, this is from a caller. I was thinking about it, but I didn't say it in my script today. But he also said, जब आप अपने आप पे काम करते हो, whether it is the way you look, the way you talk, you know, exercising, diet, all of these things, just the way you present yourself shows how much you have self-respect. तो अगर आप अपने आप को respect करते हो, and if you see yourself to be in a much better place than where you already are, or you are trying to elevate your game, that is the first thing that you should start working on. And this is coming from a person who has done this herself. Trust me, I've done it. If I can do it, you can do it. Get a routine, do your hair properly. If you're a woman, do a little makeup. But this is mostly for guys today, because the guys are complaining that, you know, we are not getting girls. Well, if you look like a slob, then you are not going to get any girls. It is as simple as that. And I've told this to my cousin also, jo 35 saal ka ho gaya, usko koi ladki nahi mil rahi hai. Maine kaha, bhai tu aise dikhega to tere ko ladki kabhi nahi milegi. If you want a life partner, you need to better yourself and need to work on yourself, because there are a lot of good looking people out there. So even if the woman might be interested in you, I mean, you are losing out on a lot of good opportunities.
1: अच्छी लग रही है।

are moving on. Well, before we move on to our continued conversation, एक चीज मैं आपको बताना भूल गई कि अगर आप एक business owner हैं in Texas या फिर कहीं भी actually America में, then Funasia Radio is bringing to you, Funasia Network, not just radio, Funasia Network is bringing to you an incredible new product. This one's called Smart Reach AI. तो इसका क्या मतलब है भाई? AI is kind of taking over our world. We already know that. You know that. I know that. Everybody uses AI, from people generating posters and all kinds of things. So business owners, you can also optimize your businesses with this product. Basically, think about it like this, कि आपके Google search engine पे भी आप optimize कर रहे हो, clicks हो रही हैं, लेकिन उसको leads को sales में convert नहीं हो रही है. तो अगर आपको उसको sales में convert करना है, then it's not just about how many people are seeing your ad, it's about how they become customers, okay? तो अगर आपको इसके बारे में और ज़्यादा information चाहिए, then reach out to smartreachai.us and turn local attention into customers. आपको ज़्यादा clicks and leads आएंगी from your local network, calls, bookings, offer redemptions and actual visits to your business, not just random clicks on the internet, okay? So definitely check this one out. I think this is a good option. तो गाइज, आगे बढ़ते हुए हम लोग बात कर रहे थे व्हाट यू गाइज कैन डू स्पेशली फॉर माय गाय फ्रेंड्स. ओके, यू नो व्हाट, यस्टरडे वी वर टॉकिंग अबाउट स्किन केयर, हैविंग अ सिंपल स्किन केयर रूटीन, गेटिंग अ नाइस हेयर कट, यू नो, बी स्पेसिफिक, डोंट जस्ट गेट अ रैंडम ट्रिम. एक चीज हम कई बार, मैंने खुद भी नोटिस किया है, विच इज अ लॉट ऑफ गाइज लाइक टू हैव अ नाइस बियर्ड, अ नाइस थिक बियर्ड, बिकॉज इट काइंड ऑफ लुक्स अ लिटल मैस्कुलिन एंड यू नो the guys think especially it looks cool, you know, it gives you that edginess, thoda bad boy look types. However, uske chakkar mein na aap log apni beard ko trim karna bhool jate ho. It is unkept, it looks shabby and it does not look, I mean, it doesn't enhance your features. So for example, if you are someone who is on the heavier side, that means maybe you have inflammation on your face, aapka face thoda gol batol hai, maybe you're a little bit chubby, thoda sa है, कोई बात नहीं, कोई होता है, इट्स वेरी नॉर्मल, नो बिग डील. लेकिन उसमें अगर आप बहुत थिक सी बियर्ड रख रहे हो, देन योर फेस इज गोइंग टू लुक इवन बिगर एंड इवन राउंडर. सो यू हैव टू थिंक अबाउट थिंग्स दैट एक्चुअली एनहेंस योर फीचर्स इंस्टेड ऑफ यू नो मेकिंग इट नॉट सो कॉम्प्लीमेंटिंग. यू नो, यू वॉन्ट टू लेवल अप, ओके, यू वॉन्ट हैव दैट नाइस शार्प जॉ लाइन लाइक शाहरुख खान एंड ऋतिक रोशन. दैट्स वॉट यू नो यू वॉन्ट एम टूवर्ड्स. नाउ थोड़ा मुश्किल होता है, आई नो सबके लिए करना, बट ट्राई, ट्रस्ट मी, फॉर समवन लाइक मी हु ओनली स्टार्टेड हर वेलनेस रूटीन जस्ट अ फ्यू ईयर्स अगो, आई यूज टू बी ऑलमोस्ट 25 pounds हैवियर. आई एम नॉट इवन किडिंग, सिंस 2022 I have worked consistently with good diet, and I don't mean like crash dieting, I mean just by healthy dieting, whatever I can do by myself and regular workouts, I have lost 25 pounds all by myself, okay? So if I can do it, you can do it, and trust me, it makes a huge difference. Your knees and your legs are going to thank you, trust me, okay? Then guys, we were talking about beard, like keeping that beard in shape. Keep it short, even. Fade the cheeks out या फिर shave clean. ये जो बड़ी सी thick सी वो वीरप्पन जैसे दाढ़ी रखेंगे ना, तो उससे कुछ नहीं होगा, लड़कियाँ नहीं आएंगी उससे. Everything is fine, but messy by neglect is a bad option. अगर आप बड़ी दाढ़ी रख रहे हो, then you know, aim for something cool like धुरंधर, what was his name, क्या नाम था, हमजा की तरह अच्छे से दाढ़ी रखो यार. मतलब रखना है तो properly रखो, या फिर मत रखो, ठीक है, in my opinion.

0: Now just imagine, एक लड़की नकचड़ी सी, थोड़ी सी पागल, you know, slightly mad like you.
1: अच्छा?
0: और एक लड़का.
1: और लड़का बड़ा समझदार है ना?
0: नहीं नहीं, लड़का तो उससे भी बड़ा पागल, वरना उससे प्यार कैसे करता? और एक दिन चर्च में

एंड गाइज वी आर अबाउट टू गो इन टू अ ब्रेक. लेकिन ब्रेक में जाने से पहले अगर आप कोई इवेंट करने की सोच रहे हैं, जैसे वेडिंग, ग्रेजुएशन, इवन अ कॉर्पोरेट इवेंट फॉर दैट मैटर, फॉर एग्जाम्पल इफ यू ओन अ बिजनेस और समथिंग और एनी काइंड ऑफ अ स्पेशल सेलिब्रेशन, विनेसा इवेंट ब्रिंग्स इट ऑल टुगेदर एंड दे हैव, बिकॉज दे विल डू इट ऑल फॉर यू. Venues, decor by signature events, photography, hospitality, catering exclusively by Basera Grand. Call Hari Basera at 469-442-8770. Vanessa Evans, your celebration partner. तो गाइज हम लोग ब्रेक में जाने वाले हैं, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले मैं छोटा सा गाना बजा देती हूँ. अगर गाना खत्म हो जाएगा तो डोंट वरी, वी प्ले द रेस्ट ऑफ इट ऑल्सो फॉर यू.

0: वो अपा।
1: क्या हुआ प्रतीक?
0: अपा का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, उनको रावण ने मारा है।
1: रावण?
0: रावण गेम का विलन।
1: ये तुम क्या कह रहे हो प्रतीक?

0: सारा।
1: प्रतीक मेरी बात सुनो,
0: मुझे पता लगाना है कि पापा के साथ क्या हुआ था।
1: पापा का एक्सीडेंट।
2: भाई ये डायलॉग तो गाने का पार्ट नहीं था, लेकिन ये डायलॉग्स पता नहीं कई बार वैसे ट्रैक्स में आ जाते हैं, तो वी आर गोना स्किप थ्रू दोज सो यू कैन एंजॉय द म्यूजिक।

0: Too funny.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Want to explore properties in India? You don't need to fly to India. The Gruh Pravesh India Property Expo is coming to Frisco. Meet top developers from Bengaluru, Hyderabad, Mumbai, Pune, Chennai and Delhi NCR. Explore 200 plus projects for your dream home or next investment. October 10th and 11th, Hath Regency Frisco, 10 a.m. to 8 p.m. Free entry, free parking. Gruh Pravesh India Property Expo by My Square Feet.
4: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खान ज़ादा जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खान ज़ादा 682-551-6500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Fun Asia.
5: Bindas bolo. Bolo, bolo, bolo, bindas bolo.
6: Jab gaana bole bindas, to shaam bhi hogi bindas. Join Banda Bindas, Marvin Das, Monday se Thursday from 5 p.m. to 7 p.m. for music, musti or full-on entertainment. Powered by Texas Star Rehab and Performance Center or Himalayan Bazaar. Sirf Fun Asia Radio par.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Want to explore properties in India? You don't need to fly to India. The Gruh Pravesh India Property Expo is coming to Frisco. Meet top developers from Bengaluru, Hyderabad, Mumbai, Pune, Chennai and Delhi NCR. Explore 200 plus projects for your dream home or next investment. October 10th and 11th, Hath Regency Frisco, 10 a.m. to 8 p.m. Free entry, free parking. Gruh Pravesh India Property Expo by My Square Feet.
3: कस्टमर्स हिंदी में मिलते हैं, तेलुगु में भी, पंजाबी में भी और तमिल में भी, तो ऐड सिर्फ एक लैंग्वेज में क्यों?
4: फन एशिया नेटवर्क के साथ रीच कीजिए DFW के मल्टीपल देसीज को एक ही पावरफुल नेटवर्क पर. आज ही कॉल करें 4694243188 और ईमेल sales@funasia.net. फन एशिया नेटवर्क, वन नेटवर्क, मेनी लैंग्वेजेस एंड मैक्सिमम रीच.
5: Dallas, are you ready? Jabu Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू. लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई. डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com. फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Fun Asia.
6: Bindas bolo. Bolo, bolo, bolo, bindas bolo.
7: Jab gaana bole bindas, to shaam bhi hogi bindas. Join Banda Bindas, Marvindas, Monday se Thursday from 5 p.m. to 7 p.m. for music, musti or full-on entertainment. Powered by Texas R Rehab and Performance Center or Himalayan Bazaar. Sirf Fun Asia Radio par.

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: Desi Swag.
1: Desi Swag.
0: Bollywood Tag. Fun Asia.
1: Fun Asia.

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट। डैलस में रेडियो का डैड फोनेशिया 104.9 FM।
1: Yeah, it's coming up.
2: Mixing in the house.

Yo, yo, yo, yo. Got an Ojla. Abby. Y'all already know, baby.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: फिल्मों का मजा एक्शन ड्रामा और रोमांस में है और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में
3: कभी चटपटा सा ट्विस्ट कभी तीखा सा किक कभी मीठा सा सुकून
2: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन द फ्लेवर लाउंज
3: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स द फ्लेवर लाउंज हर बाई सुपर हिट
4: बेटा 95% आए
5: हाँ मम्मी
4: गुड अब चलिए पापा आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए
6: मेरा
4: हाँ प्रॉफिट मार्जिन कैश फ्लो टैक्स प्लानिंग बिजनेस गोल्स सारे अकाउंट्स अपडेटेड
6: वो
7: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने AG Fintax helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG Fintax led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
8: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
9: Order, order. Mr. Impressions, campaign ka result.
10: Your Honor, hazaron logon ne ad dekha.
9: Miss Clicks.
11: 100 logon ne click bhi kiya.
9: Customers kitne aaye?
12: Evidence found. Actual customer visit is less than 10.
11: Marketing mein clicks nahi, customers matter karte hain. With Smart Reach AI, reach local customers, even competitor visitors, across radio, digital, streaming TV and audio. Measure calls, bookings, redemptions and actual visits. Visit smartreachai.us. Smart Reach AI, turn attention into customers. Smart Reach AI, a Fun Asia Network product.
13: Hi, this is Kunal Kapoor and you're listening to Fun Asia Radio.

एक रात वो गया था जहाँ रात रुक के, अब तक रुका हुआ हूँ वहीं रात रुक के। डोंट चेंज दैट डायल, कीप इट राइट हियर ऑन फन एशिया रेडियो 104.9 FM।

दोस्तों, मुस्कुराहट को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। स्माइल ज्यादा कीजिए, फ्री है और सबको अच्छी भी लगती है। वो कहते हैं ना, चेहरे पे मुस्कान हो तो मुश्किलें भी शर्मा जाती हैं। तो आप अपनी स्माइल से, अपनी मुस्कुराहट से आधी से ज्यादा मुश्किलों को तो वैसे ही मात दे सकते हैं, और बाकी आधी को मात देने के लिए फन एशिया रेडियो के साथ बने रहिए।

तन्हाई में, अकेले में, महफिल में और मेले में, आपके साथ है फनीशिया।

0: सो है और ब्लड प्रेशर 160 तो क्या कहोगे?
1: क्या?
2: Wake up!
1: ड्रीम में रियलिटी चेक अक्सर डर बीमारी का नहीं उसके पकड़े जाने का होता है, लेकिन व्हाट इफ में मत अटके, एनुअल चेकअप करवाइए।
3: विजिट एलन इंटरनल मेडिसिन एंड ट्रस्ट डॉक्टर वनीता एंड हर टीम फॉर एनुअल फिजिकल्स, प्रिवेंटिव स्क्रीनिंग्स एंड वेट मैनेजमेंट। न्यू पेशेंट्स विद सेम डे अपॉइंटमेंट्स वेलकम। कॉल 4696499995 और विजिट aimallen.com.
4: Ready for a new opportunity and a fresh start in your career? We're looking for energetic and motivated professionals to join our team across multiple positions. If you're between 25 and 40 with experience in media, sales or related fields, we'd like to hear from you. If you're confident, a strong communicator, multilingual and ready to take on something new, this could be your opportunity. Apply today and become a part of our growing team. Mail at careers@funasia.net.
5: Hey everybody, this is Asim and you're listening to the rocking music of my film only on Fun Asia Radio.

दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ को सिंपल बनाना चाहते हैं तो एक गोल्डन ट्रिक याद रखें। Declutter your desk, declutter your mind. सफाई सिर्फ घर की नहीं बल्कि thoughts और दिमाग की भी जरूरी है। So clean space, clean thoughts and clean vibes only. यही है Fun Asia Radio का अंदाज। सुनते रहिए हमें और इस next गाने को।

जिंदगी एक लंबी फिल्म है और हर दिन एक नया सीन। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो जब भी मुश्किल हो, समझ लो कि डायरेक्टर ऊपर वाला है और स्क्रिप्ट उसकी सुपर हिट ही होती है। बस पॉपकॉर्न लेकर चिल करो, बिकॉज लाइफ इज वर्थ वॉचिंग, जस्ट लाइक वन एजर रेडियो इज वर्थ लिसनिंग।

क्या आपको पता है कि आपकी हार्ट बीट सिंक हो सकती है म्यूजिक के साथ? अगर गाना फास्ट हो तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है, और अगर गाना स्लो हो तो काम हो जाती है, हल्की हो जाती है। तो अगला गाना सुनते ही अपना दिल जरूर चेक कीजिए। फनी रेडियो, लिटरली प्लेइंग विद योर हार्ट बीट्स।

हेलो एवरीवन, एक सिंपल ट्रिक फॉर इंस्टेंट हैप्पीनेस। अपने आप को आईने में देखिए और 30 सेकंड्स के लिए मुस्कुराइए। अजीब तो लगेगा, फनी भी लगेगा, लेकिन आपके दिमाग को ये मैसेज जाएगा कि यू आर जेन्युइनली हैप्पी। वो कहते हैं ना, मुस्कुराहट सबसे खूबसूरत जेवर है, सो इस जेवर को पहने रखिए, स्माइल करिए और डालस की ट्रैफिक को थोड़ा हल्के में लीजिए इस गाने के साथ।

0: Thank you, Father. Thank you very much. Come on.
1: मुझे आज स्कूल में नहीं जाना है.
0: अरे क्यों?
1: नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता.
0: बेटी देखिए, आप कुछ दिन यहाँ रहिए, आपको अच्छा लगने लगेगा. और भी तो बच्चे रहते हैं यहाँ.
1: मैं दिल्ली में नहीं रह सकता.
0: नहीं, आपको यहीं रहना है हॉस्टल में कुछ दिन, समझे?

0: वेरी गुड। और ये कौन है?
1: ये मैं हूँ और मेरे पापा।
0: आपके पापा चश्मा पहनते हैं?

0: And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame, jahan tandoor ki smoky khushboo, sizzling flavors aur chatpate appetizers make an ordinary weekday feel like a delicious celebration. Every Monday through Friday from 5 to 8 p.m. order any two entrees and get one appetizer absolutely free. Bring your family, friends and your appetite. Visit Tandoori Flame in Garland. Terms and conditions apply.
1: कस्टमर्स हिंदी में मिलते हैं, तेलुगु में भी, पंजाबी में भी और तमिल में भी, तो ऐड सिर्फ एक लैंग्वेज में क्यों?
2: वन एशिया नेटवर्क के साथ रीच कीजिए DFW के मल्टीपल देसीज को एक ही पावरफुल नेटवर्क पर. आज ही कॉल करें 4694243188 और ईमेल sales@funasia.net. वन एशिया नेटवर्क, वन नेटवर्क, मेनी लैंग्वेजेस एंड मैक्सिमम रीच.
3: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण एंड यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो.

लेकिन आपकी आंखों से नींद कोसों दूर है, पर हम है ना आपके करीब, आपके रेडियो डायल पर सारी रात आपके साथ। फन इज योर रेडियो 104.9 FM।

हेलो एवरीवन, यू ट्यून्ड इन टू 104.9 एफएम फनी शेयर रेडियो। क्या आपको पता है कि असल में चॉकलेट वंस यूज्ड टू बी अ करेंसी? जी हाँ, माया सिविलाइजेशन में चॉकलेट वाज मनी। इमेजिन आज के जमाने में अगर आपकी सैलरी चॉकलेट्स में मिलती हो तो क्या होगा? डालस में सब सारे के सारे जिम फुल हो जाएंगे। जी हाँ, लेकिन जिंदगी की मिठास तो जिंदगी की मिठास है। मजा लीजिए जिंदगी की मिठास का फनी शेयर रेडियो के साथ।

नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव वाइब्स से और नेगेटिव चीजों से बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि नेगेटिविटी ब्रीड्स नेगेटिविटी। वही नेगेटिविटी आप तक ट्रांसफर हो और आपके सुकून को बर्बाद कर दे, इससे बेहतर है कि पॉजिटिव थॉट्स की तरफ जाइए। और अगर कोई भी पॉजिटिव थॉट आपको नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, फाइनेंशियल रेडियो पे ट्यून इन कीजिए और सुनते रहिए हमारे साथ इन जबरदस्त गानों को। कीप एंजॉयिंग।

दोस्तों, नॉलेज इज द ओनली थिंग जो बांटने से कम नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती है. नॉलेज इज दैट लाइट जो आपकी जिंदगी को रोशन करती है. और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आज के जमाने में नॉलेज सिर्फ किताबों में नहीं, हर कॉन्वर्सेशन, हर सफर, हर गाने में मौजूद होती है. तो क्यूरोसिटी रखिए, सवाल कीजिए, क्योंकि जानने का जुनून ही बनाता है इंसान को बड़ा. नॉलेज ही पावर है, और पावर तो आपको फनी रेडियो भी देता है विद दिस नेक्स्ट सॉन्ग, फील द पावर.

और जब तुम उसकी बारात में क्रैश लैंड हुई टल्ली हो गई। उस दिन कॉलेज वाले प्यार से फॉरएवर वाला प्यार हो गया तुमसे, बाय गॉड।

फाइव एंड हाफ गर्लफ्रेंड्स के बाद ये रियलाइज किया कि ऊपर वाले ने एक ही तुम बनाया। पर तब तक तो मेरी यादों की नहीं, सबके सितारा बन चुकी थी।

0: साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
3: Order, order. Mr. Impressions, campaign ka result.
4: Your Honor, hazaron logon ne ad dekha.
3: Miss Clicks.
5: 100 logon ne click bhi kiya.
3: Customers kitne aaye?
6: Evidence found. Actual customer visit is less than 10.
7: Marketing mein clicks nahi, customers matter karte hain. With Smart HAI, reach local customers, even competitor visitors, across radio, digital, streaming TV and audio. Measure calls, bookings, redemptions and actual visits. Visit smartreachai.us. Smartreach AI, turn attention into customers. Smartreach AI, a Phanasia Network product.
8: Hi, I'm Rajkumar Rao. And you're listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Fun Asia Radio.

शुरू न करे पर करते हैं एंडो थोड़े सीधे हम थोड़े थोड़े वैक हैं हम आगे बाकी सारों में लैग हैं सौ बात की बात है हम चाहे कुछ भी ना करे बेटे उसमें भी स्वैग है हर घूट में स्वैग है हर घूट में स्वैग

0: अरे घूटो में स्वैग है। अरे घूटो में स्वैग है। अरे घूटो में स्वैग है। अरे घूटो में स्वैग है।
1: अभी भी एक घूट बाकी है।

0: जेल से छुटेगा और एक ही दिन में आप सबको खत्म कर देगा।
1: बदराव, वाट लगने रे पोरा जी।

0: एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी
1: तो फिर सिर्फ फन एशिया ही सुनूंगा।
2: Number you're trying to call is busy at the moment. Please try a new number.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फनेशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं फन एशिया पर ही आते हैं।

0: ऑर्डर ऑर्डर मिस्टर इंप्रेशंस कैंपेन का रिजल्ट
1: योर ऑनर हजारों लोगों ने ऐड देखा
0: मिस क्लिक्स
2: 100 लोगों ने क्लिक भी किया
0: कस्टमर्स कितने आए
3: Evidence found. Actual customer visit is less than 10.
2: Marketing mein clicks nahi, customers matter karte hain. With Smart Reach AI, reach local customers, even competitor visitors, across radio, digital, streaming TV and audio. Measure calls, bookings, redemptions and actual visits. Visit smartreachai.us. Smart Reach AI, turn attention into customers. Smart Reach AI, a Phanasia Network product.
4: Hi, this is Saif Ali Khan. You are listening to Fun Asia Radio.

0: 다이기.
1: 9 FM, Fun Asia Radio, Fun Asia Radio, Pure Fact, they see.

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

0: पिक्चर
1: अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
2: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैड टैलिस्मैन रेडियो का डैड फनीशा 104.9 FM
1: Yeah, it's coming up.

Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500 The Jago Times Commission

0: तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com. फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिर अख्तर खानजादा 6825516500. द जागो टाइम्स कमीशन, जागो भी जगाओ भी. एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फनेशिया.
1: Order, order. Mr. Impressions, campaign का result.
2: Your Honor, हजारों लोगों ने ad देखा.
1: Miss Clicks?
3: 100 लोगों ने क्लिक भी किया.
1: Customers कितने आए?
4: Evidence found. Actual customer visit is less than 10.
0: Marketing में clicks नहीं, customers matter करते हैं. With Smart Reach AI, reach local customers, even competitor visitors, across radio, digital, streaming TV and audio. Measure calls, bookings, redemptions and actual visits. Visit smartreachai.us. SmartReach AI, turn attention into customers. SmartReach AI, a Fun Asia Network product.

0: डाक टिकट जारी होगी।
1: 104.9 FM फनेशिया फनेशिया फन फना फंडन।

0: And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame, जहाँ तंदूर की स्मोकी खुशबू, सिज़लिंग फ्लेवर्स और चटपटे एपेटाइजर्स मेक एन ऑर्डिनरी वीकडे फील लाइक अ डिलिशियस सेलिब्रेशन. एवरी मंडे थ्रू फ्राइडे फ्रॉम 5 to 8 PM, ऑर्डर एनी टू एंट्रीज एंड गेट वन एपेटाइजर एब्सोल्युटली फ्री. ब्रिंग योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड योर एपेटाइट. विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
1: कस्टमर्स हिंदी में मिलते हैं, तेलुगु में भी, पंजाबी में भी और तमिल में भी, तो ऐड सिर्फ एक लैंग्वेज में क्यों?
2: वन एशिया नेटवर्क के साथ रीच कीजिए DFW के मल्टीपल देसीज को एक ही पावरफुल नेटवर्क पर. आज ही कॉल करें 4694243188 और ईमेल sales@funasia.net. फन एशिया नेटवर्क, वन नेटवर्क, मेनी लैंग्वेजेस एंड मैक्सिमम रीच.
3: दिस इज उदय चोपड़ा एंड यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो.

0: ऑर्डर ऑर्डर मिस्टर इंप्रेशंस कैंपेन का रिजल्ट
1: योर ऑनर हजारों लोगों ने ऐड देखा
0: मिस क्लिक्स
2: 100 लोगों ने क्लिक भी किया
0: कस्टमर्स कितने आए
3: एविडेंस फाउंड एक्चुअल कस्टमर विजिट इज लेस देन 10
2: मार्केटिंग में क्लिक्स नहीं कस्टमर्स मैटर करते हैं विद स्मार्ट रीच AI रीच लोकल कस्टमर्स इवन कंपेटिटिव विजिटर्स अक्रॉस रेडियो डिजिटल स्ट्रीमिंग टीवी एंड ऑडियो measure calls bookings redemptions and actual visits visit smartreachai.us smartreachai turn attention into customers smartreachai a funasia network product
4: hi this is shraddha pandit and you're tuned into funasia radio

0: शताब्दी के लिए तब किया था महाभारत युद्ध के बाद। अब भोलेनाथ भैंस के रूप में थे जब भीम ने उनको आगे पकड़ लिया। अब उनका सर वो नेपाल में और घड़िया रह गया।
1: जय साहब
2: जय
0: हिंद। 7 किलोमीटर हो गया, 7 किलोमीटर।

0: दे दो, इधर अपना इलाका है, चाय पानी बहुत से मिलेगा। बस इधर एक मिनट रुकेंगे। चल चल जा रुस्तम, बस बस बस बस दो आराम से। हाँ एक मिनट, एक मिनट पकड़िएगा जरा, बस एक मिनट रुकेंगे। आप जानते हैं दुकान के मालिक को, बहुत मेहरबान है, पैसे नहीं लेंगे उससे। लीजिए।
1: मुफ्त में कोई मेहरबान नहीं होता। ये लड्डू के बदले ले जाने कौन जायदाद मांग लो तुम।
2: भाई
0: आपने
2: गलत बात है।
0: चलो चलो चलो चलो।
1: शिव शंभु।
0: जय भोलेनाथ। शाम को मिलता हूँ।
2: मेहरबानी करके कुछ

0: Ta-da!
1: Funny Show Radio, 104.9 FM.
2: 104.9
3: FM. डैड को लगता है मैं गाने के साथ लिप्स मैच नहीं कर सकता. He's wrong. Watch me.

0: समझ हैं? हाँ?
1: बढ़िया।
2: Don't touch that dial. Keep listening.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं फन एशिया पर ही आते हैं।
2: So let me present to you the Pandavas.

0: We need to show the world our power. अब हम डर के शांत नहीं बैठेंगे, करके शांत बैठेंगे.
1: Playing the music you want all day, every day, only on Fun Asia Radio.

0: अजी सुनते हो?
1: अजी नहीं, एजी सुनते हैं।
2: The OG of Tax Planning, AG Fintax. सुनेंगे आपके financial concerns, देंगे smart solutions. Every Friday 9:45 AM, only on Fun Asia Radio.

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

ले के किस्मत में बांटे हैं राहों में काटे हैं।

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: the country and is keeping Indian users' data within India. Prime Minister Modi's completion of 25 years as head of government today drew congratulations from BJP leaders as well as political leaders abroad who marked the milestone with messages highlighting his long tenure in public office and India's growing global engagement. He began his tenure as Gujarat's chief minister on today's date, the 7th of October in 2001, and became prime minister in 2014. Rahul Gandhi announced that opposition MPs would hold a protest at the Jantar Mantar in Delhi over the Election Commission's special intensive revision exercise and Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar. Opposition MPs decided to stage this impromptu protest against him a day after police stopped their march to the Election Commission office in Delhi. Lok Sabha leader of opposition Rahul Gandhi struck this defiant note over 45 FIRs against him, saying every such FIR is a medal for him and that his goal is to have 100 of them. DMK senior leaders also backed Rahul Gandhi on protests against the Election Commission. And West Bengal BJP President Samik Bhattacharya said that the state is set to be renamed Paschim Banga, that through the legislative bill would be introduced in the first session of the assembly. And that, ladies and gentlemen, is all that I have in the news for you this morning. If anything else develops, we'll break it for you right here.
1: Hey Frisco, get ready to celebrate silver like never before. Chandrika Silver by Shri Krishna Jewelers celebrates its grand launch. Discover exquisite handcrafted silver jewelry and artifacts with exciting inaugural offers and raffle prizes. Visit 7777 Warren Parkway, Suite 280 Frisco. Chandrika Silver, the tradition shines in silver.
2: Agar main kahun tumhara cholesterol 300 hai aur blood pressure 160 to kya kahoge?
3: Kya?
4: ड्रीम में रियलिटी चेक अक्सर डर बीमारी का नहीं उसके पकड़े जाने का होता है लेकिन व्हाट इफ में मत अटके एनुअल चेकअप करवाइए
5: विजिट एलन इंटरनल मेडिसिन एंड ट्रस्ट डॉक्टर वनीता एंड हर टीम फॉर एनुअल फिजिकल्स प्रिवेंटिव स्क्रीनिंग्स एंड वेट मैनेजमेंट न्यू पेशेंट्स विद सेम डे अपॉइंटमेंट्स वेलकम कॉल 4696499995 और विजिट aimallen.com
6: देसी फ्लेवर्स भी और टेक्सास के फेवरेट्स भी अब सब कुछ मिलेगा एक ही जगह HEB में सोना मसूरी राइस नानक पनीर पाले जी बिस्किट्स और बहुत कुछ वही ऑथेंटिक स्वाद जिसके साथ आप बड़े हुए हैं और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो आपको यहाँ पसंद है अब एक ही शॉपिंग ट्रिप में ज्यादा काम निपटाइए और इस समर जरूर देखिए HEB के नए DFW स्टोर्स मिड सिटीज अर्विंग और मर्फी में खुल रहे हैं तो आज ही अपने नजदीकी HEB पर जाएं और खरीदिए अपने ट्रेडिशनल्स और टेक्सन फेवरेट्स HEB हियर एवरीथिंग इज बेटर.
7: If you hold H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
8: It's the time to clock out. It's the time to catch up.
9: And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame. जहाँ तंदूर की स्मोकी खुशबू सिजलिंग फ्लेवर्स और चटपटे एपेटाइजर्स मेक एन ऑर्डिनरी वीकडे फील लाइक अ डिलीशियस सेलिब्रेशन एवरी मंडे थ्रू फ्राइडे फ्रॉम 5 to 8 PM ऑर्डर एनी टू एंट्रीज एंड गेट वन एपेटाइजर एब्सोल्युटली फ्री ब्रिंग योर फैमिली फ्रेंड्स एंड योर एपेटाइट विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
10: Buying a home comes with a lot of firsts. Your first walkthrough, your first offer, your first, they accepted. But there's one first you definitely don't want. Your first title problem. Before the keys are yours, make sure everything behind them is clear. With First United Texas Title, get the confidence of a smooth title and closing process. So the only surprise at your new home is what the neighbors bring over. First United Texas Title. Close with confidence. Own with peace of mind. Call 972-897-1530 or visit www.firstunitedtexastitle.com.
11: Dil ki baat kisse kahe?
12: Pandit Gurudev se. 35 साल से ज्यादा के एक्सपीरियंस के साथ पंडित गुरुदेव करते हैं कुंडली रीडिंग बर्थ चार्ट एनालिसिस पाम रीडिंग और फेस रीडिंग ब्लैक मैजिक और नेगेटिव एनर्जी रिमूवल में एक्सपर्टाइज प्यार शादी या रिश्तों की उलझन हो तो पर्सनल गाइडेंस लीजिए कॉल 469-581-1777.
3: That's 469-581-1777. Pandit Gurudev, aaiye, apni baat kahiye.
13: 5-8 straight from the heart. Kal Hindi Hindi Bol.
14: You know my voice on the radio. Now let me be a voice you can trust in real estate. Main hoon Navneeta Khemka, realtor with Keller Williams Realty. Buying, moving or selling a home? I bring market knowledge, creative marketing and personal commitment to your journey. Because to me, real estate isn't just about properties. It's about you, mere dosto, your possibilities and your new beginnings. Every home has a story. Let's create yours together.
15: Call Namrita Khemka at 347-449-4242.
13: Phone uthaiye, number dabaiye.
14: 347-449-4242.
16: कस्टमर्स हिंदी में मिलते हैं, तेलुगु में भी, पंजाबी में भी और तमिल में भी, तो ऐड सिर्फ एक लैंग्वेज में क्यों?
17: वन एशिया नेटवर्क के साथ रीच कीजिए DFW के मल्टीपल देसीज को एक ही पावरफुल नेटवर्क पर. आज ही कॉल करें 469-424-3188 और ईमेल sales@funasia.net. फन एशिया नेटवर्क, वन नेटवर्क, मेनी लैंग्वेजेस एंड मैक्सिमम रीच.

12 minutes past 10 o'clock and a very good morning to you, DFW. This is Rumita and welcome to Gup Shup Gully. Wednesday aa gaya hai, which basically means Monday ka drama peeche reh gaya hai aur Friday ab distance mein dikhne laga hai. Wednesday is such a fun day na. I mean, Monday ko hum full motivation ke saath week start karte hai. Is week ye karenge, wo finish karenge, life sort karenge aur by Wednesday bas itna confidence bacha hota hai ki yaar ye bole, theek hai, aaj jo ho raha hai, hone do. But I actually personally like Wednesdays because Wednesdays reminds you ki week perfect jana zaruri nahi hai. Monday, Tuesday kuch plan ke according nahi hua. तो क्या हुआ? वीक अभी खत्म नहीं हुआ है. यू स्टिल हैव टाइम टू फिक्स समथिंग, फिनिश समथिंग, स्टार्ट समथिंग, या सिंपली डिसाइड कि बाकी के वीक में खुद को थोड़ा सा कम स्ट्रेस देना है. सो वेयर एवर यू आर लिसनिंग फ्रॉम, ऑफिस हो, गाड़ी हो, घर हो, या कॉफी के भरोसे, यू जस्ट फंक्शनिंग, मिडवीक अटेंडेंस लगा दीजिए. टेल मी DFW ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 5, आज आपकी एनर्जी कहाँ है? This is Rumita. Wednesday है, मूड को थोड़ा ऊपर करते हैं और गपशप गली ऑफिशियली स्टार्ट करते हैं. Stay tuned only on Funny Share Radio 104.9 FM.

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग।
1: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस। With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwarji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwarji, 945-527-0897, or visit astrologerishwar.com.
2: वेलकम टू द शादी मेमोरी टेस्ट। रैपिड फायर राउंड स्टार्ट करते हैं। डेकोरेशंस का कलर,
3: नेक्स्ट क्वेश्चन।
2: ब्राइड की एंट्री सॉन्ग,
3: याद नहीं।
2: बफे में क्या था?
3: चना पापड़ी चाट, बिहारी कबाब, दिल्ली निहारी, अचारी चिकन, मटन बिरयानी।
4: शादी में बाकी डिटेल्स भूल सकते हैं, लेकिन खाना कभी नहीं। गैदरिंग्स 50 की हो या 500 गेस्ट के लिए, चूज सिग्नेचर कुजीन्स, कस्टमाइज्ड केटरिंग, लाइव कुकिंग स्टेशंस एंड प्रोफेशनल सर्विस। कॉल 972-905-5449। सिग्नेचर कुजीन, द टेस्ट योर गेस्ट्स विल रिमेम्बर।
5: Order, order. Mr. Impressions, campaign का result.
6: Your Honor, हजारों लोगों ने ad देखा.
5: Miss Clicks?
7: 100 लोगों ने click भी किया.
5: Customers कितने आए?
8: Evidence found. Actual customer visit is less than 10.
9: Marketing में clicks नहीं, customers matter करते हैं. With Smart Reach AI, reach local customers, even competitor visitors, across radio, digital, streaming TV and audio. Measure calls, bookings, redemptions and actual visits. Visit smartreachai.us. SmartReach AI. Turn attention into customers. SmartReach AI, a Phanasia network product.
10: फैमिली को चाहिए नॉर्थ इंडियन, फ्रेंड्स को साउथ इंडियन, अब जाए तो जाए कहाँ?
4: सिंपल, बसेरा ग्रैंड, वन डेस्टिनेशन, डबल द फ्लेवर।
11: मतलब क्रिस्पी गोल्डन डोसा?
4: यस, रिच नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स, फ्लेवरफुल लोडेड बिरयानी और एक डिलिशियस बुफे जहाँ चॉइसेस ही चॉइसेस हैं।
11: वाओ, ग्रेट फूड, फुल वैरायटी एंड एवरीवन्स हैप्पी।
10: फैमिली डिनर हो या फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन, मेक एवरी मील ग्रैंड एट बसेरा ग्रैंड। बसेरा ग्रैंड, कम हंग्री, लीव हैप्पी टुगेदर।
12: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
13: कुछ भी नहीं, Ura Debt Relief will do it for us.
12: क्या मतलब?
13: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
12: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
13: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
12: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
14: Don't let debt ruin your life. Visit Ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
15: Elwing वालो, ध्यान से सुनो। ये सिर्फ म्यूजिक नहीं, हिंट है। Because the best chicken in Dallas is finally in Irving. Crispy, juicy, bold. The chicken Dallas has been craving after Plano and Richardson. Sal's Hot Chicken is now in Irving, bringing the crunch, the flavor and the heat. You heard chicken, we heard Sal's. Grand opening on 10th October.
16: A.R. Rahman, live with a full orchestra. Experience the Grammy and two-time Academy Award-winning composer behind Slumdog Millionaire like never before. The A.R. Rahman Symphonic Experience brings his iconic music to life in an extraordinary symphonic celebration, October 29th at Texas Trust Credit Union Theater. One night, a live orchestra, the music of A.R. Rahman. Don't miss it. Get your tickets now.

आशिकों की कॉलोनी में नहीं, अगर आपको इंडिया में घर लेना है, देन वी हैव दिस इनक्रेडिबल कन्वर्सेशन कमिंग अप एट 10:45 AM टुडे ऑन फनी शेयर रेडियो इन गपशप गली विथ मी, बिकॉज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द गृह प्रवेश इंडिया प्रॉपर्टी एक्सपो जो कि हो रहा है 10th and 11th of October एट द हायत रिजेंसी होटल इन फ्रिस्को. उसके बारे में बात करते हैं, बट कमिंग बैक टू आवर टॉपिक अबाउट द वेंसडेज, यू नो मिडवीक तक आते आते फोन खोलो तो लगता है दुनिया में बहुत कुछ हो चुका है. कोई मूवी ट्रेंडिंग है, कोई सेलिब्रिटी मोमेंट वायरल है, या फिर कोई नई रील. एंड OTT वाले का तो मतलब वालों का तो अलग ही प्रेशर है, लाइक सब देख रहे हैं, मुझे भी देखना है. अरे भाई, जो ऑलरेडी स्टार्ट किया है वो तो फिनिश कर दो. टुडे वी आर गेटिंग एग्जैक्टली इनटू दैट, व्हाट्स बजिंग, व्हाट्स एक्चुअली इंटरेस्टिंग, और क्या सिर्फ ये सब कुछ इंटरनेट का शोर है. स्टे ट्यून्ड बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ गपशप हैपनिंग ओनली ऑन फनी शेयर रेडियो. दिस इज मी रिमिता.

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये ये ये देखो, ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: Hey, तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
4: लिया।
3: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
4: नहीं आया।
3: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्क्ड हार्ड फॉर। नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास। कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक 972-863-7772. That's 972-863-7772.
5: Visit www.sanadainc.com today.
1: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया। ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस।
6: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
1: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
6: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
1: ये क्या होता?
6: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
5: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस, सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस। फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
2: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन।
7: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं। बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
8: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
2: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
9: दैट गरबा वाज टोटली वर्थ इट, वी हैड सो मच फन।
10: आई लॉस्ट सो मच ऑफ कैलोरीज टुडे एंड आई एम स्टार्विंग, बट इट्स सो लेट। Where can we eat now?
9: Don't worry, there's always Fun Pizza Kitchen Frisco.
5: Fun Pizza Kitchen Frisco will be open until 3 a.m. on select Garba nights. Enjoy delicious pizzas with mouth-watering toppings, exciting specialty flavors, pasta and much more. Visit on September 25th and 26th and October 2nd, 4th and 23rd after your Garba fun until 3 a.m. Fun Pizza Kitchen Frisco. Your Garba may end, but the party doesn't.
11: बेटा, 95% आए?
12: हाँ मम्मी।
11: गुड, अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
13: मेरा?
11: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
13: वो
2: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। AG Fintax helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
14: कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं?
15: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।
16: दिला दे घर, बना दे घर, दिला दे घर।
17: Oh my God, this is original.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume!
3: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
4: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
5: Restaurant choose karna ho? Google Reviews. Hotel book karna ho? Google Reviews. Lekin bachcho ke doctor ki jab baat aaye to ek hi review sabse important hota hai. Maa ka review.
6: Isliye Dr. Farhad has been recognized as a DFW Child Mom Approved Pediatrician for 4 consecutive years, 2023 through 2026. Meet Dr. Nishat Farhad at Passion Health Pediatrics, serving families at Frisco and Aubrey, starting at the end of August. Passion Health Primary Care, because every healthy smile begins with trusted care. Call 214-666-6259 and schedule your appointments today.
7: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
8: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
9: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
10: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
9: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
11: हेलो, एक्सीडेंट क्लेम? ओके, नेम ऑफ द लॉयर? उमर ख्वाजा।
12: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com।
13: That garba was totally worth it. We had so much fun.
14: I lost so much of calories today and I'm starving. But it's so late. Where can we eat now?
13: Don't worry. There's always Fun Pizza Kitchen Frisco.
15: Fun Pizza Kitchen Frisco will be open until 3 a.m. on select garba nights. Enjoy delicious pizzas with mouth-watering toppings, exciting specialty flavors, pasta and much more. Visit on September 25th and 26th and October 2nd, 4th and 23rd after your garba fun until 3 a.m. Fun Pizza Kitchen Frisco. Your garba may end, but the party doesn't.
16: ये लास्ट दिवाली पहना था, ये नेहा की शादी में, इस पे तो ऑलरेडी इंस्टाग्राम पर डीपी है।
17: हे भगवान, मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है।
18: जब वार्डरोब में हो फैशन का अकाल तो सीधा इंडियन अटायर जाओ बालिके।
16: प्रभु, डिस्काउंट भी मिलेगा?
18: Of course, festive collection par up to 25% off. Tathastu.
19: Discover stunning lehengas, elegant saris, bridal jewelry and festive styles for men and kids. All at Indian Attire on 2995 Preston Road, Frisco. Indian Attire Frisco, your divine destination for festive fashion.
20: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
21: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
20: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
21: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपर हिट।
22: रेडी फॉर अ न्यू अपॉर्चुनिटी एंड अ फ्रेश
21: start in your career? We're looking for energetic and motivated professionals to join our team across multiple positions. If you're between 25 and 40 with experience in media, sales, or related fields, we'd like to hear from you. If you're confident, a strong communicator, multilingual, and ready to take on something new, this could be your opportunity. Apply today and become a part of our growing team. Mail at careers@funasia.net.

9 minutes past 11 o'clock, you're listening to 104.9 FM, Phanisha Radio. This is Gapshap Gali with me, Ramita. And growing up, yeah, adulting ka major part hai apne finances ko handle karna. You know, kabhi kabhi bank statement khol ke, jab aap charges dekhte ho, kabhi aapne socha hai ki yaar, main abhi bhi iski member hoon? Like streaming apps, music apps, cloud storage, fitness app, kids app, ek app jo free trial tha and apparently अब तो फैमिली मेंबर बन चुका है. यू नो, सब्सक्रिप्शन का जीनियस यही है. वन स्मॉल अमाउंट बहुत ही हार्मलेस लगता है, बट मल्टीपल अमाउंट्स, लाइक 5-6 छोटे छोटे अमाउंट मिलकर जो आपकी प्रॉपरी प्रॉपर ग्रॉसरी लिस्ट बनती है ना, वो तो एक हार्ट अटैक के बराबर ही है. यू नो, आज मैं कोई फाइनेंशियल लेक्चर देने नहीं वाली हूँ, बस वेंसडे क्लीनअप थॉट है आपका कि जो आप ऐप लास्ट 30 दिनों में आपने यूज़ नहीं किया है, उसका ज़रा रिन्यूअल चेक कर लो. कैंसिल करना बिट्रेल नहीं है, बस अपना डिजिटल कबर्ड है ना ये, वो क्लियर कर लो. हाँ, अब अगर फिनेंशियल एडवाइस की सीरियसली ज़रूरत है तो CPS सुधीर पाई के पास जाओ फ्रॉम माय टाइम इक्विटी, जो ऑफर करते हैं पर्सनलाइज स्ट्रैटेजीज फॉर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रियल इस्टेट, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स के बारे में भी जानकारी. और अगर आप अपनी रिटायरमेंट प्लान कर रहे हो, देन डेफिनेटली गिव हिम अ कॉल एट 4697021272. दैट्स 4697021272. और यू कैन सिंपली विजिट mytimeequity.com. DFW आपके फोन में कौन सी कैटेगरी सबसे ज्यादा सब्सक्रिप्शन खा रही है, एंटरटेनमेंट, फिटनेस, स्टोरेज, शॉपिंग या किड्स? कॉल करके मुझे बताओ. 9722355555 इज द नंबर ऑफ द स्टूडियो. Conversation will be private, but the conversation should be fun.

The music will be played, plus with a lot of gupshup, only on Gupshup Gully with me, Rumita. You're listening to 104.9 FM, Funisha Radio. We are talking about the trending topics right now. And news mein ye hai ki YouTube ne recently ek interesting feature announce kiya hai. Soon, viewers apne conversational prompt se... अपने कन्वर्सेशनल प्रॉम्प्ट से कस्टम होम पेज फीड्स बना सकेंगे. मतलब जेनरिक रिकमेंडेशन के बदले जो हमारे यूट्यूब में फीड्स में आते हैं, यू कैन आस्क फॉर समथिंग लाइक 30 मिनट्स कम्यूट के लिए कोई भी फनी हिंदी इंटरव्यू, या फिर अगर शाम को आप घर लौट रहे हो अपने ऑफिस से, देन इवनिंग में लॉन्ग फूड डॉक्यूमेंट्रीज विदाउट शाउटिंग, ऐसा कुछ प्रॉम्प्ट्स देके आप अपने फीड्स कस्टमाइज कर सकते हो. एंड दैट इज द न्यू फीचर दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. एक्चुअली आई लाइक द आइडिया बिकॉज रिकमेंडेशन सडनली विल बी मोर इंटेंशनल, बट इट ऑल्सो रिवील्स के हाउ स्पेसिफिक हमारी मूड जो है वो चेंज होती है, या फिर एक स्पेसिफिक मूड के हिसाब से हम उस फीड को कस्टमाइज कर सकते हैं. वी डोंट जस्ट वांट म्यूजिक एनी मोर, मे बी वी वांट रेनी डेज, किचन क्लीनिंग, माइल्डली नॉस्टैल्जिक एंड नॉट टू सैड म्यूजिक एट टाइम्स ऑल्सो. सो लेट्स क्रिएट दिस इमेजिनरी फीड्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, विच हैज अ न्यू अपग्रेड ऑन यूट्यूब. आपको अगर एक कस्टम फीड बनाना हो तो उसका प्रॉम्प्ट क्या होगा? लाइक क्विक रेसिपीज दैट समथिंग यू आर क्रेविंग फॉर, और सम बॉलीवुड इंटरव्यूज विथ नो गॉसिप, या फिर होम वर्कआउट्स फॉर पीपल हु हेट होम वर्कआउट्स. चलिए, स्टूडियो का नंबर तो आपको पता ही है, 972-235-5555. लेट्स गपशप एंड लेट्स क्रिएट सम इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन.

वैसे सुपरस्टार सिर्फ बॉलीवुड में थोड़ी होते, लाइक एवरी बिजनेस ओनर वांट्स देयर ब्रांड टू बी द सुपरस्टार ऑफ समबडीज फीट, बट उसके लिए सिर्फ सोशल मीडिया पर प्रेजेंट होना इनफ नहीं है, रियल चैलेंज है बॉस। ऐसा क्या बनाए कि लोगों को एक्चुअली अपना स्क्रॉलिंग स्टॉप करना पड़े और देखे कि हमने क्या प्रेजेंट किया है, रील का क्या आइडिया होगा, शूट कैसे होगा, ग्राफिक्स कैसे होंगे, कैप्शंस क्या होगा, बेसिकली कंटेंट जो आपके बिजनेस को और भी इंटरेस्टिंग बनाएगा। एंड दैट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज गोइंग टू बी टेकन बाय रिलेटिव मीडिया, बाय फाइनेंशिया नेटवर्क, क्योंकि उनकी यानी हमारी मीडिया एक्सपर्टीज के साथ स्क्रॉल स्टॉपिंग रील्स, आई कैचिंग ग्राफिक्स, कॉन्टेंट आर क्रिएटेड अराउंड योर बिजनेस एंड योर ब्रांड। प्लस हमारी जो डिजिटल एंड रेडियो एंड कम्युनिटी प्लेटफॉर्म्स है उनसे आपको आपके ब्रांड को और भी एम्प्लीफिकेशन मिल सकता है, आपके कॉन्टेंट को और भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अलॉन्ग साइड द कॉन्टेंट पेजेस दैट यू हैव फॉर योर बिजनेसेस। सो नेक्स्ट टाइम अगर आप सोच रहे हैं कि यार आज पोस्ट क्या करे, leave the content thinking to Relative Media. Call now at 469-424-3188. That's 469-424-3188 and book your content audit today. Relative Media, powered by Funisha Network. Your content, our reach, and the bigger impact of your brand. You're listening to 104.9 FM Funisha Radio. This is Gupshup Gali with me, Ramita.

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग।
1: डैड, प्रॉपर्टी पेपर्स कहाँ है?
2: लैपटॉप में।
1: इन्वेस्टमेंट?
2: गूगल ड्राइव।
1: इंश्योरेंस? पासवर्ड्स?
2: बेटा डोंट वरी, मुझे सब पता है।
1: डैड, वही तो प्रॉब्लम है, सिर्फ आपको पता है।
3: Your family shouldn't have to search for answers when you're not there to give them.
4: Hi, this is Deepti Verma with NRI Wealth. With proper estate planning, protect what you have built and give your family clarity and control.
3: Call 669-243-5799. That's 669-243-5799. Or visit nriwealth.com for a free 15-minute consultation. NRI Wealth. Don't leave a mess. Leave a plan.
5: Yaar, festival season aa raha hai. Aur meri wife ne shopping list bhi de di hai.
6: Kitni lambi list?
5: बस दो पेजेस। इंडियन ड्रेसेस, मिठाई, नमकीन और हाँ, एक पूजा मंदिर भी।
6: अरे तो सब कुछ इंडिया से ही मंगवा लो, SFL Worldwide है ना। इंडिया में आपके डोर स्टेप से सामान पिकअप करके यहाँ सीधा आपके घर डिलीवर करते हैं। पूजा मंदिर हो, झूला हो या फर्नीचर, सामान छोटा हो या बड़ा, ओशन फ्रेट के थ्रू सब शिप हो सकता है।
7: दिस फेस्टिव सीजन इंडिया को अपने और करीब लाएं विद SFL Worldwide. Shipping and moving services from India to the USA and worldwide. Visit SFLWorldwide.com.
8: जहां तंदूर की आंच हर जैसी गर्माहट और अपनों का साथ सब एक ही मेज पर मिल जाए, अब वही पंजाब अपने दमदार स्वाद और दिल से की गई मेहमान नवाजी के साथ अर्विंग में।
9: Introducing Punjab by Page 3. पंजाब से आए शेफ्स के हाथों बना अमृतसरी कुलचा विद छोले और मक्के की रोटी विद सरसों का साग, साथ में एक ठंडी लस्सी।
8: पंजाब by Page 3, now in Irving. स्वाद पंजाब का, अंदाज Page 3 का।
10: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
11: कुछ भी नहीं, Oura Debt Relief will do it for us.
10: क्या मतलब?
11: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
10: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
11: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
10: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
12: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
13: दिल की बात किससे कहें?
14: पंडित गुरुदेव से। 35 साल से ज्यादा के एक्सपीरियंस के साथ पंडित गुरुदेव करते हैं कुंडली रीडिंग, बर्थ चार्ट एनालिसिस, पाम रीडिंग और फेस रीडिंग, ब्लैक मैजिक और नेगेटिव एनर्जी रिमूवल में एक्सपर्टाइज। प्यार, शादी या रिश्तों की उलझन हो तो पर्सनल गाइडेंस लीजिए। कॉल 4695811777। दैट्स 4695811777। पंडित गुरुदेव, आइए अपनी बात कहिए।
0: हुजूर, आपको चुनना होगा, हम या ये बिरयानी।
15: बेगम, मोहब्बत अपनी जगह लेकिन बिरिस्ता की हैदराबादी बिरयानी अपनी जगह।
0: आखिर क्या है इस बिरयानी में?
15: दम में नरमी, मसालों में जादू और हर निवाले में नवाबी स्वाद।
16: Presenting Barista House by Prism Bar and Grill. Authentic Hyderabadi flavors and a truly Nawabi experience. North Indian favorites, delicious desserts and many more to explore. Denton's famous Barista House is now in Frisco, 6377 Custer Road, Frisco, Texas.
17: Happy hours Monday through Friday from 3 p.m. to 7 p.m.
16: Barista House, richness of biryani bliss.
18: ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವುದು ಈಗ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ. ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಚೆನ್ನೈ, ಮುಂಬೈ, ಪುಣೆ ಮತ್ತು ಡೆಲ್ಲಿ NCR ಎಂದ ಟಾಪ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರೂಫ್ ಕೆಳಗೆ. 200+ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗುವಂತ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ. ದಿನಾಂಕ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10th and 11th. ಸ್ಥಳ ಹಯತ್ ರೀಜೆನ್ಸಿ, ಫ್ರಿಸ್ಕೋ. ಸಮಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ರಾತ್ರಿ 8 PM. ಫ್ರೀ ಎಂಟ್ರಿ, ಫ್ರೀ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಮೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತಿರುವ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋವನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ.

यू नो, ज्वेलरी शॉपिंग का भी अपना एक अलग मूड होता है. लाइक कभी आप किसी स्पेशल ओकेशन के लिए कुछ स्टेटमेंट ढूंढ रहे हो, या फिर बस एक ब्यूटीफुल पीस दिखता है एंड दिल वही बोलता है कि यार ओकेशन के बाद ढूंढ लेंगे. एंड दैट्स वेयर यू कैन एक्सप्लोर योर दैट वाली ज्वेलरी या वो वाली ज्वेलरी फ्रॉम श्री कृष्ण ज्वेलर्स विच इज लोकेटेड इन फ्रिस्को. डिस्कवर देयर हैंड क्राफ्टेड कलेक्शन ऑफ गोल्ड, डायमंड्स, पोल की और भी बहुत कुछ, और हर एक डिजाइन जो कि बना है डिफरेंट डिफरेंट ओकेशन के लिए, एंड दैट टू फॉर डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स. सो वेदर यू आर शॉपिंग फॉर अ सेलिब्रेशन लाइक गिफ्टिंग समवन स्पेशल, या फिर सिंपली एडिंग समथिंग ब्यूटिफुल टू योर ओन कलेक्शन, अपना ही पैम्परिंग कर लो यार. स्टॉप बाय एंड एक्सप्लोर श्री कृष्ण ज्वेलर्स एट 13145 मेन स्ट्रीट, सूट 220, फ्रिस्को में. एंड you can have all the detailed information if you want to by calling to this number, which is 430-231-1111. That's 430-231-1111. Sri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. You're listening to 104.9 FM Funny Share Radio. This is Gupshup Gali with me, Ramita.

0: மாமா நோட்ஸ் எடுத்துக்கோ, அப்படியே கையில ஸ்நாக்ஸ் எடுத்துக்கோ.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-24.
7: Air ducts clean?
8: Wait, air ducts bhi clean karna hota hai?
7: Bilkul. Jo dikhta hai, wo to hum clean kar lete hain. Lekin jo nahi dikhta, uska kya? That's where Duct Time comes in. Professional duct cleaning with negative pressure technology. No roto brush. Plus dryer vent or chimney cleaning. Ghar ho, restaurants, hotels, offices, ya phir any business. Duct Time cleans beyond what you can see. Call Jeetu Patel at 972-877-2500.
9: अगर किसी चीज को दिल से चाहो
10: तो पहले चेक कर लो उस पे डील है या नहीं.
11: डील कहाँ?
10: सिंपल, पास्या पे. इंट्रोड्यूसिंग पास्या. डिस्कवर एक्साइटिंग डील्स एंड ऑफर्स एट रेस्टोरेंट्स नियर यू राइट नाउ. ओपन पास्या, सी व्हाट्स अराउंड यू, फाइंड अ डील एंड ग्रैब इट बिफोर इट्स गॉन.
11: डाउनलोड पास्या, दैट्स PAASYA टुडे, बिकॉज़ डील्स दूर नहीं, पास है.
12: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar Ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar Ji, 945-527-0897, or visit astrologerishwar.com.
13: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
14: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
13: पर यहाँ सारी अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
14: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
13: सच में सब संभालेंगे?
14: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
11: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner.
7: अजी सुनते हो?
15: अजी नहीं, एजी सुनते हैं.
16: The OG of tax planning, AG FinTax. सुनेंगे आपके financial concerns, देंगे smart solutions. Every Friday 9:45 AM, only on Funasia Radio.
17: Order, order. Mr. Impressions, campaign का result.
18: Your Honor, हजारों लोगों ने ad देखा.
17: Miss clicks?
19: 100 लोगों ने click भी किया.
17: Customers कितने आए?
20: Evidence found. Actual customer visit is less than 10.
19: Marketing mein clicks nahi, customers matter karte hain. With Smart Reach AI, reach local customers, even competitor visitors, across radio, digital, streaming TV and audio. Measure calls, bookings, redemptions and actual visits. Visit smartreachai.us. Smart Reach AI, turn attention into customers. Smart Reach AI, a Fun Asia Network product.
21: Bindas bolo. बोलो बोलो बोलो बिंदास बोलो.
22: जब गाना बोले बिंदास तो शांति होगी बिंदास. जॉइन बंदा बिंदास मार बिंदास मंडे से थर्सडे फ्रॉम 5 PM टू 7 PM फॉर म्यूजिक मस्ती और फुल ऑन एंटरटेनमेंट पावर्ड बाय टेक्सास स्टार रिहैब एंड परफॉर्मेंस सेंटर और हिमालयन बाजार सिर्फ फनीशिया रेडियो पर.

Himesh Reshamya and Imran Hashmi are coming together again with Gunmaster G9. Aur bas 2000s wali nostalgia automatically on ho gayi hai meri. You're listening to 104.9 FM Funisha Radio. Main hoon Ramita on her show Gup Shup Gully. And interestingly, Himesh bhai ne recently kaha hai ki aaj kal achhe music ki kami nahi hai. Problem hai ट्रैफिक की. जी हाँ, एक दिन में उनका मानना है कि 300 से ज्यादा गाने ही रिलीज हो रहे हैं, तो किसी एक गाने को ग्रो करने का टाइम ही नहीं मिल रहा है. एंड आई थिंक ही हैज अ पॉइंट. पहले एक एल्बम था, हम उसे महीनों तक सुनते थे, और आज के गाने अगर पसंद आने भी लगे तो इंस्टाग्राम में स्क्रॉल करते करते इतनी बार हम रील्स में सुन लेते हैं ना, लाइक सर जाता है वो गाना. मे बी म्यूजिक पहले बेटर, मतलब पहले भी ऐसे होते थे, लाइक मे बी पहले बेटर बहुत था, ऐसा नहीं है. मे बी हम म्यूजिक के साथ ज़्यादा आजकल टाइम स्पेंड कर रहे हैं, एंड ऑल इट इज़ बिकॉज ऑफ द रील्स दैट वी कम अक्रॉस ऑन सोशल मीडिया. व्हाट यू थिंक DFW, हम म्यूजिक अभी चेंज हो गई है या हमारी लिसनिंग हैबिट?

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: As a Texas state legislator, James Tallarico has stood with the South Asian community and fought to lower our costs. He believes that being a Texan isn't about where you come from or how you pray. It's about how you love your neighbors. He's running for U.S. Senate to stand up for all Texans and end the corruption raising our prices. Vote to bring light and hope to Texas. Vote James Tallarico.
4: I'm James Tallarico, and I approve this message.
3: Paid for by Tallarico for Texas. It's the time to clock out.
5: And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame, jahan tandoor ki smoky khushboo, sizzling flavors aur chatpate appetizers make an ordinary weekday feel like a delicious celebration. Every Monday through Friday from 5 to 8 p.m., order any two entrees and get one appetizer absolutely free. Bring your family, friends and your appetite. Visit Tandoori Flame in Garland. Terms and conditions apply.
2: What if your next home came fully loaded with over $35,000 in premium appliances, electronics and designer furnishings included? This nearly new home in Cambridge Crossing, Selina, first occupied in January, is available as the seller relocates. Enjoy resort-style amenities, upgraded interiors and truly move-in ready. Just bring your suitcase. Buyer's agents, get your client under contract by October 15th and earn an additional $2,000 bonus. Call Navneeta Khemka with Keller Williams Realty at 347-449-4242.
6: Every home has a story. Let's create yours together.
7: Zindagi ek safar hai suhana, yahan kal kya ho kisne jana.
2: Life ho ya health, kab kya ho jaye pata nahi. 13 saal tak Texas Primary Care Clinic ne jeeta aapka trust. Aur ab wahi trusted care, urgent care services ke saath, naye Kaiserway location par. Lunoxy Medical, founded by Dr. Mandeep Acharya. Adults aur bachchon ke liye प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे. लुनोक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 डेज अ वीक, 8 एएम टू 8 पीएम, वॉक इन एनी टाइम. 9191 काइजर वे, स्वीट 205, फ्रिस्को.
8: तारा वो तारा हर तारा.
2: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी. 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर टू डेकेड्स. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
9: Hi, I'm Abhishek Bachchan and you're listening to Funasia Radio. Thank you all the listeners for always being there watching our films. Thank you Funasia Radio for spreading the word.

0: Indonesia Radio.
1: फनीशिया 104.9 में आपका स्वागत है. आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को. और मिड वीक वेंसडे, चेहरे पे थोड़ी सी खुशी क्योंकि आधा हफ्ता बीत गया है. बस दो दिन और काम करना है और उसके बाद वीकेंड. यार वीकेंड की एक्साइटमेंट जो है वो कभी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होती है. और इसी मिड वीक को सेलिब्रेट करते हैं आज कुछ बहुत ही प्यारे खूबसूरत मजेदार ट्रैक्स के साथ. हियर इज अ ब्यूटीफुल ट्रैक फ्रॉम द मूवी ब्लफ मास्टर.

That was a beautiful track from the movie Bluff Master. Abhishek Bachchan aur Priyanka Chopra ki film thi ye. And is gaane ko kisne gaya tha? Yaad hai aap logon ko? Iske lyricist the Vishal aur Shekhar. And bada hi different sa number aaya tha. Aur ye ek aisa daur tha jis samay no is tarah ki pop culture ko aur zyada naye andaaz mein pesh kiya ja raha tha. And लोग ऐसे गाने ज़्यादा पसंद कर रहे थे. फिल्मों में एक्सपेरिमेंट भी किया जा रहा था एंड काइंड ऑफ अ रैप और पॉप म्यूज़िक का मिला जुला वर्जन था यहाँ पर. ऐसे ही कुछ धमाकेदार नंबर्स लेकर के आने वाली है आपकी होस्ट आयुषी अभी 12:30 से लेकर के 2:30 तक. ऐसे ही कुछ अलग अंदाज के गाने हम बजाएंगे आपके लिए. अगर आपके पास कोई रिक्वेस्ट हो तो प्लीज़ आप कॉल करिए स्टूडियो के नंबर पे जो कि है 9722355555. शो को आगे बढ़ाते हैं और उसके पहले आपको बता दें कि अगर आप अपना सपनों का घर खरीदना चाह रहे हैं तो वो आपके बिल्कुल भी करीब है. बस एक बार ड्रीम होम मॉर्गेज को याद करिए. 1998 से ड्रीम होम मॉर्गेज ने बहुत सारे परिवारों को नेशन वाइड हेल्प किया है पर्सनलाइज्ड मॉर्गेज सॉल्यूशंस के साथ फॉर बाइंग और रीफाइनेंसिंग. यू कैन कॉल देम एट 9722455626 और विजिट dreamhomemortgages.com. Dream Home Mortgage, मेकिंग ड्रीम होम्स हैपन. टेकिंग यू टू इट्स वेरी ब्यूटिफुल ट्रैक, मजेदार ट्रैक फ्रॉम द मूवी रंग दे बसंत.

आम रेबल, याद है गाना? फिल्म रंग दे बसंती, आमिर खान और बहुत सारे लोग, शर्मन जोशी, आर माधवन, ये सारे थे इस फिल्म में. एक मज़ेदार धमाकेदार फिल्म थी और इसके गाने बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन के थे, जहाँ पर कुछ गाने बहुत ही इमोशनल थे, गाना रोमांटिक था और बाकी सारे गाने आपको रेबल बनाने के लिए बिल्कुल तैयार थे. एंड आई रिमेम्बर बिकॉज ऑफ दिस सॉन्ग माई माई ब्रदर गॉट सो इंस्पायर्ड कि आज तक वो रेबल ही है और उसकी व्हाट्सएप का स्टेटस भी यही है, आई एम नॉट अ रेबल बिकॉज पता नहीं कुछ कुछ कुछ कुछ कुछ ऐसा है उसका. सम टाइम आई रीड दैट आउट टू यू. बट येस, दिस वॉज एन अमेजिंग मूवी. एंड आई रिमेम्बर जब कुछ दिन पहले इंडिया में कुछ प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो तब इस फिल्म को लोगों ने बहुत याद किया था. एंड उस समय मैंने कई सारे जो हमारे जेन ज़ीज़ हैं उनके रील्स देखे, जहाँ पर वो मिलेनियल्स को ताने कस रहे थे कि रंग दे बसंती तुम्हारे टाइम पे आई थी और उसको एक्चुअली जी हम लोग रहे हैं. दैट वॉज सम लाइक थोड़ा फनी था, थोड़ा एक्चुअली सोचने वाला था. बट स्टिल प्रोटेस्ट तो इंडिया में लगता है आजकल हर दूसरे दिन चल रहा है, हर दिन खबरों में वही सुनने को मिल रहा है. बट येस, फिलहाल हम यहाँ प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम सुन रहे हैं कुछ बहुत ही प्यारे और अच्छे गाने, समवेयर अराउंड 2000s वाले, जो कि काफ़ी दिनों से हमने शायद सुने नहीं हैं. तो आपको कुछ ऐसे ही गाने सुना रही है आपके होस्ट आयुषी फनीशा 104.9 FM पे. स्टूडियो का नंबर 9722355555 है, कॉल करिए और अपने पसंद के गाने सुनिए, फरमाइश दीजिए, डेडिकेशंस करिए या फिर बस ऐसे ही कॉल कर लीजिए मुझसे बातें करने के लिए. और आपको ये भी बता दें कि अगर आप किसी तरह के कार एक्सीडेंट, ट्रक या फिर स्लिप और फॉल एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो गए हैं, तो फोकस ऑन हीलिंग वाइल अटर्नी ओमार फाइट्स फॉर यू एंड यू पे नथिंग अनलेस ही विन. सो आप इनको कॉल कर सकते हैं 4693005046 पे और विजिट attorneyomar.com. हेयर इज़ एन अमेजिंग ट्रैक जो कि संजय दत्त और प्रियंका चोपड़ा की फिल्म प्लान से है.

So here was another beautiful track in the voice of Alisha Chennai and Anand Raj Anand. Aise hi kuch gaane aapke liye lekar ke aa rahi hai aapki host Ayushi. Kuch I would call it bhule bisre geet. They're not actually geet. They are just an amazing tracks jo ki 90s ke hain. But yes, पता नहीं बहुत सारे ऐसे गानों के बीच में ना ये गाने काफी दिनों से हमने सुने नहीं हैं. ऐसे ही एक और गाने की तरफ जल्दी से आपको लेकर के चलते हैं बिना ज्यादा वक्त गंवाए, क्योंकि ये है फिल्म आंखें का गाना.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
4: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
5: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels, India's finest, Dallas's newest.
6: Call 857-891-8942 today.
7: That garba was totally worth it. We had so much fun.
8: I lost so much of calories today and I'm starving. But it's so late. Where can we eat now?
7: Don't worry. There's always Fun Pizza Kitchen Frisco.
9: Fun Pizza Kitchen Frisco will be open until 3 a.m. on select garba nights. Enjoy delicious pizzas with mouth-watering toppings, exciting specialty flavors, pasta and much more. Visit on September 25th and 26th and October 2nd, 4th and 23rd after your garba fun until 3 a.m. Fun Pizza Kitchen Frisco. Your garba may end, but the party doesn't.
10: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
11: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
12: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
13: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
12: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
14: एलविंग वालों, ध्यान से सुनो, ये सिर्फ म्यूजिक नहीं हिंट है। Because the best chicken in Dallas is finally in Irving. Crispy, juicy, bold. The chicken Dallas has been craving after Plano and Richardson. Sal's Hot Chicken is now in Irving, bringing the crunch, the flavor and the heat. You heard chicken, we heard Sal's. Grand opening on 10th October.
15: Shaadi byah ka koi mauka ho ya koi tyohar, khoobsurat libas khushiyon ko dugna kar deta hai.
16: Har khushi mein aapke saath, Manyavar Mohe. Traditional celebration wear for men, women and children, crafted with exquisite blended fabrics. Manyavar Mohe, located on Regent Boulevard of 635 East in Irving.
17: Welcome to the Shadi Memory Test. Rapid fire round start karte hain. Decorations ka color.
18: Next question.
17: Bride ki entry song.
18: Yaad nahi.
17: Buffet mein kya tha?
18: Chana papri chaat, Bihari kebab, Dilli nihari, Achari chicken, Mutton biryani.
16: Shadi mein baaki details bhool sakte hain, lekin khana kabhi nahi. Gatherings 50 ki ho ya 500 guests ke liye. Choose signature cuisines, customized catering, live cooking stations and professional service. Call 972-905-5449. Signature cuisine, the taste your guests will remember.
6: Ready for a new opportunity and a fresh start in your career? We're looking for energetic and motivated professionals to join our team across multiple positions. If you're between 25 and 40 with experience in media, sales, or related fields, we'd like to hear from you. If you're confident, a strong communicator, multilingual, and ready to take on something new, this could be your opportunity. Apply today and become a part of our growing team. Mail at careers@funasia.net.
19: 104.9 FM, Fun Asia Radio, Fun Asia Radio, non-stop entertainment.
20: 104.9 FM, Fun Asia Entertainment में आपका फिर से एक बार स्वागत है. आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को. आज आवाज थोड़ी बदली हुई है, नाक थोड़ी जाम है, आंख थोड़ी लाल है और छींक पे छींक आ रही है यार. अभी हम यही बोल रहे थे कि मतलब जब ना US आए थे तब ऐसा मतलब लोगों की एलर्जीज और ये चीज़ें सुन के बोलते थे कि हमको ये सब एलर्जी वैलर्जी नहीं होता है, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम लाइक सुपर कूल, हम इंडिया में मिट्टी में खेले बड़े हैं, धूल मिट्टी एंड ये सब से हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम सुपर स्ट्रांग. और अमेरिका में कुछ साल बिताने के बाद ये एलर्जीज जो है ना आपको फील करा देती हैं कि आपका वेलकम टू अमेरिका हो गया भैया. और मौसम बदलते ही अभी देखिए ठंड आने वाली है, हल्की हल्की शुरुआत हो चुकी है. स्टिल द टेम्परेचर्स आर क्वाइट हाई, बट सुबह में जो मतलब मौसम बदल रहा है बेसिकली, तो एलर्जीज भी हो रही हैं और बुरा हाल है यार. आप भी अगर मेरी तरह है ना जिनका हालत ख़राब है इस एलर्जी के कारण और अब आपको लग रहा है कि आपका वेलकम टू अमेरिका हो चुका है, भाई सच में हो चुका है, डन है हम लोग. अब कुछ नहीं हो सकता. अब हर मौसम में ऐसे ही नाक पे मास्क लगा के और एंटी एलर्जी खा करके ही टाइम बताना पड़ेगा. सो यस, मौसम बदल रहा है, अक्टूबर का महीना आ गया है और अक्टूबर के महीने पर ना मैंने कुछ बहुत ही प्यारी और खूबसूरत लाइनें लिखी हैं. पहली बार कुछ लिखा है मैंने, पढ़ के सुनाऊंगी आपको, बट फिलहाल ये गाना सुना देते हैं. ब्रेक के बाद वापस आए हैं तो ये गाना तो बनता है. बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सा ट्रैक लेकर के आ रहे हैं आपके लिए, फनीशिया 104.9 FM पर.

0: So here was this beautiful Coke Studio track Pasuri जो आपके लिए लेके आई थी आपकी होस्ट आयुषी और ऐसे ही कुछ प्यारे खूबसूरत गानों का सिलसिला चल रहा है Fun Asia 104.9 FM पे और एलर्जी सीजन ऊपर है और बीच बीच में छींके आ रही हैं नाक बंद है लेकिन हम अपने वादे से पीछे नहीं हटेंगे आपको अच्छे और प्यारे गाने सुनाते रहेंगे कॉल करिए स्टूडियो के नंबर पर 9722355555 पर और अपने पसंद के गाने रिक्वेस्ट करिए भाई हम उसी के लिए यहाँ बैठे हैं आपकी फरमाइशें लेने के लिए देखिए आपसे बात करते करते छींक भी रुक गई तो आपके साथ ऐसा होता है कि छींक आ रही हो और कुछ और बात कर दो तो डाइवर्ट हो जाता है दिमाग और छींक रुक जाती है सो लेट मी टेल यू दैट दिस पार्ट ऑफ आवर शो इज प्राउडली ब्रॉट टू यू बाय एजी फिनटेक्स ऑफरिंग ट्रस्टेड टैक्स अकाउंटिंग पेरोल बुक कीपिंग एंड बिजनेस एडवाइजरी सर्विसेज फॉर इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस कॉल 4699429888 I repeat, that's 4699429888 or visit agfintechs.com today. और एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है एजी फिनटेक्स की तरफ से कि आप इनका लाइव फ्री वेबिनार ज्वाइन कर सकते हैं एंड डिस्कवर टैक्स सेविंग अपॉर्चुनिटीज रिटायरमेंट प्लानिंग एंड स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स एंड ईयर इन टैक्स स्ट्रैटेजीज विद अनिल ग्रांधी Sunday, October 11th at 11 a.m. Central Time. Register today at agfintax.com and secure your spot. So yes, agar aapko tax saving opportunities, retirement planning, smart investments ya fir year end tax strategies ke bare mein janna hai, to is webinar ko zarur join kariye. Sunday ko hai, October 11th. Theek hai? Filhal ye gana suniye, enjoy kariye, wapas aake fir dheron baatein karenge aur acche acche gaane sunenge.
1: Subscribe now. दिल मिले तब गुल खिले खिले खिले गुल खिले जब दिल मिले तब गुल खिले जब गुल खिले तब दिल मिले मिले मिले मिले मिले दिल मिले

So here was this beautiful track from the movie Yaadein. Yaadein ka ye gaana aapke liye lekar ke aayi thi aapki host Ayushi. Aur abhi hamari ek mitra ka phone aaya tha, hamari caller sahiba Swati ji ka. And she was like, Ayushi, I can feel you. ये एलर्जी का मौसम जो है ना, बस वैसा ही है कि जो तेरा हाल है वो मेरा हाल है और ताल से ताल मिलाते हैं हम, साथ में छीके मारते हैं, राइट स्वाति? सो उन्होंने एक बहुत ही प्यारा सा गाना डेडिकेट किया है हम दोनों के लिए, जो मैं प्ले करूंगी. लेकिन उसके पहले आपको सुनाते हैं ये एक छोटी सी दो चार लाइनें जो मैंने लिखी हैं अक्टूबर के महीने के बारे में, कि भाई कुछ तो खास है इस अक्टूबर के महीने में. वो अक्टूबर की सुबह, हल्की सी मीठी ठंड और धूप में वो नरम सी गर्माहट, हवा का रुख बदलना, मौसम का बदलना, गर्मी का धीरे धीरे जाना और ठंड का आना, हवा में एक अलग सी मीठी सी खुशबू और साथ में घर की याद, वो एहसास कि दुर्गा पूजा बस आने वाली है. अब शायद पंडाल घूमने का वो वक्त नहीं रहा, लेकिन पंडाल की रोशनी, माँ दुर्गा के दर्शन, वो भीड़, वो चहल पहल आज भी मन के किसी कोने को छू जाती है. अक्टूबर के आते ही लगता है जैसे घर थोड़ा और करीब आ गया हो. रसोई से आती अलग अलग पकवानों की खुशबू, अपनों के साथ बैठने की खुशी और त्योहार के मौसम के शुरू होने का उत्साह, फिर वो गर्मियों के कपड़े ठंडों और फिर वो ठंड के कपड़ों का बक्सा खोलना, उसमें से स्वेटर और गर्म कपड़े निकालना, छत पर कंबल और रजाई को धूप दिखाना, यानी जाड़े की तैयारी शुरू. और फिर दिवाली के आने की खुशी, छठ में घर जाने का उत्साह और अपनों के साथ कुछ दिन बिताने की उम्मीद. आज शायद ये सब हमारे लिए सिर्फ यादें और एहसास बनकर रह गया है, लेकिन फिर भी कुछ तो खास है इस अक्टूबर के महीने में. कुछ तो है जो हर साल घर की याद दिलाता है, अपनों के पास ले जाता है और शायद अपनों के पास जाने का एक बहाना बन जाता है. मौसम बदलता है, हवा बदलती है, साल बदल जाता है, लेकिन अक्टूबर आते ही दिल में वही पुरानी सी गर्माहट लौट आती है. कुछ तो खास है इस अक्टूबर के महीने में. कुछ तो खास है इस अक्टूबर के महीने में. तो ये कुछ लाइनें तो मैंने खुद लिखी हैं, आपको सुनाई मैंने. पता नहीं क्यों मन में ये थॉट आया, तो आई जस्ट पेंड इट डाउन एंड आई थिंक बहुत सारी यादें हैं इसमें. चलिए अगले गाने की तरफ लेकर के चलते हैं. स्वाति की फरमाइश पे बहुत ही प्यारा सा गाना, हम दोनों के हाल को जो कर रहा है बयां, फिल्म ताल का टाइटल ट्रैक, अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ में आपके लिए लेके आ रहे हैं.

0: तो ये था फिल्म ताल का बहुत ही प्यारा सा गाना, और ये ताल से ताल जैसे ही मैंने मिलाया मेरी चीखें बंद हो गई और मेरी आवाज़ थोड़ी बेटर हो गई है। कि आपको ऐसा लग रहा है एलर्जी सीजन है तो जल्दी से ना आपको कुछ प्रो टिप्स दे देते हैं यार, बहुत ज़रूरी है ये। आई नो दिस वॉज नॉट प्लान, बट मैंने सोचा कि जल्दी से आपको बता दें कि सीजन चेंज होते ही एलर्जीज तो स्टार्ट हो जा रही है ना, हमको चीखें आ रही हैं। बट वॉट यू कैन डू एक्चुअली टू सेव योर सेल्फ, तो भाई बाहर निकलते वक्त प्लीज वेयर अ मास्क कवर, यू नो स्पेशली वेन यू आर अराउंड ग्रास पॉलन और प्लांट्स। अ मास्क कैन हेल्प रिड्यूस एक्सपोजर। दूसरा, एंटी हिस्टामाइन हैंडी रखिए। मेडिसिन लाइक एलेग्रा आर अवेलेबल ओवर द काउंटर एट CVS, वॉलमार्ट एंड मोस्ट फार्मेसीज। मेक श्योर यू डोंट हैव एनी अदर एलर्जीज अलॉन्ग विद दैट एंड लाइक कुछ आपको उसके आपको पता होना चाहिए कि मेडिसिन आपके लिए राइट है या नहीं। एंड डोंट फॉरगेट योर आईज, लुब्रिकेटिंग और आर्टिफिशियल टियर आई ड्रॉप्स कैन हेल्प विद ड्राई इची आईज, दैट दे हेल्प मी अ लॉट। OTC मेडिसिन आर नॉट वर्किंग, देन प्लीज डू सी अ डॉक्टर। डोंट कीप इंक्रीजिंग मेडिसिन ऑन योर ओन, अ डॉक्टर कैन रिकमेंड प्रिस्क्रिप्शन ट्रीटमेंट इफ नीडेड। लॉन मोइंग डे के दिन अंदर रहिए, वर्स्ट हो जाता है एलर्जी जिस दिन मेरा लॉन मो हो रहा होता है। तो इफ पॉसिबल अवॉइड बीइंग अराउंड बीइंग आउटडोर्स व्हेन द लॉन इज बीइंग मोड फॉर अ वाइल आफ्टरवर्ड व्हेन पॉलन एंड ग्रास पार्टिकल्स कैन बी इन द एयर। कीप योर होम क्लीन, शावर, चेंज क्लोथ्स आफ्टर स्पेंडिंग टाइम आउटसाइड एंड कीप विंडोज क्लोज व्हेन पॉलन काउंट्स आर हाई। ट्राई योर कम्फर्ट रेमेडीज, वार्म फ्लूइड्स, काढ़ा, स्टेइंग वेल हाइड्रेटेड कैन फील सूदिंग, ऑल्दो दे डोंट रिप्लेस एलर्जी ट्रीटमेंट। बट हाँ, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो भी चीज़ें आप होम रेमेडीज कर सकते हैं करिए, बिकॉज यहाँ एलर्जी सीजन में ना और कोई रास्ता नहीं है। वो थोड़ा प्रिवेंशन, थोड़ी राइट मेडिकेशन और सीजन को थोड़ा मैनेजेबल बना सकता है। सो अगर आप मेरी तरह एलर्जी से जूझ रहे हैं देन डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड ऐसे मत सोचिए कि आप बहुत स्ट्रांग हैं, मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है आपको या फिर कुछ सब ऐसे ही ठीक हो जाएगा। सी अ डॉक्टर एंड गेट योर सेल्फ ट्रीटेड। चलिए वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, फिर सुनते रहेंगे फनीशिया 104.9 FM। थैंक यू।
1: अजी सुनते हो?
2: अजी नहीं, एजी सुनते हैं।
1: The OG of Tax Planning, AG FinTechs. सुनेंगे आपके फाइनेंशियल कंसर्न्स, देंगे स्मार्ट सॉल्यूशंस। एवरी फ्राइडे 9:45 AM ओनली ऑन फनीशिया रेडियो।
3: That garba was totally worth it. We had so much fun.
4: I lost so much of calories today and I'm starving. But it's so late. Where can we eat now?
3: Don't worry. There's always Fun Pizza Kitchen Frisco.
1: Fun Pizza Kitchen Frisco will be open until 3 AM on select garba nights. Enjoy delicious pizzas with mouth-watering toppings, exciting specialty flavors, pasta and much more. Visit on September 25th and 26th and October 2nd, 4th and 23rd after your garba fun until 3 AM. Fun Pizza Kitchen Frisco. Your garba may end, but the party doesn't.
5: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
6: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास। 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में।
5: दैट मैजिक रिमूवल हो, लव एंड रिलेशनशिप इश्यूज हो, गेट ट्रस्टेड सॉल्यूशंस विद 100% प्राइवेसी।
6: थाउजेंड्स की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से। नाउ इट्स योर टर्न, समस्या का पक्का समाधान, एस्ट्रोलॉजर ईश्वर। कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com।
7: भूख लगी
8: है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
9: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 ईटरी। ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग।
10: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट। यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू Page 3, हब 121 मैकिनी।
11: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
12: कुछ भी नहीं, Ura Debt Relief will do it for us.
11: क्या मतलब?
12: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
11: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
12: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
11: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
13: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
14: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त
7: परफॉर्मेंस में।
14: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
7: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
14: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपर हिट।
15: Order, order. Mr. Impressions, campaign का result.
16: Your Honor, हजारों लोगों ने ad देखा.
15: Miss Clicks?
17: 100 लोगों ने click भी किया.
15: Customers कितने आए?
18: Evidence found. Actual customer visit is less than 10.
19: Marketing में clicks नहीं, customers matter करते हैं. With Smart Reach AI, reach local customers, even competitor visitors, across radio, digital, streaming TV and audio. Measure calls, bookings, redemptions and actual visits. Visit smartreachai.us. SmartReach AI. Turn attention into customers. SmartReach AI, a FunAsia network product.
20: Of Dallas. Heart to heart, FunAsia.
0: वेलकम बैक आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को और हम हैं आपके साथ आज 2:30 बजे तक। आपको बहुत प्यारे खूबसूरत गाने सुनाने वाले हैं और यस, अभी ब्रेक पे जाने के पहले हम एलर्जी सीजन की बात कर रहे थे। बिल्कुल अपने एक्सट्रीम पर है, आज का दिन बहुत ही बुरा है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैंने कोई फ़ोन में खोल करके देखा नहीं है कि आज कितना ज़्यादा एलर्जी का इंडेक्स हाई है। बट यस, यू नो इट्स रियली वेरी बैड और आप लोग प्लीज अपना ध्यान रखिए एंड टेक ऑल द प्रिकॉशंस यू कैन। गाने तो मैं आपको सुना रही हूँ, एंटरटेन आपको करते रहूंगी, पर जितना हो सके उतना प्रिकॉशन रखिए। एंड यस, राइट आफ्टर आई गेव द प्रिकॉशन लिस्ट, हमारे कॉलर का फोन और ने याद दिलाया कि इट्स द फ्लू सीजन 2 विच इज गोइंग टू कम बहुत जल्दी, सो गेट योर फ्लू शॉट्स, अपने आप को प्रिपेयर्ड रखिए। हम लोग सब जानते हैं कि यहाँ पर यूएस में जैसे ही मौसम बदलता है बस हालत ख़राब होने लगती है। जिनके बच्चे छोटे हैं, स्कूल जा रहे हैं या फिर डे केयर्स जा रहे हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा ये वायरसेस स्प्रेड होते हैं। सो यू हैव टू टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बिकॉज यहाँ पर हमारे ख्याल रखने वाले सिर्फ हम ही हैं। सो यू हैव टू कीप योरसेल्फ सेफ एंड हेल्दी। तो भाई जितना भी हो सके इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीज़ें, जो देसी नुस्खे हैं उनको अपनाइए, लेकिन अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब है देन डोंट टेक अ चांस, जल्दी से डॉक्टर को के पास जाइए और जो दवाइयाँ हैं वो लीजिए। क्योंकि मैं जानती हूँ ये ना हम देसी लड़कियों में स्पेशली अपनी माँ से आया है, जहाँ पर अपनी माँ, दादी, नानी, मौसी, चाची, सारी लड़कियों में आया है कि यार हम बहुत लंबा खींचते हैं। मैं भी किसी भी प्रॉब्लम को या बीमारी को ना बहुत लंबा खींचती थी अभी तक, कि दवाई नहीं खाऊंगी और आई ट्राई टू फाइट इट माई सेल्फ, माई इम्यून सिस्टम वुड बी स्ट्रांग। दवाइयाँ खाना अच्छी बात नहीं होती, आई अंडरस्टैंड ऑल दैट, बट नाउ इट्स नॉट द टाइम, बिकॉज हमें पूरे परिवार का ध्यान रखना है। सो डोंट ड्रैग एनी थिंग लॉन्ग, छोटी से छोटी चीज़ को भी जाके फटाक से दिखा लेना चाहिए, दवाइयाँ ले लेनी चाहिए। दैट्स वॉट आई रिकमेंड। आज मैं बहुत सारी बातें, बहुत सारा ज्ञान दे रही हूँ अपने हेल्थ के ऊपर। येस, वी नीड टू टेक केयर ऑफ आर सेल्फ, बट चलिए गाने भी सुना रही हूँ आपको। तो टेकिंग यू टूवर्ड्स अ ब्यूटिफुल ट्रैक, जाने क्यों, फिल्म दिल चाहता का ये गाना उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में है। जाने क्यों लोग अपना ध्यान नहीं रखते यार, अपना ध्यान रखा करो। फिलहाल ये गाना जाने क्यों लोग प्यार करते हैं।

गृह प्रवेश इंडिया प्रॉपर्टी एक्सपो। तो जाइए और जाकर के अपने इंडिया वाले सपनों के घर के एक कदम करीब जाइए। फिलहाल जब घर की बात आती है तो इससे प्यारा तो कोई गाना हो ही नहीं सकता है।

सो टेकिंग यू टूवर्ड्स द नेक्स्ट ट्रैक, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि अगर आप भारत में घर खरीदना चाह रहे हैं, जी हाँ इंडिया में अगर आप एक स्मार्ट प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या अपना ड्रीम होम बनाना चाह रहे हैं, देन विजिट गृह प्रवेश इंडिया प्रॉपर्टी एक्सपो प्रेजेंटेड बाय माई स्क्वायर फीट, द बिगेस्ट इंडिया प्रॉपर्टी एक्सपो इन फ्रिस्को. मीट लीडिंग डेवलपर्स फ्रॉम बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, पुणे एंड दिल्ली एनसीआर एंड एक्सप्लोर ओवर 200 एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स ऑल अंडर वन रूफ. जॉइन देम ऑन अक्टूबर 10th एंड 11th फ्रॉम 10 AM टू 8 PM एट हयात रीजेंसी फ्रिस्को. फ्री एंट्री एंड फ्री पार्किंग. योर परफेक्ट प्रॉपर्टी इन इंडिया कुड बी वेटिंग फॉर यू एट

Business owners, it's not just about how many people see or click your ad, it's about how many become customers. Meet Smart Reach AI, a Fun Asia Network product that helps you reach potential local customers, even those visiting your competitors across radio, digital, streaming TV and online audio. Then measure what truly matters. Calls, bookings, offer redemptions, and actual visits to your businesses. Visit smartreachai.us and turn local attention into customers. By AI ka zamana hai, to bas agar apne business ko badhana hai, to smartreach AI is the solution. Jaiye smartreachai.us par aur apne local attention ko apne customers mein convert kariye. चलिए अगले गाने की तरफ लेकर के चलते हैं. वक्त थोड़ा कम है और बहुत ही प्यारे और खूबसूरत गाने चल रहे हैं. फिलहाल हम 90s से शुरू किए थे और पहुंच गए हैं 70s और 80s के ट्रैक्स पे, लेकिन बहुत ही प्यारे और सुंदर सुंदर गाने चल रहे हैं यहाँ पर. आशा भोसले जी की आवाज़ में ये अगला गाना है आप लोगों के लिए.

Attention, Texas. Texas business owner is looking for smarter commercial energy solution. TrustTara Commercial Energy, proudly serving Texas businesses since 2002 with competitive rates, reliable service and customized energy plans. Aap call kar sakte hain 844-428-2808 pe ya fir aap visit kar sakte hain taraenergy.com aaj hi. To jaiye Tara Energy pe pata kariye aur bas apne कमर्शियल एनर्जी सॉल्यूशन के एक स्टेप नजदीक जाइए. फिलहाल वक्त हो रहा है छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का. ब्रेक पे जाते हैं और जल्दी से वापस आएंगे और आपको छोड़े जा रहे हैं इस बहुत ही प्यारे और खूबसूरत ट्रैक के साथ.

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: एक और लड्डू ले लो।
3: थोड़ी और बिरयानी।
2: अरे अमेरिका जाके थोड़ी मिलेगा।
4: अब सिर्फ सूटकेसेस ही नहीं, वेट, कोलेस्ट्रॉल और शुगर भी एक्स्ट्रा बैगेज बनके साथ आ गए।
5: इंडिया ट्रिप के बाद या कभी भी अपनी हेल्थ को गेस वर्क पर मत छोड़िए। स्केड्यूल योर एनुअल हेल्थ चेकअप एट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। अलॉन्ग विद ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल एंड वेट चेक्स, दे ऑल्सो ऑफर डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी स्क्रीनिंग, अल्कोहल हेल्थ असेसमेंट, फाइब्रो स्कैन, विटामिन B12 टेस्टिंग एंड मेनी अदर प्रिवेंटिव हेल्थ स्क्रीनिंग्स। कॉल और टेक्स्ट 214-666-6259। Health Primary Care.
6: Discover Tassels by Renu in Frisco. Designer ethnic wear at great prices.
7: From elegant saris, lehengas to Indo-Western fusion sets and men's ethnic wear. Find festive and wedding styles.
6: For exclusive deals and collections, join Renu's weekly Facebook Live or follow them on Insta.
7: Visit tasselsbyrenu.com or call 563-508-5673. That's 563-508-5673. Tassels by Renu. Dress beautifully, celebrate stylishly.
8: दिल की बात किससे कहें?
9: पंडित गुरुदेव से। 35 साल से ज्यादा के एक्सपीरियंस के साथ पंडित गुरुदेव करते हैं कुंडली रीडिंग, बर्थ चार्ट एनालिसिस, पाम रीडिंग और फेस रीडिंग, ब्लैक मैजिक और नेगेटिव एनर्जी रिमूवल में एक्सपर्टाइज। प्यार, शादी या रिश्तों की उलझन हो तो पर्सनल गाइडेंस लीजिए। कॉल 4695811777। दैट्स 4695811777। पंडित गुरुदेव, आइए अपनी बात कहिए।
10: डैड, प्रॉपर्टी पेपर्स कहाँ हैं?
11: लैपटॉप में।
10: इन्वेस्टमेंट?
11: गूगल ड्राइव।
10: इंश्योरेंस? पासवर्ड्स?
11: बेटा डोंट वरी, मुझे सब पता है।
10: डैड, वही तो प्रॉब्लम है, सिर्फ आपको पता है।
12: Your family shouldn't have to search for answers when you're not there to give them.
13: Hi, this is Deepthi Verma with NRI Wealth. With proper estate planning, protect what you have built and give your family clarity and control.
12: Call 669-243-5799. That's 669-243-5799. Or visit nriwealth.com for a free 15-minute consultation. NRI Wealth. Don't leave a mess. Leave a plan.
14: Yaar, boss ne fir se daat diya. Traffic alag. और ऊपर से ये स्ट्रेस।
15: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
14: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
15: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
14: ये क्या होता?
15: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
16: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस। फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
17: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन।
18: यार फेस्टिवल सीजन आ रहा है और मेरी वाइफ ने शॉपिंग लिस्ट भी दे दी है।
19: कितनी लंबी लिस्ट है?
18: बस 2 पेजेस। इंडियन ड्रेसेस, मिठाई, नमकीन और हाँ, एक पूजा मंदिर भी।
19: अरे तो सब कुछ इंडिया से ही मंगवा लो, SFL Worldwide है ना। इंडिया में आपके डोर स्टेप से सामान पिकअप करके यहाँ सीधा आपके घर डिलीवर करते हैं। पूजा मंदिर हो, झूला हो या फर्नीचर, सामान छोटा हो या बड़ा, ओशन फ्रेट के थ्रू सब शिप हो सकता है।
20: दिस फेस्टिव सीजन इंडिया को अपने और करीब लाएं विद SFL Worldwide, शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज फ्रॉम इंडिया टू द USA एंड Worldwide। विजिट SFLWorldwide.com.
21: Marvin Das and Bindas Services present the 6th Annual South Asian Food Festival on 1st November from 12 noon to 8 p.m. at the Sound Venue in Koppal. Enjoy food, shopping, dance and live music with free entry and parking. Vendors and exhibitors showcase your business to thousands. Call Marvin at 972-302-7012 to reserve your spot.
22: Touch that dial. Keep listening.
2: Keep listening to 104.9 FM Fun Asia, Nation ka fun station. Aur aap sun rahe hain apni host Ayushi ko Fun Asia par. Aur bhai, allergy season chal raha hai. Aaj gaane bhi matlab baj rahe hain, lekin meri awaaz jo hai na, wo khul ke nahi nikal pa rahi hai iske karan. Aur main apne listeners ko baar baar prepare kar rahi hoon is allergy season ke liye. Because yaar, ye sunne mein bas allergy season lagta hai. Ghar mein koi samajhta nahi hai aur jo log samajhte hain, wo apna dhyan nahi rakhte hain. Isliye fir se एक बार आप लोगों को एलर्जीज के लिए कुछ प्रो टिप्स दे दे रही हूँ. आप बाहर निकल रहे हैं तो कवर यू नो स्पेशली वेन यू आर अराउंड ग्रास पॉलन और प्लांट्स. मास्क कैन हेल्प रिड्यूस एक्सपोजर. कीप एन antihistamine handy. Medicines like Allegra are available over the counter at CVS, Walmart and most pharmacies. Follow the label directions. Keep nasal spray handy. It can help with nasal allergy symptoms. Choose the right one for your symptom and use it as directed. Don't forget your eyes. Lubricating artificial tear eye drop can help with dry itchy eyes. OTC medications not working? See a doctor. Don't compromise on that. Don't keep increasing medicines on your own. A doctor can recommend prescription treatment if needed. Lawn mowing day, please stay in. If possible, avoid being outdoors while the lawn is being mowed for a while afterward when pollen and grass particles can be in the air. Keep your home clean. Shower, change clothes after spending time outside and keep windows closed when pollen counts are high. Try your comfort remedies, warm fluids, kadha, stay well hydrated. This can feel soothing, but ye allergy ka replacement treatment nahi hai. Bas ye aapko thoda sa relax kar sakta hai. Kyunki bhai, is allergy season mein aur koi raasta nahi hai. Thoda sa prevention kariye, thoda sa right medication lijiye aur season ko thoda manageable banaiye aur flu shot bhi le lijiye. Because flu season भी थोड़े दिन में start हो जाएगा. बच्चे school जा रहे हैं, आप office जा रहे हैं, daycares जा रहे हैं, सब जगह अभी मौसम बदलेगा, viruses होंगे. So please do take a good care of yourself. ये एक छोटी सी जनहित में जारी information है मेरे तरफ से. चलिए अगले गाने की तरफ लेकर के चलते हैं. बहुत प्यारा ही खूबसूरत सा गाना आपके लिए लेके आई है आपके होस्ट किशोर कुमार जी की आवाज़ में.

प्लेनों में अच्छे खाने के इंतजार में हैं आप, तो भाई सोचिए मत। सिग्नेचर कुजीन हैज ऑल द राइट फ्लेवर्स फॉर यू। एंजॉय देयर फेमस निहारी, सिज़लिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन एंड माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स। प्लानिंग अ बर्थडे, एनिवर्सरी और स्पेशल सेलिब्रेशन, दे ऑल्सो ऑफर बैंकवेट सर्विसेज विद सिग्नेचर कुजीन एट स्प्रिंग क्रीक एंड अल्मा इन ईस्ट प्लेनो। और गो टू signaturecuisine.net, सिग्नेचर कुजीन Leaving its signature on every taste. तो जल्दी जाइए और ट्राई करिए सिग्नेचर क्विजीन का टेस्टी टेस्टी खाना। अगले गाने की तरफ आपको लेकर के चलते हैं। अब हम लोग कुछ नए नए ट्रैक्स की तरफ आ रहे हैं। हैज अ ब्यूटिफुल ट्रैक फ्रॉम द मूवी गजनी, और इस गाने की फरमाइश आई थी।

ओके, इट्स टाइम फॉर आवर गिव अवे नाउ. फन पिज्जा किचन की तरफ से आपको $10 का गिफ्ट कार्ड मिल सकता है, एक छोटे से सिंपल से सवाल का जवाब दे करके. एंड यू कैन एंजॉय मैक्सिकन इंस्पायर्ड पिज्जा जो कि है फुल ऑन फ्लेवर फिएस्टा. तो भाई ट्राई करिए फिएस्टा वेजी, फाइनली लोको सी फूड पैट्स एंड और कैमरॉन एंड मोर. आंसर टू डेज सिंपल क्वेश्चन एंड यू कैन अ गिफ्ट कार्ड ऑफ $10. टेकिंग यू टूअर्ड्स दिस नेक्स्ट सॉन्ग. करना कुछ नहीं है यार, बस थोड़ी सी फुर्ती दिखानी है. अगर आप सुस्त होकर के बैठे हो तो जल्दी से फ़ोन उठाओ और फ़ोन उठा करके बताओ कौन सी फिल्म का गाना प्ले कर रही हूँ मैं. हमारे पहले कॉलर को मिलेगा ये $10 का गिफ्ट कार्ड. तो हियर्स दिस ब्यूटीफुल ट्रैक, फ़ोन उठाइए और कॉल करिए और बताइए मुझे कौन सी फ़िल्म का गाना है ये.

Here was this beautiful track from the movie Aaja Nach Le. Aur hamare winner hain aaj ke Sanjay. Zordaar taaliyan ho jaye unke liye. तो संजय आपको मिलता है वन पिज्जा किचन की तरफ से $10 का गिफ्ट कार्ड. आप इसको जाके फ्रिस्को लोकेशन से कलेक्ट कर सकते हैं एंड यू कैन एंजॉय देयर अमेजिंग पिज्जाज. और बहुत सारे लोगों के कॉल आए, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूंगी. अभिनव, थैंक यू फॉर कॉलिंग. पवन, थैंक यू फॉर कॉलिंग. समीरा, थैंक यू फॉर कॉलिंग. एंड देयर वर लॉट मोर जिनके नाम मैंने नहीं लिए, बट या प्लीज डोंट गेट डिसअपॉइंटेड. गिव अवेज हमारे हर दिन चलते हैं, सो आप कल भी कॉल करेंगे तो हम डेफिनेटली आपके लिए गिव अवे रेडी रखेंगे. बस थोड़ी सी फुर्ती दिखाने की देरी है. सो टेकिंग यू टूवर्ड्स दिस नेक्स्ट ट्रैक जो कि हमारे विनर आज के विनर संजय ने रिक्वेस्ट किया है, कबीर सिंह का ये गाना. Here's this beautiful track from the movie Kabir Singh, Kaise Hua.

So here was this beautiful track in the voice of Vishal Mishra and Manoj Muntashir, and bahut hi pyara gana hai ye. I mean, voice of Vishal Mishra and bol hai Manoj Muntashir ke. Kabir Singh ka ye gana aapke liye lekar ke aaye the hum. Aur ab waqt ho raha hai aapse vida lene ka. Ji haan, jaane ka time ho raha hai. Ab yahan par hongi Sunehri Kiran jo aapko entertain karengi aur bahut hi amazing show lekar ke aate hain afternoon drive time mein. मेरी तो बैंड बजी हुई है एलर्जी के साथ. अपना ध्यान रखिए. हम आएंगे और आपको फिर से एंटरटेन करेंगे जल्दी ही. लेकिन आज के लिए टाटा बाय बाय. सी यू. आपका बचा हुआ हफ्ता बहुत ही अच्छा हो, बहुत ही सुंदर हो, इसकी कामना करते हुए आज के लिए टाटा बाय बाय. सी यू टुमारो. एंड इज दिस ब्यूटीफुल ट्रैक फ्रॉम द मूवी सैयारा. इसके साथ छोड़े जा रही हूँ. गाना सुनिए और अपनी होस्ट आयुषी को याद करते रहिएगा. मेरे दिए हुए टिप्स को भी ध्यान में रखिएगा भाई. एलर्जी का मौसम है, अपना ध्यान रखें. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे ब्लेस्ड.

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग।
1: अगर मैं कहूँ तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल 300 है और ब्लड प्रेशर 160, तो क्या कहोगे?
0: क्या? ड्रीम में रियलिटी चेक अक्सर डर बीमारी का नहीं, उसके पकड़े जाने का होता है। लेकिन व्हाट इफ में मत अटके, एनुअल चेकअप करवाइए।
2: विजिट एलन इंटरनल मेडिसिन एंड ट्रस्ट डॉक्टर वनीता एंड हर टीम फॉर एनुअल फिजिकल्स, प्रिवेंटिव स्क्रीनिंग्स एंड वेट मैनेजमेंट। न्यू पेशेंट्स विद सेम डे अपॉइंटमेंट्स वेलकम। कॉल 4696499995 और विजिट aimallen.com।
3: ये लास्ट दिवाली पहना था, ये नेहा की शादी में, इस पे तो ऑलरेडी इंस्टाग्राम पर डीपी है।
0: हे भगवान, मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है।
4: जब वार्डरोब में हो फैशन का अकाल, तो सीधा इंडियन अटायर जाओ बालिके।
3: प्रभु, डिस्काउंट भी मिलेगा?
4: ऑफ कोर्स, फेस्टिव कलेक्शन पर अप टू 25% ऑफ। तथास्तु।
2: डिस्कवर स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी एंड फेस्टिव स्टाइल्स फॉर मेन एंड किड्स, ऑल एट इंडियन अटायर ऑन 2995 प्रेस्टन रोड, फ्रिस्को। इंडियन अटायर फ्रिस्को, योर डिवाइन डेस्टिनेशन फॉर फेस्टिव फैशन।
5: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
6: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
7: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
8: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
7: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
0: हुजूर, आपको चुनना होगा, हम या ये बिरयानी।
9: बेगम, मोहब्बत अपनी जगह लेकिन बिरिस्ता की हैदराबादी बिरयानी अपनी जगह।
0: आखिर क्या है इस बिरयानी में?
9: दम में नरमी, मसालों में जादू और हर निवाले में नवाबी स्वाद।
10: प्रेजेंटिंग बिरिस्ता हाउस बाय प्रिज्म बार एंड ग्रिल, ऑथेंटिक हैदराबादी फ्लेवर्स एंड अ ट्रूली नवाबी एक्सपीरियंस। नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स, डिलीशियस डेजर्ट्स एंड मेनी मोर टू एक्सप्लोर। डेंटन्स फेमस बिरिस्ता हाउस इज नाउ इन फ्रिस्को, 6377 कस्टर रोड, फ्रिस्को, टेक्सास।
2: हैप्पी आवर्स मंडे थ्रू फ्राइडे फ्रॉम 3 PM टू 7 PM।
10: बिरिस्ता हाउस, रिचनेस ऑफ बिरयानी ब्लिस।
11: तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
12: लिया।
11: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
12: नहीं आया।
11: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्कड हार्ड फॉर। नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास। कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक, 972-863-7772. That's 972-863-7772.
13: Visit www.sanadainc.com today.
14: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
15: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
14: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
15: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
14: सच में? सब संभालेंगे?
15: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
2: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner.
16: Want to explore properties in India? You don't need to fly to India. The Grow Pravesh India Property Expo is coming to Frisco. Meet top developers from Bengaluru, Hyderabad, Mumbai, Pune, Chennai and Delhi NCR. Explore 200 plus projects for your dream home or next investment. October 10th and 11th, Hath Regency, Frisco, 10 AM to 8 PM. Free entry, free parking. Grow Pravesh India Property Expo by My Square Feet.

रोमांटिक मेलोडीज में आपको करती हूँ वेलकम, प्ले कर रही हूँ कुछ बहुत ही खूबसूरत धीमे धीमे रोमांटिक गाने। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं जी कि अगर आप सोच रहे हैं कुछ पर्सनलाइज सॉल्यूशंस और स्ट्रेटजीज अपने लिए बनाना, जैसे कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रियल एस्टेट, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट और साथ ही साथ रिटायरमेंट प्लानिंग, तो फिर mytimeequity.com इज वेयर यू नीड टू लॉग ऑन। पढ़िए, देखिए वो आपको क्या ऑफर कर रहे हैं। और सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि पर्सनलाइज स्ट्रेटजीज आपके लिए बनाते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट आप उनको बताइए, उनके साथ डिस्कस कीजिए, एंड देन दे विल कम अप विद अ पर्सनलाइज्ड प्लान और अ कस्टमाइज्ड प्लान डिजाइंड स्पेशली फॉर यू। सो नो मैटर व्हाट यू आर प्लानिंग टू डू, माय टाइम इक्विटी कैन हेल्प यू। mytimeequity.com लेड बाय CPA सुधीर पाई। और उनको आप कॉल भी कर सकते हैं, नंबर इज 469-702-1272, 469-702-1272। और इसी के साथ यास्मीन जी, आप ड्राइव कर रही हैं, you are heading off to your work. This is going out to you. Enjoy your drive.

जी हाँ, सुल्तान फिल्म से सुन रहे थे आप ये गाना, और रोमांटिक मेलोडीज़ में इसी तरह के कुछ रोमांटिक खूबसूरत गाने आपके लिए प्ले करती हूँ. अभी 15 मिनट हो रहे हैं हमारे पास बिफोर वी एंटर इनटू आवर पॉप फ्रीक्वेंसी सेगमेंट. और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, अगर आप तैयार हैं कुछ ज़बरदस्त खाने के लिए, जैसे कि बटर चिकन, बिरयानी का दिल कर रहा है, पनीर टिक्का खाना है आपने, दाल मखनी, या फिर ऐसी बहुत सारी लाजवाब डिशेज, तो फिर आपको कहाँ जाना है? आपको जाना है जी तंदूरी फ्लेम, जो कि गार्लैंड में लोकेटेड है. और अब तो वहां जाने का एक और रीजन आपको देती हूँ. दे हैव इंट्रोड्यूस्ड अ फ्लेम आवर, स्पेशल आवर जिसका नाम है फ्लेम आवर. अब ये क्या है जी, मंडे थ्रू थर्सडे 5 बजे शाम से 8 बजे शाम तक अगर आप वहां जाइएगा, दो एंट्रीज ऑर्डर करेंगे तो यू विल गेट एन एपेटाइजर टोटली फ्री, कॉम्प्लीमेंट्री. तो ये आपके लिए जबरदस्त फ्लेम आवर चल रहा है. ऑर्डर एनी टू एंट्रीज मंडे थ्रू थर्सडे 5 PM to 8 PM एंड गेट एन एपेटाइजर टोटली कॉम्प्लीमेंट्री. और अगर आप पहले से देखना चाहते हैं कि क्या क्या उनके मेन्यू पर है, तो फिर लॉग ऑन कीजिए उनकी वेबसाइट पे, tandooriflametx.com. TX means Texas. tandooriflametx.com. This is where dinner and food comes to you with a little extra specialty and heat. Visit them, tandooriflametx.com.

और अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है या फिर पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर आपकी इंश्योरेंस में या नेटवर्क में कवर नहीं होता, तो फिर पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर आपके लिए लेकर आए हैं एक ज़बरदस्त अल्टरनेटिव, एंड दैट इज़ पैशन हेल्थ डायरेक्ट. $85 अ मंथ में आप ये मेंबरशिप ले सकते हैं. दिस इंक्लूड्स प्राइमरी केयर, प्रिवेंटिव केयर, मेडिकेशन मैनेजमेंट, टेली हेल्थ भी होती है जी, एंड देर इज सो मच मोर. तो आप इनको कॉल कर सकते हैं टू गेट मोर आंसर्स टू योर क्वेश्चंस. कोई भी आपका सवाल है, कोई कंसर्न है, या फिर अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं. दैट नंबर टू कॉल और टेक्स्ट इज 214-666-6259. दैट इज पैशन हेल्थ. वेबसाइट भी आप उनकी नोट कर लीजिए, दैट इज पैशन हेल्थ physicians.com. यहाँ आप लॉग ऑन कर सकते हैं टू फाइंड आउट मोर अबाउट देम. प्लीज रिमेंबर, दिस इज नॉट अ हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, सम रिस्ट्रिक्शंस डू अप्लाई. और आपकी कन्वीनियंस के लिए, बिकॉज ऑफकोर्स तबीयत खराब होना या वैसे होना कोई वीक डे या वीकेंड देख के तो आता नहीं, और दूसरा ये कि अगर आप वीक डे में इतना बिजी हैं कि नहीं जा पा रहे हैं डॉक्टर के पास, तो वीकेंड पे आपकी कन्वीनियंस के लिए अर्विंग और फ्रिस्को की लोकेशंस आर ओपन सैटरडे एज वेल एज संडे. डू गिव देम अ कॉल और सेंड देम अ टेक्स्ट 214-666-6259 to find out more about them.

You tuned into 104.9 FM Fun Asia Radio. Thank you so much for connecting with me this afternoon. Up to 3 baj gaye hain aur Wednesday ko 3 baje se leke 4 baje tak aapke liye aata hai Pop Frequency, जिसमें हम प्ले करते हैं कुछ पाकिस्तानी पॉप म्यूजिक और 3:30 to 4 तक आपके लिए लेकर आऊंगी द टॉप 10 ट्रेंडिंग ड्रामास जो कि टीआरपी चार्ट्स पे रूल किया जिन्होंने लास्ट वीक. सो ऑल यू हैव टू डू इज स्टे ट्यून्ड और वो कहते हैं ना सीट की अपनी बेल्ट मान लीजिए बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी वन एक्साइटिंग आवर फॉर यू. वी बिगैन विद दिस आतिफ असलम सॉन्ग जिसमें साथ थी उनकी हदीका कियानी और अब आगे बढ़ रहे हैं. इस अगले गाने के बाद हम सेलिब्रेट करेंगे एक बर्थडे 2 अक्टूबर को एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी का हुआ बर्थडे सेलिब्रेट ब्रिलियंट ब्रिलियंट मूवी स्टार. बट बिफोर दैट लेट्स बिगिन विद दिस सॉन्ग.

अब्रारुल हक की आवाज़ में और साथ में इस वीडियो में नज़र आई महविश हयात, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। अच्छा जी, अब सेलिब्रेट कर रहे हैं हम एक ऐसे स्टार की बर्थडे जिन्होंने लॉलीवुड को दी बहुत ही बेइंतहा बाकमाल फिल्में, आप कह लीजिए। 2 अक्टूबर 1938 इनका डेट ऑफ बर्थ, 23 नवंबर 1983 was it day when we lost him. He was known as the chocolate hero of the industry. Aur na sirf ye ek actor the balki producer the, script writer the, very famous for his charming expressions aur unki attractive personality, unki you know makhmali awaaz aur saath hi saath of course talent to unke andar acting ka koot koot ke bhara hua tha. Unke baalon ka style jo wo pehante the wahi us waqt ke youth ka आइकॉन बन जाता था। वैसे ही बाल चाहिए, वैसे ही पैंट्स चाहिए, वैसे ही शर्ट्स चाहिए। दिस इज नन अदर देन द रैविशिंग, द एब्सोल्युटली हैंडसम वहीद मुराद।

मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं अता पता मालूम नहीं।

अहमद रुश्दी की आवाज में वहीद मुराद पे पिक्चराइज्ड ये गाना आप सुन रहे थे. वी वर गिविंग ट्रिब्यूट टू वहीद मुराद जिन्होंने अभी जिनकी भी 5 दिन पहले बर्थडे सेलिब्रेट हुई अक्टूबर 2nd को. आगे बढ़ते हुए आपको बताऊं जी कि पीएमजे ज्वेल्स अब फ्रिस्को में खुल गया है. सो दे आर ब्रिंगिंग विद देम 60 years ऑफ ज्वेलरी एक्सलेंस और साथ ही साथ टाइमलेस इंडियन क्राफ्ट्समैनशिप. तो चाहे आपको ब्यूटिफुल गोल्ड ज्वेलरी चाहिए, यू आर लुकिंग फॉर समथिंग एलिगेंट एंड डायमंड्स, और यू हैव टू बाय अ ब्राइडल कलेक्शन, कोई भी आपकी सेलिब्रेशन है, एंगेजमेंट आ रही है, और जस्ट यू जस्ट वॉन्ट टू पैम्पर योर सेल्फ और गिफ्ट इट टू समबडी एल्स, पीएमजे ज्वेल्स इज हेयर फॉर यू. दे आर लोकेटेड ऑन मेन स्ट्रीट इन फ्रिस्को. क्योंकि हर जेवर जो हम पहनते हैं वो मतलब एक टाइमलेस हमारा पीस होता है. सो स्पेशल एंड प्रेशियस टू अस. हम इतना एफर्ट करके उसमें पैसे लगा के कोई चीज़ खरीदते हैं तो वो पीस हमारे लिए बहुत स्पेशल होता है. एंड पीएमजे ज्वेल्स, यू आर गोइंग टू फाइंड सच स्पेशल पीसेस. डू विजिट देम. ले आर लोकेटेड ऑन मेन स्ट्रीट इन फ्रिस्को.

फाखर की आवाज में सुन रहे थे आप मंत्रा एल्बम से ये गाना. यू ट्यून्ड इनटू पॉप फ्रीक्वेंसी राइट हियर ऑन योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण. बस अब हम ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं. ब्रेक से वापस आकर शुरू करेंगे अपना टॉप 10 ट्रेंडिंग ड्रामास अकॉर्डिंग टू द TRP चार्ट्स. बने रहिए मेरे साथ. कुछ बहुत ही एक्साइटिंग ड्रामे, कुछ न्यू एंट्रीज हमारे चार्ट्स में हुई हैं और एक नया ड्रामा शुरू हुआ है जिसकी अब हो गई हैं 4 किस्तें तो हो चुकी थी. अब मेरे ख्याल गालिबन आज या कल उसकी 5वीं किस्त आएगी और बहुत ज्यादा लोगों ने किया पसंद. ऑल दो कुछ लिस्ट में मुझे नाम नहीं नजर आ रहा, ये मुझे पॉलिटिक्स समझ में नहीं आ रही, बट बहरहाल लेट्स हेड ऑन टू दिस सॉन्ग. विद दैट वी आर हेड ऑन टू अ ब्रेक एंड देन ड्रामा फीवर.

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: Order, order. Mr. Impressions, campaign ka result.
1: Your Honor, hazaron logon ne ad dekha.
3: Miss clicks?
4: 100 logon ne click bhi kiya.
3: Customers kitne aaye?
5: Evidence found. Actual customer visit is less than 10.
4: Marketing mein clicks nahi, customers matter karte hain. With Smart Reach AI, reach local customers, even competitor visitors, across radio, digital, streaming TV and audio. Measure calls, bookings, redemptions and actual visits. Visit smartreachai.us. Smart Reach AI, turn attention into customers. Smart Reach AI, a Fanasia Network product.
6: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़रवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 डेज a week, 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
7: It's the time to clock out. It's the time to catch up.
8: And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame. जहाँ तंदूर की स्मोकी खुशबू, सिजलिंग फ्लेवर्स और चटपटे एपेटाइजर्स मेक एन ऑर्डिनरी वीकडे फील लाइक अ डिलीशियस सेलिब्रेशन। एवरी मंडे थ्रू फ्राइडे फ्रॉम 5 टू 8 पीएम, ऑर्डर एनी टू एंट्रीज एंड गेट वन एपेटाइजर एब्सोल्युटली फ्री। ब्रिंग योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड योर एपेटाइट। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
9: Stop! Festive fashion check. Navratri ke outfits ready hai?
10: Do chaniya choli hai. Mix and match kar lungi.
9: Fashion violation. Same outfit ko 9 raat. Overtime.
10: To solution?
2: Indian ethnic wear by Jyotika Patel. Explore a stunning collection of stylish, contemporary chaniya cholis for a new look every day in Navratri. Planning a wedding? Discover quality wedding and customized bridal wear for men and women at great prices. Call 945-444-2194 or explore jyotikapateldesigns.com. Indian ethnic wear by Jyotika Patel. Designed for celebrations.
8: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
11: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून।
8: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन, द फ्लेवर लाउंज।
11: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपर हिट। फ्लोर्स क्लीन
1: चेक,
11: विंडोज क्लीन
1: चेक,
11: किचन क्लीन
1: चेक,
11: एयर डक्स क्लीन।
1: वेट, एयर डक्स भी क्लीन करना होता है?
4: बिल्कुल, जो दिखता है वो तो हम क्लीन कर लेते हैं, लेकिन जो नहीं दिखता उसका क्या? That's where Duck Time comes in. Professional duct cleaning with negative pressure technology. No roto brush, plus dryer vent or chimney cleaning. Ghar ho, restaurants, hotels, offices, ya phir any business. Duck Time cleans beyond what you can see. Call Jeetu Patel at 972-877-2500.
12: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Umar Khawaja, the official injury partner of Funasia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Umar Khawaja, your legal lifeline.
13: Hi, this is Madhavan, and you're listening to me on my official radio station, Fanesha Radio.
14: Dallas ki dhadkan, 104.9 FM, Fanesha Radio.

104.9 FM Fun Asia Radio पे वक्त हो चला है ड्रामा फीवर का. जी हाँ, द टॉप 10 ट्रेंडिंग ड्रामास अकॉर्डिंग टू द टीआरपी चार्ट्स आपके लिए लेकर आई हूँ फॉर लास्ट वीक, दैट इज सितंबर 28th से लेकर अक्टूबर 4th तक का जो वीक रहा, उसमें कौन से ड्रामों ने अपनी जगह बनाई टीआरपी चार्ट्स पे. जल्दी से शुरू करते हैं जी 10वें नंबर के ड्रामे से, और 10th नंबर पे जो ड्रामा रहा उसका नाम है कैसा ये इश्क. August 12th से ये ड्रामा आना शुरू हुआ है, एयर होना शुरू हुआ है, और इट कम्स मंडे टू सैटरडे, यानी कि सोप ऑपरा आप इसको काइंड ऑफ कह सकते हैं. 6 दिन आता है हफ्ते में जियो एंटरटेनमेंट पे. जोहा तौकीर इसमें सिला का रोल कर रही हैं, जबकि हशाम खान अली का रोल प्ले कर रहे हैं. उसके अलावा भी यू नो इट हैज़ अ गुड स्टार कास्ट, जैसे कि उस्मान पीरजादा, सलमा हसन एंड मैनी मोर. तो जो स्टोरी है ड्रामे की वो फॉलो करती है इन दो को, सिला और अली को. चाइल्डहुड स्वीटहार्ट्स हैं ये, जिनकी एंगेजमेंट हो चुकी है, और मतलब अरेंज हो गई थी एंगेजमेंट व्हेन दे वर क्वाइट यंग. और सिला इज रेज्ड बाय हर इनक्रेडिबली स्ट्रिक्ट ग्रैंडफादर, जबकि जो अयाज दुरानी जो रोल प्ले कर रहे हैं, ही इज डीपली ट्रामेटाइज्ड बाय हिज ओन डॉटर्स पास्ट लव मैरिज. तभी ये अयाज अहमद का जो अयाज दुरानी का जो रोल इन्होंने किया है, जो इनके ग्रैंडफादर बने हैं, वो अपने ट्रामा जी रहे हैं और सिला के ऊपर वो सारे ट्रॉमास उतर रहे हैं. और फिर सिला का क्या होता है और फिर अली साहब का क्या होता है, मेजर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं ये ग्रैंडफादर साहब, और फिर आगे इनकी कहानी कैसे चलती है. ये है कहानी कैसा ये इश्क है की. सो पीपल आर क्वाइट लाइकिंग इट, स्पेशली जो है वो फास्ट पेस डेली फॉर्मेट की वजह से लोग इसे पसंद करें, क्योंकि कई बार डेली फॉर्मेट के जो शोज हैं वो काफी बोरिंग हो सकते हैं, बट they are liking it, they are liking the chemistry and the tragic separation of the childhood sweethearts. That is what people are connecting to. To ye hua aapke liye 10th number ka drama, aur ab aapko batati hu 9th number pe kaun sa drama raha. Ye ek naya addition hai ji hamari top 10 ki list mein. Drama ka naam Uswa, aur iski ekdam se popularity bahut zyada ho gayi hai. September 23rd se ye drama air hona shuru hua hai. 7 baje aata hai Monday through Sunday. Bahut sare drama mein dekh rahi हूं कि जो डेली सोप ऑपरास हैं या डेली सोप्स हैं अब वो आने लगे हैं हमारी लिस्ट पे. सो ये भी डेली सोप है मंडे थ्रू संडे, और इसको 7 बजे आता है जियो एंटरटेनमेंट पे. सानिया शमशाद इसमें उस्वा का रोल प्ले कर रही हैं, जबकि उमर शहजाद इसमें ईसा का रोल प्ले कर रहे हैं, हारून शेख महबीर का. तो कुछ इस तरह की कॉम्प्लेक्स सी एक स्टोरी बनने वाली है. आपको एक क्विक ग्लिम्स देती हूँ कि स्टोरी फॉलोज उस्वा, जो कि एक चेयरफुल, इंटेलिजेंट, एम्बिशियस मिडिल क्लास यंग वुमन है, जो बैलेंस करती हैं अपने पार्ट टाइम वर्क को और अपनी एजुकेशन को, खुद सपोर्ट कर रही हैं, अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर रही हैं, क्लोज रिलेशनशिप है उनका अपने कजन के साथ, और फिर जो ऑफकोर्स उनको एडमायर करते हैं एंड दे आर यू नो डीपली इन्वॉल्व विद ईच अदर. और फिर क्या होता है उनकी जिंदगी में, यही कहानी है. क्या वो एक दूसरे को मिलेंगे या कोई तीसरा बंदा आ जाएगा बीच में, ये कहानी है इस ड्रामे की. टीआरपीस काफी हाई हो रही हैं, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं इन्हें, स्पेशली द एनिमी टू लवर्स डायनामिक्स लोगों को बहुत पसंद आ रही है. तो देखते हैं कि ये जो तीसरा शख्स आएगा इनकी जिंदगी में वो कैसी डायनामिक्स लेकर आएगा. तो उस्वा इज प्रिटी गेटिंग प्रिटी पॉपुलर.

amongst the audience. इसी के साथ हमने 9 और 10 की बात कर ली. अब मैं आपसे 8वें नंबर की बात करने लगी हूँ. 8वें नंबर पे जो ड्रामा ट्रेंड कर रहा है वो है नश्तर, जो कि करंटली 21 अगस्त से ये ड्रामा एयर होना शुरू हुआ है. जियो एंटरटेनमेंट पे आता है शाम 8 बजे फ्राइडेज एंड सैटरडेज. तो ये ड्रामा है जी, हफ्ते में दो दिन आता है, जिसमें हमें दानिश तैमूर नजर आ रहे हैं और अनम बलोच. दानिश तैमूर की अपनी फैन फॉलोइंग है, जब दानिश का कोई ड्रामा आता है तो फिर उनकी फैंस जो फॉलोइंग है वो उस ड्रामे के पीछे पीछे आ जाती है. तो इसीलिए दानिश का ड्रामा आते ही इतना पॉपुलर हो जाता है. साथ अनम बलोच ने अपना एक बहुत अच्छा फैन फॉलोइंग बना रखी है. सो अनम और दानिश दोनों, देयर द पीपल आर लविंग देयर पेयरिंग, पीपल आर लविंग देयर केमिस्ट्री. सो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी आगे क्या होने वाला है इन लोगों की कहानी में. सो ये तीन ड्रामे थे 10, 9 and 8. वापस आएंगे तो विल टॉक अबाउट 7, 6 and 5.

ड्रामा फीवर में आपको एक बार फिर वेलकम करती हूँ राइट हियर ऑन योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण. पॉप फ्रीक्वेंसी चल रहा है ये और उसमें लेके आती हूँ ड्रामा फीवर 3:30 टिल 4 PM. 10, 9 और 8 हमने ड्रामा की बात कर ली. अब मैं आपको 7वें नंबर पे जो ड्रामा ट्रेंड किया लास्ट वीक उसके बारे में बताती चलूँ. दैट ड्रामा इज इज्जत, जो कि सितंबर 20th से ऑन एयर होना शुरू हुआ. डेली आता है ये भी ड्रामा 7 PM एक्सक्लूसिवली ऑन ARY डिजिटल YouTube चैनल एंड टेलीविजन नेटवर्क. तो मीरब अली और अताबिक मोहसिन साथ ही साथ हशाम खान हमें इस ड्रामे में नजर आ रहे हैं. प्लॉट इज अबाउट लॉन्ग फॉर्मैट डेली फिक्शन सीरीज सेंटरिंग अराउंड family dynamics, complex emotional conflicts और वही सारा जो ड्रामों में चलता है और लोगों को हमेशा पसंद आता है. So, Izzat has been consistently dominating the highly competitive 7 PM slot, regularly scoring strong television ratings, जो कि 7.2 से 7.8 TRPs ले रहा है ये constantly. So, it is there at number 7. और इसी के साथ अगला ड्रामा जो कि 6 नंबर पे है, that is the drama serial मोहब्बत. अब ये देखिए सारे नए नए, क्योंकि पुराने पुराने ड्रामे अब खत्म हो रहे हैं. जैसे कि अभी आपकी इज्जत खत्म हुआ, उससे पहले जो है दो चार ड्रामे और खत्म हुए और नए ड्रामे उनकी जगह जैसे जंजीरें खत्म हुआ, तो अब ये नए ड्रामे आ रहे हैं. 28 सितंबर से इस ड्रामे ने ऑन एयर होना शुरू किया है. मोहब्बत नाम है इस ड्रामे का, जो कि जियो एंटरटेनमेंट पे आता है मंडेज एंड ट्यूजडेज शाम 8 बजे. इसमें हमें नजर आ रहे हैं फिरोज खान, अ हाईली स्टडेड स्टार कास्ट है इस ड्रामे की. फिरोज खान, नवाल सईद, ऐना आसिफ, शाहवीर कादवानी, सवेरा नदीम, गौहर मुमताज, हिबा अली खान, मतलब यू नेम इट एंड द स्टार इज इन देयर. सो इट इज अ ह्यूज स्टार कास्ट ड्रामा जो कि अभी शुरू हुआ है और 5वें नंबर पे इसने अपनी जगह बना रखी है. द ड्रामा एक्सप्लोर्स द इंटेंस कम्प्लेक्सिटीज ऑफ लव एंड यू नो क्लास डिफरेंसेज एंड एक्सपेक्टेशंस जो फैमिली को आपसे होती हैं. एंड देन द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड दीज टू पीपल, जो कि जरार और याहिया, जो कि बेटे हैं बड़ी वेल्दी फैमिली के. और फिर याहिया को प्यार हो जाता है आसिया से, और फिर क्या होता है, आसिया मिडिल क्लास है, वो ही कल्ले देखे कहानी कुछ वैसी ही होती है, लेकिन उसकी जो ट्रीटमेंट होती है या उसके जो एक्टर्स होते हैं उनकी वजह से हमें कहानियां ज़्यादा अच्छी लगने लगती हैं. सो ये ड्रामा भी आपको बताती चलूँ 7.8 TRPs के साथ 5वें नंबर पे है. फिरोज खान लाइक दानिश तैमूर. फिरोज जब किसी ड्रामे में आते हैं तो वो अपनी फैन फॉलोइंग साथ लेके आते हैं, और इसीलिए फिरोज खान और दानिश तैमूर का ड्रामा जब भी रिलीज होता है पहले ही 2-3 हफ्तों में वो 5वें, 4थे, 5वें नंबर पे ट्रेंड करने लगता है. इसलिए बिकॉज द फैन फॉलोइंग इज वेरी वेरी लॉयल. और इसी के साथ 4थे नंबर पे जो ड्रामा ट्रेंड कर रहा, 4थे नहीं एक्चुअली 5वें मोहब्बत जो है वो मेरे ख्याल है 10, 9, 8, 7, 6 पे था. 5वें नंबर पे जो ड्रामा ट्रेंड कर रहा है वो है जी ड्रामा सीरियल गुलबहार. गुलबहार में हमें नज़र आ रही हैं सनम सईद और साथ ही साथ इमाद इरफानी, जिनको अभी हमने कफील में जिनकी जोड़ी को देखा था. एंड वी हेटेड इमाद इरफानी इन कफील, बट इसमें इनकी ज़रा रोमांटिक जोड़ी सी नज़र आ रही है. ड्रामा ये रिलीज़ हुआ है गालिबन अभी देखिए कोई 3-4 हफ्ते हो गए हैं इसे, और वेंसडेज़ और थर्सडेज़ को आता है 8 बजे शाम. और इसमें स्टोरी जो है वो थोड़ी सी टिपिकल है. कुछ क्रिटिक्स ने इसको वो भी किया है कि मतलब सनम सईद से क्या ये मतलब है, आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हो कि वो एक कपल है, दे आर मैडली इन लव एंड देन देर दे हैव फैमिली प्रॉब्लम्स और उनके बेबी नहीं हो रहा, और फिर वो किस तरह से कॉम्प्लेक्सिटीज उनके रिलेशनशिप उन कॉम्प्लेक्सिटीज का शिकार हो जाता है और फिर क्या होता है, यही है पूरी कहानी. बट पीपल आर लविंग इट. इट इज एट नंबर 5 विथ 8.2 TRPs. So that is till 5. अब वापस आएंगे तो मैं आपको बताऊंगी 4, 3, 2.

जी हाँ, हम भी एक दो तीन चार पे ही आ गए हैं चौथे नंबर पे, जिस गाने ने ट्रेंड किया, गाना नहीं ड्रामा फीवर देख रहे हैं और सुन रहे हैं आप। चौथे नंबर पे जिस ड्रामे ने ट्रेंड किया वो था जी मोहब्बत मुख्तसर। ये एक ऑन गोइंग रोमांटिक ड्रामा है जिसने ऑडियंस की अटेंशन को काफ़ी अरसे से दिनों से कैप्चर किया हुआ है, आप ये कह लीजिए। हम टीवी पे आता है संडे के संडे, एवरी संडे 8 बजे शाम। उसामा खान और मदीहा इमाम हमें इसमें लीड रोल्स में नजर आ रहे हैं और ड्रामा has seen a very strong start on the ratings chart since its debut, जो कि late September, यानी कि अभी पिछले महीने ही इसका debut हुआ है, और जो इसकी पहली दूसरी episodes थी उन्होंने massive 8.8 और 8.9 TRPs हासिल की। इस वक्त ये drama पिछले हफ्ते 8.8 TRPs के साथ चौथे नंबर पे मौजूद था। So this is मोहब्बत मुख्तसर। और अब तीसरे नंबर पे जो drama रहा वो काफी अरसे से इसने तीसरे नंबर पे या चौथे नंबर पे अपनी position बनाई हुई है, नाम है जी मैं तेरा। ड्रामा जो है ये मंडे टू फ्राइडे आता है, इट्स अ डेली सोप 9 बजे रात को ARY डिजिटल पे। और साथ ही साथ आपको बताएं अरीज अहमद, युसरा इरफान और गाना अली इसमें हमें नजर आ रहे हैं। इट इज़ अ स्टोरी ऑफ फैमिली डायनामिक्स। एक बेटा है घर में, उसकी बहनें हैं, उसने शादी नहीं की, उस बहनों को पहले सेटल किया, फिर उसकी ज़िंदगी में क्या टर्न्स एंड ट्विस्ट आते हैं और उसके अपने घर में क्या डायनामिक्स है, और उसकी बहनें जहाँ शादी होके गई हैं, खासतौर पर एक बहन तो बेचारी बहुत ही मुश्किल हालात में रहती है, तो उसके घर में क्या डायनामिक्स है, वो सारी चीजें इस ड्रामे में दिखाई जा रही हैं। एंड दैट इज व्हाई ऑडियंस इज लविंग दिस ड्रामा, बिकॉज ऑफ द रिलेटेबल फैमिली डायनामिक्स और साथ ही साथ इमोशनल हाइज एंड प्लॉट ट्विस्ट्स। और इसी के साथ दूसरे नंबर पे जो ड्रामा रहा दैट इज़ दर निजात। बहुत ज़्यादा ऑफ कोर्स पॉपुलर है, एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट इट। हर एपिसोड जो दर निजात की रिलीज होती है वो ढेर सारी मीम्स अपने साथ लेके आती है सोशल मीडिया पे, और उसके साथ बेइंतहा डिस्कशन टॉपिक्स शुरू हो जाते हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, किसी का कोई पॉइंट ऑफ व्यू है, किसी का कोई, टू ईच देयर ओन। दुरफिशा सलीम, शहरियार मुनव्वर और नमीर नवाज खान हमें नज़र आ रहे हैं ड्रामा सीरियल दर निजात में। और जी, उमेरा अहमद का लिखा हुआ ये ड्रामा इस वक्त तक तो इट इज हिटिंग द कॉर्ड। कुछ अजीब सी ही कहानी है, पता नहीं जामिल का क्या मसला है। अबू बकर और उसके वालदा जो हैं वो तो मुझे ऐसा लगता है जैसे इस दुनिया को ही बिलोंग नहीं करते, अजीब किस्म के वो फरिश्ता सिफत इंसान हैं, पता नहीं कहाँ से आते हैं ऐसे लोग। और दुरफिशा सलीम को तो बंदा इस वक्त वो जिस रोल जिस तरह का वो कर रही हैं, मतलब बंदा कहता है यार बस क्या हो गया यार, बस कर जाए। सो एनीवेज एवरीबडी, लेकिन सारी जो डिबेट है इसमें सबसे ज्यादा स्टैंड आउट कर रही हैं अबू बकर, जो कि शहरियार मुनव्वर का रोल कर रहे हैं, और वो कहीं से भी इंसानों के जुमरे में शुमार नहीं हो रहे, कुछ फरिश्ता ही उतरे हैं वो आसमान से, और उनकी माँ भी कुछ ऐसी ही हैं। अच्छा जी, और अब इस गाने से वापस आएंगे तो मैं आपको नंबर 1 ट्रेंडिंग ड्रामा बताऊंगी जिसकी आखिरी किस्त आ चुकी है मंडे को। सो द ड्रामा हैज ऑफिशियली एंडेड।

104.9 FM Fun Asia Radio में अब वक्त हुआ है जी ट्रॉफी ट्रैक्स का. कुछ अवार्ड विनिंग फिल्मों के अवार्ड विनिंग गाने आपके लिए प्ले कर रही हूँ जो मैंने और आपने बहुत एंजॉय किए और जब रिलीज हुए और अभी भी हमारे फेवरेट की लिस्ट में कहीं ना कहीं मौजूद है. तो अगला गाना प्ले करते हुए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपका जो ब्रांड है, जो आपका बिजनेस है, उसका ब्रांड डिजर्व्स अ लॉट. जी हाँ, इट नीड्स अटेंशन, इट नीड्स रीच एज वेल एज रिजल्ट्स, यानी कि इट डिजर्व्स टू बी सीन. दैट इज वाई फन एशिया नेटवर्क इज ब्रिंगिंग इट्स मीडिया एक्सपर्टीज स्ट्रेट टू योर सोशल मीडिया विद रिलेटिव मीडिया. सो स्क्रोल स्टॉपिंग रील्स से लेकर आई कैचिंग ग्राफिक्स टू कैप्शंस, कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल एज एम्पलीफिकेशन, रिलेटिव मीडिया हेल्प करेगा आपको टू टेक योर कंटेंट बियॉन्ड सोशल मीडिया एंड ऑन टू फन एशियाज रेडियो रेडियो नेटवर्क डिजिटल एज वेल एज कम्युनिटी प्लेटफॉर्म. सो जो भी सारे कम्युनिटी प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स फन एशिया के हैं वहां तक आपकी रीच होगी. इन अदर वर्ड्स, बेटर कॉन्टेंट, बेटर एंड बिगर विजिबिलिटी एंड अ लॉट होल lot more reach, जिसे आप कह सकते हैं. So, क्या आप रेडी हैं अपने ब्रांड को स्टैंड आउट कराने के लिए? तो कॉल कीजिए अभी टू रिलेटिव मीडिया 469-424-3188. इफ यू हैव एनी questions, दिस इज नंबर और यू कैन कॉल टू बुक योर कॉन्टेंट ऑडिट टूडे. दिस इज रिलेटिव मीडिया पावर्ड बाय फन एशिया नेटवर्क. योर कॉन्टेंट विद आवर रीच विल गिव यू बिगर इम्पैक्ट. सो डू मेक दैट कॉल.

जी हाँ, ये रांझना फिल्म से सुन रहे थे आप ये गाना। और जी, ट्रॉफी ट्रैक्स का सेगमेंट चल रहा है, तो मैं आपको बताऊं कि पिछले साल यानी कि 2025 में टॉप 10 ट्रेंडिंग मूवीज कौन सी रहीं, क्योंकि आपने मुझे बताना है कि इन टॉप 10 ट्रेंडिंग मूवीज में से आपको क्या लगता है कि किस मूवी को मिलना चाहिए बेस्ट फिल्म का अवार्ड। नो एक्टर, नो एक्ट्रेस, जस्ट बेस्ट फिल्म, ये आप मुझे बताएंगे। और इससे आपको क्या मिलेगा, फन पिज्जा किचन की तरफ से $10 का बिल। से पहले तो आप लॉग ऑन कीजिए funpizzakitchen.com पे टू चेक आउट मोर अबाउट देयर मेन्यू, स्पेशली जो उन्होंने एक नया मेन्यू इंट्रोड्यूस किया है, मैक्सिकन इंस्पायर्ड पिज्जाज। चाहे आप वेजिटेरियन लवर हैं कि पोयोलो को यानी कि चिकन लवर हैं या फिर सी फूड लवर हैं, यू विल हैव अ मैक्सिकन ट्विस्ट टू ऑल दीज थिंग्स अलॉन्ग विद देयर ट्रेडिशनल पिज्जाज जो वहां पे अवेलेबल हैं। सो funpizzakitchen.com पे लॉग ऑन करें और नाउ यू हैव अ चांस ऑफ विनिंग $10 ऑफ योर नेक्स्ट बिल फ्रॉम फ्रिस्को लोकेशन। अच्छा, तो 2025 की जो टॉप 10 फिल्में थी, और ये जो मैं आपको टॉप 10 बता रही हूँ ये वर्ल्ड वाइड ग्रोस के हिसाब से बता रही हूँ, यानी कि जो टोटल कमाई की इन फिल्मों ने। नंबर 1 पे रही मूवी धुरंधर, नंबर 2 पे शावा, और नंबर 3 पे सैयारा, नंबर 4 पे वॉर 2, नंबर 5 पे महावतार नरसिम्हा, और उसके बाद नंबर 6 पे सितारे जमीन पर, और फिर नंबर 7 पे रेड 2, हाउसफुल 5 रही नंबर 8 पे, सिकंदर रही नंबर 9 पे। मैं बहुत हैरान हूँ कि ये नंबर 9 पे कैसे आई, और पता नहीं क्या तरीका है इनका ये पैसे खर्च करने का। और नंबर 10 पे रही थाम्मा। ये थी टॉप 10 अकॉर्डिंग टू द मनी दैट दे कलेक्टेड वर्ल्ड वाइड। आप मुझे कॉल करके ये बताइए कि इन फिल्मों में से आपको क्या लगता है कौन सी थी आपकी मनपसंद फिल्म, यानी कि बेहतरीन फिल्म आपको कौन सी लगी जिसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड डिजर्व करती है। 972-235-5555 इज द नंबर टू द स्टूडियो।

जी हाँ, फन पिज्जा किचन का ये $10 ऑफ आया है था आपके लिए ऑन योर नेक्स्ट बिल एट फ्रिस्को लोकेशन. और आपसे सवाल बस पूछा था कि पिछले साल जो ये टॉप 10 मूवीज जो मैंने आपको इनकी अर्निंग्स के हिसाब से बताया नंबर 1 से लेकर नंबर 10 तक, उनमें से आपको क्या लगता है कि आपकी मनपसंद मूवी कौन सी है? और बहुत सारे जवाब आए और जो सबसे ज्यादा नंबर 1 पे जवाब रहा वो था धुरंधर, और नंबर 2 पे छावा भी 2-3 लोगों ने जवाब दिया, कुछ ने सैयारा बोला. तो जी थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर कॉल्स. और आपको बताऊं जी कि आपका जिस सीक्वेंस में आपकी कॉल आती है वो नंबर मैथ के फॉर्मूले में डलता है और आपकी लक आपकी विन का फैसला करती है. और आज की हमारी लकी विनर हैं अंजलि शर्मा. अंजलि कांग्रेचुलेशंस, जीत लिया है आपने ये $10 का ऑफ योर नेक्स्ट बिल एट वन पिज्जा किचन फ्रिस्को लोकेशन. 2 दिन का हमें टाइम दीजिए नाम और नंबर आपका वहां पहुंचाने के लिए, एंड देन यू विल हैव 7 डेज टू गो इन अवेल योर गिव अवे. और आपको मैं वैसे अमाउंट के हिसाब से बताती चलूं कि नंबर 1 पे जो धुरंधर मूवी रही उसका जो मुझे नजर आ रहा है वर्ल्ड वाइड ग्रोस अमाउंट वो है 1300 करोड़ 1350 करोड़, जबकि नंबर 2 पे छावा फिल्म रही 797 करोड़ के साथ और नंबर 3 पे रही सैयारा विथ 579 करोड़ के साथ. अब वही बात है कि इसमें नंबर्स जो हैं वो कैसे बिल्ड होते हैं और क्या होता है वो तो अंदर की बात हमें नहीं मालूम, क्योंकि मैं सिकंदर मूवी यहाँ पे लिस्ट में देख के मैं काफ़ी ज़्यादा डाउटफुल हो गई हूँ, बिकॉज आई थॉट इट वॉज वेरी डिफिकल्ट वॉच. बट धुरंधर ने चूके बाजी मारी है तो दिस वन इज फ्रॉम धुरंधर.

0: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit MyTimeEquity.com or call 972-330-2771.
1: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
2: Don ko pakadna mushkil hi nahi, namumkin.
3: Lekin aapke doctor ka appointment milna, usse bhi mushkil hai. Ek hafta, 10 din, agle Tuesday.
4: Tarikh par tarikh.
5: Passion Health Primary Care gives you doc appointments on the same day visit. Aaj bukhar, aaj doctor. Aaj infection, aaj doctor. Aaj annual checkup, aaj doctor. Plus 30 minutes of dedicated appointment time. Passion Health Primary Care in Irving, Plano, Frisco, McKinney, Aubrey.
3: Visit passionhealthphysicians.com or call 214-666-6259.
6: Hey, तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
7: लिया।
6: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
7: नहीं आया।
6: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे? इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनाडा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस. Whether it's home, auto, health or business, every policy is customized around you. Hotels, motels, gas stations and small businesses, they help protect what you worked hard for. No confusion, no unnecessary extras. Call Humera Jamani at Sonata Inc. 972-863-7772. That's 972-863-7772.
8: Visit www.sanadainc.com today.
9: ये लास्ट दिवाली पहना था ये नेहा की शादी में. इस पे तो ऑलरेडी इंस्टाग्राम पर डीपी है. हे भगवान, मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है.
10: जब वार्डरोब में हो फैशन का अकाल तो सीधा इंडियन अटायर जाओ बालिके.
9: प्रभु, डिस्काउंट भी मिलेगा?
10: ऑफ कोर्स, फेस्टिव कलेक्शन पर अप टू 25% ऑफ. Tathastu.
11: Discover stunning lehengas, elegant saris, bridal jewelry and festive styles for men and kids. All at Indian Attire on 2995 Preston Road, Frisco. Indian Attire, Frisco. Your divine destination for festive fashion.
12: फैमिली को चाहिए नॉर्थ इंडियन, फ्रेंड्स को साउथ इंडियन, अब जाए तो जाए कहाँ?
11: सिंपल, बसेरा ग्रैंड, वन डेस्टिनेशन, डबल द फ्लेवर.
13: मतलब क्रिस्पी गोल्डन डोसा?
11: यस, रिच नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स, फ्लेवरफुल लोडेड बिरयानीज और एक डिलिशियस बुफे जहाँ चॉइसेस ही चॉइसेस हैं.
13: वाओ, ग्रेट फूड, फुल वैरायटी एंड एवरीवन्स हैप्पी.
12: फैमिली डिनर हो या फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन, मेक एवरी मील ग्रैंड एट बसेरा ग्रैंड. बसेरा ग्रैंड, कम हंग्री, लीव हैप्पी टुगेदर.
14: Hey, are you going to Ravi's Trade Market this year?
11: Of course. Where else can you check out new products, meet vendors, grab exclusive deals, giveaways and save big for your store?
14: When is it?
11: Thursday, October 29th, Friday, October 30th and Saturday, October 31st from 9 a.m. to 5 p.m. at Ravi's Import Warehouse on Harry Hines Boulevard in Dallas.
14: Perfect. I'll register ahead on shopravis.com. Ravi's 21st Annual Trade Market. Bigger deals, bigger opportunities, bigger business.
15: Customers must bring their valid tax number and tobacco license.
16: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया.
17: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
16: नहीं.
17: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
16: नहीं.
17: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
16: वो भी नहीं.
17: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त.
11: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए. बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रॉन्ग हो. फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG Fintax, your growth, our strategy. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
18: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
19: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
20: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
21: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
22: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
21: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
4: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Omar Khawaja, the official injury partner of FunAsia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Omar Khawaja, your legal lifeline.
7: जुड़ जाओ अपनी धरती से देसियों का सच्चा रेडियो चैनल FunAsia 104.9 FM।

और अगर आप ड्रीम कर रहे हैं जी ऑफ ओनिंग अ होम इन इंडिया या फिर यू लुकिंग फॉर योर नेक्स्ट स्मार्ट प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट, तो मैं आपको बताती हूँ आपको कहाँ जाना है. गृह प्रवेश इंडिया प्रॉपर्टी एक्सपो इज कमिंग टू डैलस, प्रेजेंटेड बाय माय स्क्वायर फीट. द बिगेस्ट इंडियन प्रॉपर्टी एक्सपो इज कमिंग टू फ्रिस्को. This is your chance. आप मिल सकते हैं leading developers से जो कि आए हैं बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, पुणे और दिल्ली, और explore कर सकते हैं आप 200 plus property projects all under one roof. तो चाहे आप खुद के लिए घर ढूंढ रहे हैं या you're looking for a second home or an investment opportunity in India, this is a place to explore all your options. They are coming here October 10th and 11th from 10 a.m. to 8 p.m. at Hyatt Regency Frisco. और best part ये है जी कि parking की कोई tension नहीं है, absolutely free है parking. तो park जाइए, अपने event, इस event को attend कीजिए, अपने calendars को mark कीजिए अपनी family, friends, अपने partners के साथ, और देखिए कि किस तरह आप गृह प्रवेश के इस India Property Expo से अपनी पसंद की चीज को अवेल कर सकते हैं. दिस इज योर परफेक्ट प्रॉपर्टी इन इंडिया एंड दैट कुड बी वेटिंग फॉर यू. गृह प्रवेश को जरूर विजिट कीजिए. और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं जी कि वेदर की अपडेट क्या, बिकॉज दिस टाइम वी आर ऑलमोस्ट 9 मिनट्स अवे फ्रॉम द एंड ऑफ द शो. 87 डिग्रीज है इस वक्त मिकिनी में, फील्स लाइक 84 राइट नाउ. दिन रहा सनी, हाईज इन द मिड 80s, जबकि शाम रहेगी क्लियर विद लोज इन द लोअर 60s. पॉलन काउंट इज 8.4 विच इज क्वाइट हाई. रैगवीड एंड एल्म इज व्हाट इज बॉदरिंग बहुत सारे लोग मेरे इर्द गिर्द पोलन से बहुत परेशान है, तो अगर आप हैं तो प्लीज अपनी रेमेडीज ले लीजिए, जो भी दवाई. यूवी इंडेक्स इज 6 विच इज मीडियम. सनराइज आज का हुआ 7:24, 7:24 AM, जबकि आज का सनसेट होगा 7:03 शाम, 7:03 PM.

मत पूछना। जी हाँ, और इसी के साथ एक और आपको बड़ी जबरदस्त इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने लगी हूँ, एंड दिस इज इन दुबई। सो मतलब व्हाट इफ योर नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट कुड टेक यू ऑल द वे टू दुबई। तो अगर आप ये सोच रहे हैं, यू हैव बीन थिंकिंग अबाउट इन्वेस्टिंग इन दुबई रियल एस्टेट, देन अब ये अपॉर्चुनिटी आपको बताने वाली हूँ। सक्सेस रियल एस्टेट एंड डैनूबी प्रॉपर्टीज प्रेजेंट द ग्रैंड दुबई प्रॉपर्टी शो हैपनिंग अक्टूबर 17th एंड 18th, 10 AM से 9 PM तक एट लक्स होटल 117 साउथ वॉटसन रोड इन आर्लिंगटन। तो आपको यहाँ पे मौका मिलेगा टू मीट द डायरेक्टर्स, द डेवलपर्स डायरेक्टली, गेट योर क्वेश्चंस आंसर्ड और एक्सप्लोर कीजिए लग्जरी दुबई प्रॉपर्टीज विद अट्रैक्टिव पेमेंट प्लान स्टार्टिंग एट जस्ट $1,300 अ मंथ। तो जी बिल्कुल मिस मत कीजिए, और जो सबसे एक्साइटिंग पार्ट है इसका वो मैं अब आपको बताने वाली हूँ। बुक एट द शो, बुक अ प्रॉपर्टी एट द शो एंड यू मे क्वालिफाई फॉर राउंड ट्रिप फ्लाइट्स टू दुबई प्लस लग्जरी होटल स्टे फॉर टू। तो ये है इसका कैच। इस एक्सपो पे जाइए, बुक कीजिए अपनी प्रॉपर्टी और क्वालिफाई कीजिए फॉर राउंड ट्रिप फ्लाइट्स टू दुबई प्लस लग्जरी होटल फॉर टू। सो मार्क योर कैलेंडर्स, हैपनिंग ऑन अक्टूबर 17th एंड 18th, 10 AM टू 9 PM एट लक्स होटल इन आर्लिंगटन। और अगर आपका कोई सवाल है, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन डिटेल्स और एनीथिंग एल्स, गिव हबीब मिथा अ कॉल, दैट नंबर इज 954-790-2620, 954-790-2620 हबीब मिथा साहब का नंबर है, जिसपे आप कॉल कर सकते हैं टू आस्क ऑल योर क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस प्रॉपर्टी शो दैट इज ब्रॉट टू यू बाय सक्सेस रियल एस्टेट एंड डैनूबे प्रॉपर्टीज। सो ग्रैंड दुबई प्रॉपर्टी शो, एक्सप्लोर कीजिए दुबई, डिस्कवर कीजिए वो पॉसिबिलिटीज जो कि आपकी नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट का हिस्सा हो सकती हैं।

0: 5:11 in the studio clock. That means it is time for the evening drive time show. Jiska naam hai The Bindaas Show, brought to you by your very own Banda Bindaas, Mar Bindaas. And I'm going to be with you till 7 o'clock. This is a Wednesday evening. Ho gayi ji, afternoon se ab to. October ki 7 tarikh hai, 5:11 in the studio clock. And is sham ko hum saath milke manayenge ji, as always. And is sham mein kuch khas hai. That is the birthday of my city, Chandigarh. उसके बारे में बात करेंगे एज वी डू आवर शो एंड वी प्रोग्रेस इन इट. फॉर नाउ यू शुड नो के बर्थडेज, एनिवर्सरीज या कुछ भी अच्छा जो आपने आज सेलिब्रेट किया हो, वी वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ दैट सेलिब्रेशन. गिव शाउट आउट्स टू द बर्थडे पीपल दैट आर सेलिब्रेटिंग दैट टुडे. उसके लिए स्टूडियो की लाइन इज 972-235-5555. दैट इज द नंबर टू द शो. स्टार्ट दिस लवली आफ्टरनून. इवनिंग हो गई है मार्विन, आफ्टरनून को पीछे छोड़ दे, क्या करें, काम का बोझ ही इतना है बड़े भैया. अभी भी ऐसा लगता है कि आफ्टरनून ही है. ये
1: रात की चादर में
0: नहीं, रात की चादर में नहीं, आफ्टरनून में जाना है हमने भैया, आफ्टरनून में नहीं, इवनिंग में जाना है. चलो विद दिस फर्स्ट सॉन्ग ऑफ द इवनिंग, तेरा पहरा. अगर आपने गाना सुना है अरिजीत सिंह, दिस इज फ्रॉम द ब्रांड न्यू मूवी सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना.
1: जो कहना सका तुझसे

0: चंडीगढ़ एक ऐसा वाहिद शहर है जिसमें आपको दरख्तों के जो या पेड़ों के जो पत्ते होते हैं वो आपको कभी भी सूखे नहीं मिलेंगे. सो देयर इज नो पतझड़ या फॉल सीजन जो है वो सीजन होता है बट पेड़ों पे से पत्ते नहीं जाते. बिकॉज मनोहर लाल साहब जिन्होंने इसकी फाउंडिंग की थी, ही मेड श्योर ही गॉट प्लांट्स दैट वुड बी ग्रीन 12 मंथ्स ऑफ द ईयर.
1: हीरे मोती मैं ना चाहूं.
2: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर. तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर. चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट. लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग.
3: Want to explore properties in India? You don't need to fly to India. The Grow Pravesh India Property Expo is coming to Frisco. Meet top developers from Bengaluru, Hyderabad, Mumbai, Pune, Chennai and Delhi NCR. Explore 200 plus projects for your dream home or next investment. October 10th and 11th, Hath Regency Frisco, 10 a.m. to 8 p.m. Free entry, free parking. Grow Pravesh India Property Expo by My Square Feet.
4: Buying a home comes with a lot of firsts. Your first walkthrough, your first offer, your first, they accepted. But there's one first you definitely don't want. Your first title problem. Before the keys are yours, make sure everything behind them is clear. With First United Texas Title, get the confidence of a smooth title and closing process. So the only surprise at your new home is what the neighbors bring over. First United Texas Title. Close with confidence. Own with peace of mind. Call 972-897-1530 or visit www.firstunitedtexastitle.com.
5: It's true. Hum apni sadbuddhi se bahut si problems solve kar sakte hain. But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwarji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwarji, 945-527-0897. और विजिट astrologerishwar.com.
6: यार बॉस ने फिर से डांट दिया, ट्रैफिक अलग और ऊपर से स्ट्रेस.
7: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी.
6: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है.
7: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी.
6: ये क्या होता?
7: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन.
8: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन. सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कुलचा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस.
9: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन.
10: अरे यार, घर मिल गया.
11: घर तो देख रहा हूँ, लेकिन इट्स हार्ड टू फाइंड अ रियल्टर हु ऑफर्स ग्रेट सर्विस एंड आल्सो कैशबैक एट क्लोजिंग.
9: इसलिए कॉल करो अजय प्रभु ऑफ बीम रियल एस्टेट. अजय इज एन एक्सपीरियंस्ड रियल्टर. वो सिर्फ घर नहीं दिखाते, हर प्रॉपर्टी का ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं, प्रोज एंड कॉन्स समझाते हैं, बेस्ट प्राइस नेगोशिएट करते हैं, बिल्डर इंसेंटिव दिलवाते हैं और क्लोजिंग पर कैशबैक भी.
11: सीरियसली, अच्छे सर्विस भी और कैशबैक भी?
9: बिल्कुल. विजिट ajayprabhu.com एंड सी व्हाई सो मेनी पीपल आर रेविंग about him. Discover Tassels by Renu in Frisco. Designer ethnic wear at great prices.
12: From elegant saris, lehengas to Indo-Western fusion sets and men's ethnic wear. Find festive and wedding styles.
9: For exclusive deals and collections, join Renu's weekly Facebook Live or follow them on Insta.
12: Visit tasselsbyrenu.com or call 563-508-5673. That's 563-508-5673. Tassels by Renu. Dress beautifully, celebrate stylishly.
13: एक्सीडेंट के बाद इंश्योरेंस कंपनी से डील करना बहुत मुश्किल हो गया था. ना वो हेल्प कर रहे थे, ना मुझे समझ आ रहा था कि क्या करूं. आई फेल्ट कम्प्लीटली स्टक. फिर मैंने ओमर ख्वाजा टीम को कॉल किया और सब कुछ चेंज हो गया. उन्होंने सारे कॉल्स हैंडल किए, मेरी तरफ से बात की और इंश्योर किया कि मुझे फेयर ट्रीटमेंट मिले. हर स्टेप पे मुझे अपडेट किया, सब कुछ क्लियरली समझाया और मेरी टेंशन कम कर दी. उन्होंने मेरी केस के लिए सच में फाइट की और आज मैं दिल से थैंकफुल हूँ.
9: कॉल नाउ टू 833 गेट ओमर. द लॉ ऑफिसेज ऑफ ओमर ख्वाजा. आपका हक, उनके जिम्मेदारी.
14: देसी फ्लेवर्स भी और टेक्सास के फेवरेट्स भी, अब सब कुछ मिलेगा एक ही जगह HEB में। सोना मसूरी राइस, नानक पनीर, पाले जी बिस्किट्स और बहुत कुछ, वही ऑथेंटिक स्वाद जिसके साथ आप बड़े हुए हैं। और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो आपको यहां पसंद है। अब एक ही शॉपिंग ट्रिप में ज्यादा काम निपटाइए और इस समर जरूर देखिए HEB के नए DFW स्टोर्स मिड सिटीज, अर्विंग और मर्फी में खुल रहे हैं। तो आज ही अपने नजदीकी HEB पर जाएं और खरीदिए अपने ट्रेडिशनल्स और टेक्सन फेवरेट्स। HEB, here everything is better.
15: हर मोहब्बत की आवाज, द वन एंड ओनली लिविंग लेजेंड राहत फतेह अली खान।
16: राहत फतेह अली खान
17: एक्सपीरियंस वंस अपॉन अ टाइम वर्ल्ड टूर 2026। राहत फतेह अली खान और उनके बेटे शहजमान अली खान एक ही स्टेज पर।
15: ब्रॉट टू यू बाय रेहान सिद्दीकी, डॉक्टर यास्मीन कुरैशी एंड ट्रू पेमेंट सॉल्यूशंस। फ्राइडे अक्टूबर 16, 8:30 PM, कमेरिका सेंटर, फ्रिस्को।
17: ग्रैंड स्पॉन्सर कराही पॉइंट प्लेनो के एक्सक्लूसिव कंसेशन के साथ।
15: टिकट्स ऑन टिकट मास्टर एंड सुलेखा.com।

यार मैं ना कई बार टाइपो से बहुत दुखी आ जाता हूँ। मतलब ठीक है यार, तेरे को आता है सजेशन देना, पर हम लोग देसी हैं, हमारे सजेशन नहीं आपको समझ आते, हम बोलते क्या हैं। अब जैसे एक सुबह सुबह पति बेचारा शराफत में अपनी बीवी को मैसेज लिख रहा था ऑफिस जाने के बाद, और उसने टाइप किया, कैसा है सिरदर्द, ऑटो टाइप ने टाइप किया, कैसी हो सिरदर्द। बंदा ऑफिस से छूट चुका है, घर नहीं जा रहा, उसको समझ नहीं आ रहा जाऊँ काम है।

0: वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ये टाइपो को कब समझाएंगे हम यार? मतलब टाइपो के साथ अगर कभी ऐसा हो ना, इसकी बेचारे की बीवी नहीं है वैसे, सोचो है? ये इलेक्ट्रॉनिक्स में आ गए हैं, AI AI, मतलब AI की भी कोई AIO ही होगी? नहीं, AI आयो ऐसा नहीं है।
1: बंदा ये बिंदास है, रस पीने की प्यास है, बंदा ये बिंदास है।
0: चलो इस बारे में हम क्यों सोचे यार, ये AI को सोचना चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए किसी के साथ। बेचारा आदमी शरीफ सा मेरे जैसा फंस जाता है। बहुत सारे आदमियों के किस्से हैं मेरे पास, बताऊंगा एज वी प्रोग्रेस इन आवर शो। 5:27 हो चुके हैं, इट्स 5:27 एंड आज कुछ खास बर्थडेज भी हम सेलिब्रेट करेंगे। वी विल प्रोग्रेस विद सम ऑफ दोज जैसे जैसे कि हम बताएंगे आपको टाइम के साथ साथ। फॉर नाउ दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय नॉन अदर देन SFL वर्ल्ड वाइड। दे आर द गाइज दैट ब्रिंग यू शिपिंग सॉल्यूशंस। चाहे आप यहाँ से दुनिया के किसी भी कोने में, वो जो मबांगवा अफ्रीका में आपका दोस्त बैठा ना, आप उसको भी मूंगफलियाँ भेज सकते हो। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, सिर्फ आपको वेबसाइट पर जाना है जिसका नाम है SFLWorldwide.com एंड दे विल हैंडल द रेस्ट। चाहे आप यहाँ से घर मूव कर रहे हैं, यू आर मूविंग टू न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क से कोई यहाँ मूव कर रहा है, योर फैमिली मेम्बर्स टेल देम अबाउट SFL। SFL स्टैंड्स फॉर शिप फॉर लेस वर्ल्ड वाइड। सिंपल सा नाम है, सिंपल ही कम है। एंड चाहे एक छोटा सा बुक हो, एक गिफ्ट हो दैट यू वांट टू सेंड टू योर फ्रेंड्स और फैमिली, स्पेशली इन द फेस्टिव सीजन, एनीथिंग दैट यू वांट कैन बी शिप्ड। और सबसे अच्छी बात, दे कैन डू डोर स्टेप पिकअप एंड डोर स्टॉप ड्रॉप। मतलब आपके घर से आपकी गुड्स उठाएंगे, आपके डेस्टिनेशन तक, घर तक पहुंचाएंगे। टोटली ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग फॉर यू। सो मेक श्योर टू चेक दम आउट, SFLWorldwide.com।

0: Some tracks are definitely lovely from Himesh Reshammiya, and this is one of them. At least to me, I think the composition is what stands out. And remember, if you want your home to stand out, then one lady can help you out right here from the FunAsia team. Of course, she does a show here. Her name is Navneeta Khemka. Now a realtor with Keller Williams. If you're looking to buy or sell your next home, get with her. Bahut sari knowledge, creative marketing and personalized guidance ke saath, she'll make sure she takes care of you. 347-449-4242 is the phone number. That's 347-449-4242.
1: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
2: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense. Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
3: Huzoor, aapko chunna hoga. हम या ये बिरयानी
4: बेगम मोहब्बत अपनी जगह लेकिन बिरिस्ता की हैदराबादी बिरयानी अपनी जगह
3: आखिर आखिर क्या है इस बिरयानी में
4: दम में नरमी मसालों में जादू और हर निवाले में नवाबी स्वाद
5: प्रेजेंटिंग बिरिस्ता हाउस बाय प्रिज्म बार एंड ग्रिल ऑथेंटिक हैदराबादी फ्लेवर्स एंड अ ट्रूली नवाबी एक्सपीरियंस नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स डिलीशियस डेजर्ट्स एंड मेनी मोर टू एक्सप्लोर डेंटन्स फेमस बिरिस्ता हाउस इज नाउ इन फ्रिस्को 6377 कस्टर रोड फ्रिस्को टेक्सास
2: हैप्पी आवर्स मंडे थ्रू फ्राइडे फ्रॉम 3 PM टू 7 PM
5: बिरिस्ता हाउस रिचनेस ऑफ बिरयानी ब्लिस
3: Floors clean.
6: Check.
3: Windows clean.
6: Check.
3: Kitchen clean.
6: Check.
3: Air ducts clean.
6: Wait, air ducts bhi clean karna hota hai?
7: Bilkul. Jo dikhta hai, wo to hum clean kar lete hain. Lekin jo nahi dikhta, uska kya? That's where Duct Time comes in. Professional duct cleaning with negative pressure technology. No rotor brush. Plus dryer vent or chimney cleaning. Ghar ho, restaurants, hotels, offices, ya phir any business. Duct Time cleans beyond what you can see. Call Jeetu Patel at 972-877-2500.
8: It's the time to clock out. It's the time to catch up.
5: And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame. जहाँ तंदूर की स्मोकी खुशबू सिजलिंग फ्लेवर्स और चटपटे एपेटाइजर्स मेक एन ऑर्डिनरी वीकडे फील लाइक अ डिलीशियस सेलिब्रेशन एवरी मंडे थ्रू फ्राइडे फ्रॉम 5 to 8 PM ऑर्डर एनी टू एंट्रीज एंड गेट वन एपेटाइजर एब्सोल्युटली फ्री ब्रिंग योर फैमिली फ्रेंड्स एंड योर एपेटाइट विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
9: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है
2: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग
10: इरविंग वालों ध्यान से सुनो ये सिर्फ म्यूजिक नहीं हिंट है Because the best chicken in Dallas is finally in Irving. Crispy, juicy, bold. The chicken Dallas has been craving after Plano and Richardson. Sal's Hot Chicken is now in Irving, bringing the crunch, the flavor, and the heat. You heard chicken, we heard Sal's. Grand opening on 10th October. What would happen to your business if a key owner, partner, or top employee passed away unexpectedly? Would revenue, credit, client relationships, or daily operations be affected? Key Person Life Insurance can help provide funds to support the business during a difficult transition. Protect the people who help keep your business running. Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Product subject to carrier approval, policy terms and

0: कुछ नहीं करना है, चुपचाप जो हो गया अब हो गया। भाभी ने ग्रोसरी मंगाई है, वो फटाफट जाके लेके आओ। रश है मुझे नहीं पता, चाहे तू बिजी है मुझे नहीं पता, तेरा क्रिकेट प्रैक्टिस है, गोल्फ है, नहीं बेटा ग्रोसरी लेके आओ। ग्रैंड प्री में रहते हो, आर्लिंगटन में रहते हो, मैंसफील्ड में रहते हो, ग्रोसरी जाने की जरूरत नहीं है भैया, डिलीवरी हो सकती है आपके घर पे। हिमालयन बाजार आ चुका है जी, राइट एट द इंटरसेक्शन ऑफ हाईवे 20 एंड हाईवे 360। मेक श्योर कि उनको चेकआउट कीजिए, गूगल में टाइप कीजिए, स्पेशली अगर आप उन जगहों पे रहते हैं जो मैंने बोला, जैसे कि मैंसफील्ड, आर्लिंगटन एंड ग्रैंड प्रेरी। स्पेशली गूगल इट, देखिए आपसे कितनी दूर है, एंड इफ़ यू आर इन अ 5 माइल रेडियस, डिलीवरी एब्सोल्युटली फ्री, $50 खर्चिए, आपकी भी टेंशन खत्म। भाभी को बोलो जान तेरे लिए जान हाजिर है यार, ग्रोसरी आ रही है, मैं क्रिकेट खेल के आया, बस हो गया। सोल्यूशन देने वाले लोग होने चाहिए लाइफ में, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। याद रखिएगा नाम हिमालयन बाजार, दे हैव एवरीथिंग, चाहे आप प्रोड्यूस ढूंढ रहे हैं, ग्रोसरी का आइल्स ढूंढ रहे हैं, यू लुकिंग फॉर फ्रोजन फूड, हलाल मीट एंड अ कैफे, ऑथेंटिक मोमो शोमो खाने हैं तो पहुंच जाइए जी, हिमालयन बाजार इन ग्रैंड प्रेरी। और ये बंदा कह रहा था दिल चोरी सारा हो गया, एक कॉन्टेस्ट की तरफ चल रहा हूँ, चले तो गिव अवे में क्या है आज? गिव अवे जनाब आज खाने में क्या है मरविन? खाने में मिलेगा जी आपको जो आप चाहे, मटन बिरयानी, नॉर्थ बिरयानी, साउथ इंडियन, ये वो सब कुछ मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? ये मिलता है आपको बिरिस्ता हाउस पे। बिरिस्ता हाउस लोकेटेड है जी 121 और कस्टर पे, इन द हार्ट ऑफ फ्रिस्को। अब आपके पास कोई बहाना नहीं है कि मेरे को अच्छी बिरयानी नहीं मिलती है, बिरिस्ता पे है, मैंने खाई है, जाके चेक कीजिएगा। $20 मिल सकते हैं आपको, बट दिस कंडीशन यही रहती है हमारी कि पहला आपने ये गिव अवे पहले नहीं जीता हो, नंबर टू आप फ्रिस्को जाके इस $20 को इंजॉय कर सकें। और एक और कंडीशन है जो उन्होंने लगाई है, ठीक है जी, वो कहते हैं कि डाइन इन करना पड़ेगा भैया, अब हमारे घर आए हो तो बैठो तो सही, ऐसे कैसे बाहर से चले जाओगे। तो अब आपने मेरे सवाल का देना है जवाब। देखो हुआ ऐसे, ये पुरानी बात है, मेरी ना गर्लफ्रेंड झूठी निकली दोस्तों, मैंने फ़ोन करके पूछा उससे तो बोली अपनी सहेली के साथ हूँ, पर वो फिर भी झूठी निकली। अब आपने मुझे बताना है कि वो झूठी क्यों निकली, मुझे ऐसा क्यों लगा कि वो झूठ बोल रही है, क्या हुआ था? दोबारा बताता हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड झूठी निकली क्योंकि मैंने उसको फ़ोन करके पूछा तुम कहाँ हो, तो बोली मैं अपनी सहेली के साथ हूँ। ओके, आगे का पार्ट आपने मुझे बताना है कि मुझे ऐसा क्यों लगा कि वो झूठी है, हैं जी। जो देगा सही जवाब या बहुत क्लोज जवाब, उस जवाब के जो मेरे पास है आपको मिलेगा $20 ऑफ, $20 ऑफ नहीं, $20 का पूरा गिफ्ट कार्ड मिलेगा जी, सर्टिफिकेट मिलेगा फ्रॉम बिरिस्ता हाउस लोकेटेड ऑन कस्टर रोड इन फ्रिस्को। वंस अगेन, मैंने अपनी दोस्त को फोन किया, गर्लफ्रेंड को, उससे पूछा तुम कहाँ हो, तो बोली मैं अपनी सहेली के साथ हूँ। बाई गॉड उसने मेरा दिल तोड़ दिया, झूठ बोल रही थी वो, ऐसा मुझे क्यों लगा? कैरेक्टर उसका बहुत अच्छा है, ठीक है, तो अब सोच के जवाब दीजिए, व्हाई डिड दैट हैपन। गुड इवनिंग फाइनेंशियल रेडियो, आपका नाम?
1: गुड इवनिंग, सुब्बू बोल रहा हूँ मैं।
0: सुब्बू जी कैसे हो?
1: बढ़िया जी, वो झूठ इसलिए बोल रही थी कि उसकी सहेली तो आपके साथ थी।
0: ओ यार, सारों सबके सामने पोल खोल देते हो आप लोग यार, सुब्बू भाई
1: इसमें क्या सहेली है यार?
0: यार सुब्बू यार, ये क्या बात हो यार। चलो बड़े भैया बहुत बहुत शुक्रिया, इट इज एब्सोल्युटली राइट कि हाँ उसकी सहेली तो मेरे साथ थी, तो वो मुझे कैसे कह सकती थी कि मैं उसकी से वो अपनी सहेली के साथ है। दैट इज सो रॉन्ग ऑफ हर मैन, दिल उसने मेरा तोड़ दिया। सुबह भाई आपका, आपकी शाम मैंने बना दी है, $20 का गिफ्ट कार्ड आपका हुआ फ्रॉम बिरिस्ता हाउस राइट हियर इन फ्रिस्को। होल्ड द लाइन फॉर मी प्लीज। एब्सोल्युटली ऐसा होता है यार, उसकी सहेली मेरे साथ थी, वो मुझे कह रही है मैं अपनी सहेली के साथ हूँ, हट ड्यूटी, बाकी सब उसके बाद धीरे धीरे ठीक हो ही जाता है यार, फर्स्ट क्लास हो जाता है।

फर्स्ट क्लास है, बेस्ट फर्स्ट क्लास है। हाँ, ये बात जो है ना, एक्चुअली मैं भी फर्स्ट क्लास इसलिए हूँ कि मेरी बीवी को नहीं पता कि मेरे साथ ये हिस्ट्री में हो चुका है, और आप लोगों को पता है कि वो सहेली मेरे साथ थी, उसको नहीं पता कि मेरे साथ कौन था कौन नहीं था। ठीक है, तो बताना भी ना कहीं मैं मिल जाऊँ ना। पुरानी बातें होती है, उनको थोड़ी निकालते होते हैं अच्छे दोस्त। हाँ, मुझे पता है आप लोग सब मेरे अच्छे दोस्त दोस्तों और मतलब फ्रेंड थी, गर्लफ्रेंड। तो आप अब जैसे मेरे ऑफिस में काम करती हैं लेडी, मैं उनको फ्रेंडली बोलता हूँ तो वो भी मेरी गर्लफ्रेंड हो सकती है। वही वाला एक्सप्लेनेशन है मेरा, मेरी फ्रेंड ही थी। ठीक है ना, ऐसे एक्सप्लेनेशन जो आप भी देते हो मैं भी वही देता हूँ। मैं कौन सा अलग किसी और पेड़ से टपका हूँ भैया, मैं भी उसी प्रोसेस को फॉलो करता हूँ जिसमें आप सब लोग आते हैं। एनीवे, आई एम गोना टेक यू टू वन मोर ट्रैक, इसके बाद छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। एंड उससे पहले ये बता दूं कि आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है तो पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर को जरूर याद रखिए। दे हैव मल्टीपल लोकेशंस अक्रॉस DFW, उनके बारे में बात करूंगा ब्रेक से आने के बाद। फिलहाल ये गाना चकिए जी और इन्जॉय कीजिए। आई विल बी राइट बैक।

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through homes, apartment complexes, agricultural land, or up ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
6: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: अरे, डेलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है. तारा कमर्शियल एनर्जी 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स. कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
8: Want to explore properties in India? You don't need to fly to India. The Gro Pravesh India Property Expo is coming to Frisco. Meet top developers from Bengaluru, Hyderabad, Mumbai, Pune, Chennai and Delhi NCR. Explore 200 plus projects for your dream home or next investment. October 10th and 11th, Hath Regency Frisco, 10 a.m. to 8 p.m. Free entry, free parking. Gro Pravesh India Property Expo by My Square Feet.
9: डैड, प्रॉपर्टी पेपर्स कहाँ हैं?
10: लैपटॉप में.
9: इन्वेस्टमेंट?
10: गूगल ड्राइव.
9: इंश्योरेंस? पासवर्ड्स?
10: बेटा डोंट वरी, मुझे सब पता है.
9: डैड, वही तो प्रॉब्लम है, सिर्फ आपको पता है.
11: Your family shouldn't have to search for answers when you're not there to give them.
12: Hi, this is Deepthi Verma with NRI Wealth. With proper estate planning, protect what you have built and give your family clarity and control.
11: Call 669-243-5799. That's 669-243-5799. Or visit nriwealth.com for a free 15-minute consultation. NRI Wealth. Don't leave a mess. Leave a plan.
13: Yaar, festival season aa raha hai. Aur meri wife ne shopping list bhi de di hai.
14: Kitni lambi list hai?
13: Bas, 2 pages. Indian dresses, mithai, namkeen. Aur haan, ek puja mandir bhi.
14: Arre, to sab kuch India se hi mangwa lo. SFL Worldwide hai na. India mein aapke doorstep se saman pick up karke, yahan seedha aapke ghar deliver karte hain. Puja mandir ho, jhula ho, ya furniture. Saman chota ho ya bada, ocean freight ke through sab ship ho sakta hai.
15: This festive season, India ko apne aur kareeb laein with SFL Worldwide. Shipping and moving services from India to the USA and worldwide. Visit SFLWorldwide.com.
16: Agar main kahun tumhara cholesterol 300 hai aur blood pressure 160, to kya kahoge?
15: Kya?
17: Wake up!
15: ड्रीम में रियलिटी चेक अक्सर डर बीमारी का नहीं उसके पकड़े जाने का होता है. लेकिन व्हाट इफ में मत अटके, एनुअल चेकअप करवाइए.
11: विजिट एलन इंटरनल मेडिसिन एंड ट्रस्ट डॉक्टर वनीता एंड हर टीम फॉर एनुअल फिजिकल्स, प्रिवेंटिव स्क्रीनिंग्स एंड वेट मैनेजमेंट. न्यू पेशेंट्स विद सेम डे अपॉइंटमेंट्स वेलकम. कॉल 4696499995 और विजिट aimallen.com.
18: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया.
19: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
18: नहीं.
19: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
18: नहीं.
19: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
18: वो भी नहीं.
19: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त.
11: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए. बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो. फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com. कॉल 972-618-8555. AG FinTax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी.
17: AG Fintechs led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
20: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
21: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
22: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
23: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
24: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
23: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
25: आई एम राहत फतेह अली खान एंड यू आर लिसनिंग रेडियो फन एशिया।

0: जिंदगी में उठना है ना, तो सबसे बड़ा एग्जांपल दिया जाता है, द बेस्ट फ्लाइट वाला जो बर्ड है ना, ईगल होता है, ईगल। और ईगल को हिंदी में बोलते हैं बाज। अरे आप कहते रहते हो लोगों को, मैं जिंदगी में उठना चाहता हूँ, मैं जिंदगी में उठना चाहता हूँ। तो भैया अगर जिंदगी में उठना चाहते हो ना, तो बाज बनो, बाज, लौंडिया बाज नहीं।
1: जरा

0: खाने से पेट भरे उसे तो।
1: क्या हाल चाल है DFW? आई होप दैट यू आर डूइंग लवली वेयर एवर यू आर। गाड़ी में है तो चिंता मत कीजिए, आप सिर्फ आगे देखिए और गाड़ी चलाइए। आगे मतलब लेफ्ट राइट भी जब मुड़ रहे हो तो देखना है, वो भी चेक करते रहना है। पता है आपको मैं वो क्यों बता रहा हूँ? वो मैं आपको जो आगे बताने वाला हूँ वो सुनो, कि ट्रैफिक जाम में अगर फंस गए हो, कोई लाइट है, रेड कलर की ट्रैफिक लाइट है, बैठे हो आप, तो उसमें राइट लेफ्ट देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऊपर वाले ने तो कहा है कि अगर कोई चीज़ पसंद आए तो उसको दो मिनट रुक के अप्रिशिएट कर लेना चाहिए, इट इज़ ओके। पर ये तब लागू होता है जब आप अकेले हो गाड़ी में, ठीक है ना? भाभी के साथ लाइक किया तो पता ना मुझे नहीं लाइक करेंगी वो।

Beautiful track. Some tracks never go old, and this is one of them. जाने क्यों लोग प्यार करते हैं, क्यों ये तो सवाल तो सबको है वैसे, पर करते हैं. This is that मिर्ची किसी को पसंद है, क्यों पसंद है? वो पसंद है यार, है ना. मैंने एक बंदे से पूछा था वैसे कि चक्कर क्या है ये आशिकी का, मतलब इसमें क्या अट्रैक्शन होती है. कहता है यार जो स्टार्टिंग के प्यार में जो दूरी होती है, उसकी जो बेचैनी और उसकी जो जलन होती है ना, वो बड़ी अच्छी लगती है यार. मैंने कहा इसमें क्या प्रॉब्लम है, अगले हफ्ते मेरे घर पे पंडाल लगना है, वहाँ आ जा, तड़प तड़प तते तते तेल में तेरा हाथ पुआऊंगा, एकदम तेरे को पता लग जाए जलन क्या फील होती है. खैर आज के दिन बर्थडे होता है दिस ब्यूटी क्वीन कॉल्ड युक्ता मुखी, उनका नाम है जी युक्ता इंद्रलाल मुखी, इंडियन सिविक एक्टिविस्ट एंड द विनर ऑफ मिस वर्ल्ड 1999 पेजेंट, द फोर्थ इंडियन वुमन टू विन मिस वर्ल्ड एंड वाज प्रीवियसली से पहले मिस फेमिना इंडिया का क्राउन भी है उनके पास, दैट वॉज ऑल्सो इन द ईयर 1999. कुछ हिंदी फिल्मों में, तमिल फिल्मों में और तेलुगु फिल्मों में भी काम किया. टुडे इज हर 47th बर्थडे, बॉर्न ऑन 7th ऑफ अक्टूबर 1977. A very happy birthday to Yukta Mukhi from the team here at Fun Asia and from Bandabindas. Aur maine bataya tha aapko Passion Health Primary Care ke bare mein. They have multiple locations in DFW to serve you. Agar aapne abhi tak apna PCP set nahi kiya hai, you don't have a doctor, then get with Dr. Cheryl Chamathil, who is a board certified family medicine physician from Passion Health. Ab ye aapke liye Saturdays ko bhi available hai from 9 am to 1 pm. And if you aapko lag raha tha ki kaam ki wajah se aap nahi ja pa rahe hain doctor ki visit pe apne annual checkup pe, then get with them. They can also see you on Saturdays. Checkup ho, weight management ho, preventive care ho, get all the care that you need. This is on 230 O'Connor Road, O'Connor Ridge Boulevard, and that is in Irving, Texas. Phone kar lijiye 214-666-6259. Today marks the birthday of, jaise hum army mein kehte hain na, unsung hero. Main ye bolunga, ye sung hero the, but aage kyun nahi chale, I couldn't get it. But I think he had a beautiful voice and was also a winner of one of the pageant, one of the singing shows, which I'll talk about. Pehle se gana sunte hain unka.

0: आई एम टॉकिंग अबाउट अभिजीत सावंत, द फर्स्ट इंडियन आइडल, जो पहला सीजन था जी उसके विनर, एंड समबडी हु वाज आई थिंक बहुत अच्छी आवाज एंड वेरी गुड लुकिंग हैंडसम मैन, एंड इनकी स्माइल पे बहुत लेडीज एंड गर्ल्स वुड लव टू सी हिम स्माइल एंड परफॉर्म, एंड ही इज सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे टुडे. ये गाना जो आपने सुना उन्हीं की आवाज में था. बॉर्न ऑन 7th of October 1981, टुडे ही इज 45 ईयर्स ऑफ एज. ऑफकोर्स समबडी हु वाज द फर्स्ट रनर अप, जैसे फर्स्ट विनर ऑफ इंडियन आइडल, एंड उसके बाद जो जीता वही सुपरस्टार में भी नजर आए. फिनिश थर्ड इन एशियन आइडल एंड ही वाज आल्सो द फर्स्ट रनर अप फॉर बिग बॉस मराठी सीजन 5. वी विश हिम अ वेरी हैप्पी बर्थडे फ्रॉम द टीम ऑफ फन एशिया. एंड ये ऐसा गाना था जो आई एम श्योर आपकी प्लेलिस्ट में नहीं है, बट यू ऑल नो अबाउट दिस सॉन्ग. आप सबने ये गाना सुना जरूर है. Another birthday we're celebrating is Renuka Sahane, somebody who has been with the Surbhi Doordarshan TV show. Yaad hai aapko, 1993, 2001, 1993, I was 6 and 3, 9 saal ka tha main. And since then we've been seeing her on TV. Her husband is wo jo hame apni awaaz se matlab khauf de jate the from the movie Sangharsh, if you remember, aur unka naam आशुतोष राणे. आज मेरे साथ मेरे को सपोर्ट करने के लिए हमारी एक ट्रेनी है, सो आई एम टेकिंग सपोर्ट फ्रॉम हर. बट आशुतोष राणा की वाइफ है जी, एंड शी आल्सो इज सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे अलोंग विद दूरदर्शन. मेनी मूवीज टू हर नेम, जैसे कि एक मूवी दैट यू ऑल नो एंड इज वेरी क्लोज टू यू गाइज, इज हम आपके हैं कौन. आई एम गोना टेक अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, थोड़ी ही देर में आ रहा हूँ आपके पास वापस विद अ लॉट मोर फन कमिंग योर वे. सो स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया. This is your evening drive time show, and with this show you get a lot of other things as well. To main shukriya karna chahunga all the sponsors that sponsor this show, especially the ones that give us the giveaways jisme aapko aata hai maza, and you get an opportunity to go out and try some of the new spots that you haven't tried. Now before I go, chalte hain thoda sa American birthdays ki taraf, and international birthdays rather. Aaj ek aise world leader ka birthday hai jiski aankhon mein khauf sabko nazar aata hai, matlab हमें उनको देख के खौफ नज़र आता है. एंड ही इज़ व्लादिमीर पुतिन. एंड व्लादिमीर एक ऐसा नाम जो कि वैसे ही एक पावरफुल नाम है, रशियन नाम होती है ऐसे, चलो ठीक है. व्लादिमीर पुतिन, वर्ल्ड लीडर, सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे टुडे, October 7th 1952 ही वॉज बोर्न. 74 ईयर्स के हैं, और जब से मैं देख रहा हूँ मतलब 10-15 साल हो गए, बंदा वैसे का वैसा ही है. मतलब या तो टीका लगा लिया, रोक दो मेरी लाइफ को और मेरी एज की ग्रोथ को, समथिंग इज गोइंग ऑन, बट नॉनदलेस वी विश हिम अ वेरी हैप्पी बर्थडे. कहीं मत जाइएगा, चिपक के सुनते रहो एक दूसरे को भी और स्टेशन को भी, ठीक है. आया वापस.
1: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
2: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
3: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
4: कौन सा?
3: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है.
4: अरे सारे तो सेम है.
3: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला.
4: ओह हाँ, ये तो अलग है.
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
5: Order, order. Mr. Impressions, campaign ka result.
6: Your Honor, hazaron logon ne ad dekha.
5: Miss Clicks?
7: 100 logon ne click bhi kiya.
5: Customers kitne aaye?
8: Evidence found. Actual customer visit is less than 10.
9: Marketing mein clicks nahi, customers matter karte hain. With Smart Reach AI, reach local customers, even competitor visitors, across radio, digital, streaming TV and audio. Measure calls, bookings, redemptions and actual visits. Visit smartreachai.us. SmartReach AI, turn attention into customers. SmartReach AI, a Funasia Network product.
10: That garba was totally worth it. We had so much fun.
11: I lost so much of calories today and I'm starving. But it's so late.
3: Where can we eat now?
11: Don't worry, there's always Fun Pizza Kitchen Frisco.
12: Fun Pizza Kitchen Frisco will be open until 3 a.m. on select Garba nights. Enjoy delicious pizzas with mouth-watering toppings, exciting specialty flavors, pasta, and much more. Visit on September 25th and 26th and October 2nd, 4th, and 23rd after your Garba fun until 3 a.m. Fun Pizza Kitchen Frisco. Your Garba may end, but the party doesn't.
13: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
14: Har samasya ka hal hai astrologer Ishwar ke paas. 400 saal ki family wisdom ke saath world famous astrologer. Ab Dallas mein.
13: That magic removal ho. Love and relationship issues ho. Get trusted solutions with 100% privacy.
14: Thousands ki life badli unki divine guidance se. Now it's your turn. Samasya ka pakka samadhan. Astrologer Ishwar. Call now 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
15: Par se aap straight from the heart kal hindi bol.
16: You know my voice on the radio. Now let me be a voice you can trust in real estate. Main hoon Navneeta Khemka, realtor with Keller Williams Realty. Buying, moving or selling a home? I bring market knowledge, creative marketing and personal commitment to your journey. Because to me, real estate isn't just about properties. It's about you, mere dosto, your possibilities and your new beginnings. Every home has a story. Let's create yours together.
17: Call Navneeta Khemka at 347-449-4242.
15: Phone uthaiye, number dabaiye.
16: 347-449-4242.
18: Zindagi ek safar hai suhana. Yahan kal kya ho, kisne jana.
13: Life ho ya health, kab kya ho jaye, pata nahi. 13 saal tak Texas Primary Care Clinic ne jeeta aapka trust. Aur ab wahi trusted care, urgent care services ke saath, naye Kaiserway location par. Lunoxy Medical, founded by Dr. Mandeep Acharya. Adults aur bachchon ke liye primary care, urgent care, x-ray, CT scan, heart testing aur med spa. Sab kuch ek hi roof ke niche. Lunoxy Medical Urgent Care. Open 7 days a week, 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
19: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Umar Khawaja, the official injury partner of FunAsia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Umar Khawaja, your legal lifeline.
20: Hi, I am Shahrukh Khan. You are listening to Fun Asia.
21: Papa ke birthday ka surprise.

देखो जो जो ये स्टेट है ना हमारा गुजरात का भाई, ये बड़ा मतलब डिफरेंट स्टेट है और इसमें अलग अलग चीज़ें हैं भाई। मतलब कभी कभी तो आपका दिमाग घूम जाता है, जैसे यहाँ से निकले नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया को हिला के रखा हुआ है। ठीक है, मतलब एक ऐसा देश स्टेट है जो अपने आप में एक देश है भाई। और मुझे ना गुजरात की एक बात बड़ी खास लगती है कि गुजरात एक ऐसा देश है, ये शहर है जिसने दारू पर तो बैन लगा दिया दोस्तों, पर नमकीन चखना इतना जबरदस्त क्यों बनाते हैं यार। बाई गॉड, आप देख लो जितनी टॉप की नमकीन की फैक्ट्रियां हैं, चखने की फैक्ट्रियां हैं, वो गुजरात में। या तो ये दरवाजा मतलब या तो ये शटर खोलने नहीं देते, या तो मतलब दुकानें हैं ही नहीं दारू की, पर कहीं ना कहीं सप्लाई है इनकी, पाइप में या टूटी में तो नहीं आ रही, कोई चक्कर तो नहीं है। या फिर इन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है कि इन्होंने पीनी है वोडका, दिखनी है वाइट, पानी है पानी है क्या लड़के। वेलकम बैक टू इवनिंग ड्राइव टाइम शो, 6:26 सुबह की घड़ी में। बट सोचने वाली बात है ना यार कि ये वैसे गुजराती लोग, आप मुझे बताओ ये बात का कोई जवाब। अच्छा सा मजाक सेशन, आपको पता है अपना तो जिंदगी में काम ही है कि हंसो हंसाओ, खुशी खुशी आओ, खुशी खुशी चले जाओ। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, गुजरातियों से, ये चक्कर क्या है? ना तो आपने पैकेट पीने देना, अब आप खुद पीते हो कि नहीं मुझे नहीं पता, वहाँ पे, यहाँ पे तो आप डिफरेंट लेवल यू नो, पर वहाँ पे आप हमें तो पीने देते हैं। हम पंजाब, मैं बाइक और सच्ची स्टोरी बताता हूँ, मैं पंजाब से गया क्रिकेट खेलने हम चले गए जी। अब 16 लड़कों की टीम है, साथ में कोच वोच हैं, गेम हम जीत गए। शाम को हम वहाँ पे, बहुत बड़ा वाटर पार्क है अहमदाबाद के पास, आई थिंक उस टाइम पे साउथ एशिया का या एशिया का सबसे बड़ा वाटर पार्क था। तो हमने वहाँ पे, अब ढूंढ रहे हैं हम, ढूंढ ढूंढ के थक गए हैं, हमारे को कुछ नहीं मिल रहा। वहाँ पे हमारे को मिले सरदार जी, पूल में नहा रहे थे। हम लोग उनके पास गए दरख्वास्त करते हुए, बातें बुते करते हुए, वो कहते बेटा शाम को 7 बजे घर आ जाना, मुर्गा भी है, चिंता कोई नहीं। सो आई लव गुजरातीज, आई लव द स्नैक्स, एंड इनका जो एक चीज़ है ना खाखरा, उसका सिस्टम भी बहुत अच्छा है। ये खाते रहते हैं ना तो मोटे होते हैं ना उससे पेट भरता है। आई लव दिस सिस्टम ऑफ गुजराती पीपल। यू आर लिसनिंग टू इवनिंग ड्राइव टाइम शो राइट हियर ऑन फन एशिया। आपको बताना चाहता हूँ एक ब्रांड न्यू प्रोडक्ट के बारे में, विच इज़ ब्रॉट टू यू बाय रिलेटिव मीडिया। इट्स अ फन एशिया प्रोडक्ट। अगर आप अपने ब्रांड को चाहते हैं कि सोशल मीडिया के साथ साथ रेडियो के साथ साथ 360 डिग्री अप्रोच मिले, विच ग्रैब्स द अटेंशन ऑफ योर व्यूअर्स, आपकी रीच बढ़े और आपको रिजल्ट्स मिले, देन फन एशिया नेटवर्क इज ब्रिंगिंग यू इट्स मीडिया एक्सपर्टीज टू योर सोशल मीडिया विद रिलेटिव मीडिया। इसमें होगा क्या, वी हैव अ होल टीम विच इज फुली इक्विप्ड विद द लेटेस्ट इन इक्विपमेंट, एंड दे विल बी कमिंग टू यू मेकिंग रील्स, आई कैचिंग ग्राफिक्स, कैप्शंस, कॉन्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन, और आपके मार्केटिंग को एम्पलीफाई करेगा। फन एशिया रेडियो डिजिटल एंड कम्युनिटी प्लेटफॉर्म है जो आपको इसमें और मदद करता है। दिस इज द अपॉर्चुनिटी दैट यू नीड टू लर्न एंड सी हाउ वी कैन मेक अ डिफरेंस टू योर बिजनेस। उसके साथ साथ इफ यू वांट टू एडवर्टाइज ऑन द स्टेशन, आई हैव बीन देम फॉर द लास्ट 20 years विद 104.9 FM, आई हैव दैट मच ऑफ एन एक्सपीरियंस। आपको अगर कुछ भी करना है इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग योर ब्रांड, गेटिंग योर ब्रांड टू बी नोन एज अ हाउस होल्ड नेम, गिव मी अ कॉल, 972-235-5555 इज द नंबर टू द स्टूडियो। और जब गुजरात की बात की है तो ये लो,

0: यार डांडिया सीजन है, अभी भी है आगे अगले हफ्ते में। यार मैंने ना इस बार ही डांडिया, मैंने और मेरी बीवी ने जाना है। मैं जिंदगी में कभी डांडिया नहीं गया, आई हैव नेवर हैड द एक्सपीरियंस ऑफ डांडिया, क्योंकि हम पंजाब से हैं, हमारे को दो डांडिया दे दो, हमारा कुछ और पर्पज़ हो जाता था, कोई दिखता था तो फिर वो सिकता था। तो इसलिए अब जो डंडियों का सिस्टम मैंने देखा है यहाँ पे कि यार ये तो फन के लिए भी यूज़ हो सकती है। डम पटक डिंग डिंग, तो मेरी बीवी कह रही थी हमें ये करूँगी कैसे मैं, मैंने कहा कुछ नहीं, वहाँ पे बस लोग घूम रहे होते हैं, आपने भी उनकी तरह घूमना शुरू कर देना है, और जहाँ जहाँ वो डंडी मार रहे हैं आपने डंडी मारनी है। तो भैया अगर आप लोग चाहते हो कि मैं किसी डांडिया पे आऊँ तो सजेस्ट करो ना यार, मुझे फ़ोन करके बताओ कि इस वाले डांडिया पे, या मेरे को बोलो कि आप हमारे गेस्ट बन के आओ और हम आपको कुछ टोपी देंगे, कुछ जुगाड़, मतलब ऐसा ना जो जिस पे लगे, क्योंकि मेरे पास एक जैकेट तो है वो मैं पहन लूँगा, बट बाकी मेरे पास जुगाड़ और कुछ ऐसा है नहीं। तो गिव मी दैट गुजराती लव फ्रॉम यू ऑल, हैं इतना तो करोगे ना भाई के लिए। चलो स्टूडियो का नंबर है, नहीं है तो मेरे से ले लो, 9722355555। बट जोक्स अपार्ट यार, आई वुड लव टू डू डांडिया, ऑल्दो मैं ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा क्योंकि कुछ बायोनिक स्टफ है मेरी लात में और पैर में, आई हैव सम इम्प्लांट्स, बट फन इज़ फन यार, थोड़ा बहुत तो घूमेंगे ना झूमेंगे। तो मुझे कुछ रूल्स बता दीजिए और बता दीजिए इस हफ्ते मैं कहाँ आऊँ जहाँ पे आप मुझे रेकमेंड करते हैं कि एक अच्छा डांडिया मुझे देखने को मिलेगा। एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के पास जाएंगे, बट उससे पहले एक बढ़िया सा गाना भी तो सुनाएंगे। आज ऐसे क्यों करेंगे हम आपके साथ के अच्छे गाने नहीं सुनाएंगे, एब्सोल्युटली सुनाएंगे, बिकॉज दिस इज योर शो मैन, द इवनिंग ड्राइव टाइम शो, द बिंदास शो।
1: Ready for this.

0: 1974. She is 52 years of age. Did you realize that? That 70s show की कैरोलाइन आज 52 की हो चुकी है भैया. आप कितने के हो गए हो? खैर छोड़ो, इस बात को क्यों पूछते हो मार्वेल? पर मुझसे अगर कोई पूछे आप कितने के हो गए, तो मैं बोलूंगा बहुत महंगा हो गया हूँ बड़े भाई. एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं वापस आ रहा हूँ. एंड ऑन कमिंग बैक आई विल टेल यू मोर अबाउट इमिग्रेशन सॉल्यूशंस इफ यू आर लुकिंग फॉर एनी हेल्प इन दैट फील्ड. कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे बताता हूँ राइट आफ्टर दिस कमर्शियल ब्रेक. एंड इफ यू वांट टू गेट योर हेल्थ बैक टू फिटनेस विदाउट एनी पेन किलर्स, टेल यू मोर अबाउट दैट एज वेल.
1: Hey Frisco, get ready to celebrate silver like never before. Chandrika Silver by Shri Krishna Jewelers celebrates its grand launch. Discover exquisite handcrafted silver jewelry and artifacts with exciting inaugural offers and raffle prizes. Visit 7777 Bor in Parkway, Suite 280 Frisco. Chandrika Silver, the tradition shines in silver.
2: As a Texas state legislator, James Tallarico has stood with the South Asian community and fought to lower our costs. He believes that being a Texan isn't about where you come from or how you pray. It's about how you love your neighbors. He's running for U.S. Senate to stand up for all Texans and end the corruption raising our prices. Vote to bring light and hope to Texas. Vote James Tallarico.
3: I'm James Tallarico and I approve this message.
4: Paid for by Tallarico for Texas.
5: Dil ki baat kisse kahe?
6: पंडित गुरुदेव से 35 साल से ज्यादा के एक्सपीरियंस के साथ पंडित गुरुदेव करते हैं कुंडली रीडिंग, बर्थ चार्ट एनालिसिस, पाम रीडिंग और फेस रीडिंग, ब्लैक मैजिक और नेगेटिव एनर्जी रिमूवल में एक्सपर्टाइज. प्यार, शादी या रिश्तों की उलझन हो तो पर्सनल गाइडेंस लीजिए. कॉल 4695811777. दैट्स 4695811777. पंडित गुरुदेव, आइए अपनी बात कहिए.
7: Immigration is a serious concern for our community, and when you are filing your case, you want a firm which is exclusively devoted to immigration law, like the law offices of Seema Mehta. From simple to highly complex cases, attorney Seema Mehta and her team are dedicated to managing them successfully. Whether it is for an immigrant visa or non-immigrant visa, family, employment or investment visa, firm labor certification or citizenships, they do it all. Call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
8: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
9: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
8: Kya matlab?
9: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
8: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
9: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
8: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
10: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
11: इंडिया में घर खरीदना हुआ आसान. गृह प्रवेश इंडिया प्रॉपर्टी एक्सपो आ रहा है फ्रिस्को में. अक्टूबर 10th एंड 11th, हाथ रीजेंसी फ्रिस्को, 10 AM टू 8 PM. मुंबई, बैंगलोर, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद एंड दिल्ली NCR के टॉप डेवलपर्स से मिलने का एक ही मौका. चूज योर होम फ्रॉम 200 प्लस प्रोजेक्ट्स, फ्री एंट्री एंड फ्री पार्किंग. एन इवेंट बाय माई स्क्वायर फीट.
12: हर मोहब्बत की आवाज, द वन एंड ओनली लिविंग लेजेंड राहत फतेह अली खान.
13: राहत फतेह अली खान
14: एक्सपीरियंस वंस अपॉन अ टाइम वर्ल्ड टूर 2026. राहत फतेह अली खान और उनके बेटे शहजमान अली खान एक ही स्टेज पर.
12: ब्रॉट टू यू बाय रेहान सिद्दीकी, डॉक्टर यास्मीन कुरैशी एंड ट्रू पेमेंट सॉल्यूशंस. फ्राइडे अक्टूबर 16, 8:30 PM, कमेरिका सेंटर फ्रिस्को.
14: ग्रैंड स्पॉन्सर कराही पॉइंट प्लेनो के एक्सक्लूसिव कंसेशंस के साथ.
12: टिकट्स ऑन टिकट मास्टर एंड सुलेखा.com.
15: जग घूमे आ

द वॉइस इज ऑफ अख्तरी बाई फैज़ आबादी, यानी कि इनका स्क्रीन नेम या जो नाम मशहूर हुआ वो था बेगम अख्तर, इंडियन सिंगर एंड एक्ट्रेस, जिनका नाम जो टाइटल दिया गया था दैट वाज क्वीन ऑफ गजल्स, यानी कि मलका गजल। शी इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिंगर्स ऑफ गजल, दादरा ठुमरी, और हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में इनका बहुत नाम है, बहुत ऊंचे दर्जे पे लिया जाता है। रिसीव द संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड फॉर वोकल म्यूजिक इन 1972, अवार्डेड द पद्मश्री एंड लेटर द पद्म भूषण। आज इनको याद कर रहा हूँ क्योंकि आज ही के दिन 7 अक्टूबर 1914 में फैजियाबाद में इनका हुआ था जन्मदिन।

0: I wanted to share this because यहाँ से जो हमारा 1914 में इनका जन्म हुआ था, just imagine that, जबकि हमारी इंडस्ट्री जो म्यूजिक की है वो बन आज जहाँ है बहुत दूर दूर तक वैसे मकाम पर नहीं थी. और ये जो ऐसे लोग हैं जो अब इतिहास में बहुत कहीं पन्नों में दबके रह गए हैं, वी डोंट टॉक अबाउट दैम, आई थिंक वी शुड, बिकॉज यहाँ से जो आगे का म्यूजिक आपने सुना है या जो आज आप सुनते हैं उसको यहाँ तक आने में ऐसे लोगों का बहुत बहुत रोल है, बहुत इनका इन्वॉल्वमेंट है. एंड आई सल्यूट देम फॉर व्हाट दे डिड, रिमेम्बरिंग दी गज़ल क्वीन, यानी कि मलिकाए गज़ल, जिनका नाम था बेगम अख्तर. कोई है हमारे साथ, करते हैं इनसे बात. गुड इवनिंग फनीशा, हु इज दिस?
1: हाय, दिस इज इंदु.
0: हाय इंदु, कैन यू रिड्यूस द रेडियो वॉल्यूम?
1: या श्योर.
0: हाय, व्हाट कैन आई डू फॉर यू?
1: आई वांट टू हियर द सॉन्ग कैसे है.
0: कौन सा?
1: क्या सूरत है बॉम्बे वाइकिंग?
0: क्या सूरत है, क्या सूरत है. यू नो इट्स गोना बी अ वेरी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट बिकॉज़ आई जस्ट प्लेड अ वेरी ओल्ड ट्रैक एंड आई डोंट माइंड डूइंग दैट. लेट्स ब्रिंग यू बैक टू वेयर वी यू नो गॉट इनटू द न्यू एज. एंड आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर दैट आई टच ऑन दिस लेडी जिनका नाम था बेगम अख्तर, बिकॉज शी इज समबडी जिनके मैं कहूँगा काम की वजह से इंसेप्शन जो है हमारे इंडस्ट्री में आगे आगे सीखने को मिला बिकॉज ऑफ पीपल लाइक दैम. हियर वी गो विद द ट्रैक दैट केम ऑल द वे अपोजिट फ्रॉम वेयर वी वर. दिस इज बॉम्बे वाइकिंग्स, जिन्होंने पहले पॉप का सीन जो है इंडिया में इस्टेब्लिश करना शुरू किया. Here we go.
2: Call it what you want, babe. I call it the funk, the G-funk era. Yeah, check it out.